ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: और आइए अब आपको कार्यक्रम विवरण दे दें। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:02 पर गौतम गौर स्टूडियो में उपस्थित होंगे फिल्म संगीत लेकर। 7:02 पर रविंद्र सिंह फिल्म संगीत लेकर हाजिर रहेंगे स्टूडियो में। 8:00 समाचार गौतम गौर द्वारा पढ़े जाएंगे और 8:02 पर गौतम गौर हिंदी फिल्म संगीत लेकर फिर एक बार से हाजिर होंगे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: और 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम लेकर स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी मानसी रंजन। बबीता रावत 11:02 पर फिल्म संगीत लेकर स्टूडियो में हाजिर होंगी और 12:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम लेकर मानसी एक बार फिर स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: ये आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल है। 6 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार होंगे।

आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति मिली। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के दौर में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग पहल के क्रियान्वयन की समीक्षा की। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी है। बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल्ड टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट लिए। और नीदरलैंड में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया है। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुए।

0: पेश है प्रायोजित प्रोग्राम।
1: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय SR मीडिया एकेडमी।
2: जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो पर फिर हाजिर है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि हम मनुष्य आत्मिक बातों से ज्यादा सांसारिक बातों पर ज्यादा मन लगाते हैं और सोचते हैं कि सांसारिक कामयाबी ही जिंदगी का असली मकसद है। लेकिन दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि संसार की चीजें संसार में ही छूट जाएंगी, इसीलिए सांसारिक बातों पर नहीं बल्कि आत्मिक बातों और आत्मिक जीवन पर ध्यान लगाओ और प्रभु में बढ़ते जाओ, क्योंकि मृत्यु पश्चात का जीवन हमारे आत्मिक उन्नति पर ही निर्भर करेगा।
3: तुझ

जी हाँ, यही सच्चाई है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे कार्य और हमारी बातें ही हमारे जीवन में खुशी और गम का सबब बनती हैं। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ।

पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि मनुष्य योजनाएं तो बहुत बनाता है, परंतु उनका सफल होना परमेश्वर की ओर से निर्धारित होता है।

0: दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। मैसेज या फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल यानी शुक्रवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
1: कसरत की बरकत भी मिलती यीशु नाम से मांगो अगर।
2: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय एसआर मीडिया एकेडमी।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: बिल्कुल आपकी वाणी आकाशवाणी। और किसी भी बात पर निराश ना होना, जिंदगी में कभी उदास ना होना। जिंदगी एक संघर्ष है और चलती रहेगी। अपने जीने का अंदाज मत खोना, अंदाज अपना अपना है। और लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, और आ गई वो घड़ी है, यानी कि आपका होस्ट, आपका दोस्त। कैसे हो भाई सारे? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉफी टू ऑल। मौसम एकदम खुशनुमा है, और कहते हैं कि अक्सर ऐसे खुशनुमा मौसम में मुलाकात भी बहुत खुशनुमा होनी चाहिए ना, और बरसात भी होनी चाहिए, और फिर इसके साथ आले चक में आ गया, ब्रेकफास्ट में जो भी था खा गया, मजा आता है ऐसे में तो। सुप्रभात। 102.6 FM, दिल से दिल तक।

वैसे कहते हैं ना, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलकर। वेल, साथ ही साथ निभाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर जोर लगाना। वेल, मौसम तो एकदम खुशनुमा है ही, लेकिन आपको भी खुशनुमा रहना है। कहते हैं कि गांव से लेके छांव तक और गांव से लेके भाव तक और ग्रीड से लेकर लीड तक वाया आपकी फीड तक। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉफी टू ऑल। आपका होस्ट, आपका दोस्त आपके साथ जुड़ चुका है। कहते कि तुझे हक है, कि तुझे हक है तू जताया कर। पता है आज क्या हुआ, कहकर सब बताया कर। यूं तो किश्तों में कट रही है जिंदगी, तू यूं ही मुस्कुराकर मेरी किश्तें घटाया कर। तुझे हक है तू जताया कर। कई बार ना आपको फ्रेंडशिप में भी ऐसा ही जताना पड़ता है। ये रिश्ता जो भी कहलाता हो, लेकिन निभाना पड़ता है, क्योंकि काफी सारी चीजों में सिर्फ लॉजिक नहीं, मैजिक चलता है। मैजिकल अप्रोच के साथ हर सुबह कुछ नया लेकर आती है, कुछ खास लेकर आती है। और जनाब, जब ऐसा मौसम हो तो फिर पहाड़ों पे किसको जाना है, छेड़ना बस आपके साथ वो डांस वाला तराना है। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, एंड हो जाए थोड़ा बल्ले बल्ले। मुझे पता है आप में से नहीं, अधिकतर लोग सोते सोते भी जागने के लिए भी सुनते हैं 102.6 FM। तो ऐसे में मॉर्निंग वाइब्स सुप्रभात। मैं भी स्टेप कर रहा हूं, आप भी कर लीजिए घर पे।

वाले ऐसा मौसम हो तो बल्ले बल्ले तो होनी लाजमी है, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। कहते हैं कि सबको पता होना चाहिए जिंदगी कुल्फी की तरह है ना, कि आप टेस्ट करो या वेस्ट करो ये आपके हाथ में। कहते हैं गुजरता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता समय कब चला जाता है। गुजरता वक्त है खर्च हम हो जाते हैं, और ऐसे मौसम में लेट तक सो जाते हैं। ऐसा लगता है कि यार सुकून के सुकून की तलाश में ना जाने हमने कितने पल गुजार दिए कि कब मिलेगा पीस, पीस ऑफ माइंड लाइफ में होना बहुत जरूरी है। चलिए कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार की बात है, एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चले जा रहा था और बीच

बीच में रुक रुक कर अपने पैरों के निशान देखकर खुश होता कि मैंने कितनी सारी मेमोरीज बनाई है। जैसे हम देखते हैं ना, सेल्फीज लेते हैं, सेल्फी मैंने ले ली आज ताकि बाद में इसको चेरिश करेंगे। आगे बढ़ते पैरों के निशान देखता और उससे बनी डिजाइन देखकर खुश होता। इतने में एक लहर आई और उसके पैरों के सब निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बहुत गुस्सा आया। अरे, उसने लहर से बोला, ए लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था, फ्रेंड मानता था, पर ये तूने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को ही मिटा दिया। कैसी दोस्ती, कैसी दोस्त तो? तब लहर बोली, वो देखो पीछे से मछुआरे लोग पैरों के निशान देखकर ही तो केकड़ों को पकड़ रहे हैं। हे मित्र, तुमको वो पकड़ना लिया, बस इसीलिए मैंने निशान मिटा दिया। सच यही है, कई बार हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ को देखना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहा जाता है ना, जो बीत गई सो बात गई। लेकिन दिल का ये हाल है जो कहीं ना कहीं बेहाल है। वो डायलॉग है ना, दिल आखिर तो क्यों रोता है। दुनिया में ऐसा ही होता है, होता है, होता है। ऐसे मौसम में कहीं ना कहीं लगता है कि ना जाए ना ऑफिस। लेकिन कुछ टारगेट है जो अचीव कर रहा है, और ये दिल का हाल मैं भी समझता हूं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। 102.6 FM।

0: कह रहा हूँ
1: समझ में आ जाएगा आपको कि कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, कि कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल में मंजिल लिख दूंगा। एक आदमी रात के समय लंबी यात्रा पर निकला। उसने कहा मुझे आगे का पूरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। उसके दोस्त ने कहा पूरी सड़क देखने की जरूरत नहीं है भाई, जितना रास्ता इस रोशनी में दिख रहा है उतना चलते जाओ। अक्सर हम लाइफ में ना बहुत प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं कि कल ऐसा होगा, कल वैसा होगा, देखना कितना अच्छा होगा, लेकिन हम आज में क्यों नहीं जीते? ऐसे में बहुत सारे महान एक्टर्स ने कहा है कि मैं आज के काम में विश्वास करता हूं कि आज के दिन को बेहतरीन बना देना चाहिए, जो कार्य आप कर रहे हैं ना उसमें जी जान लगा देनी चाहिए। टुमारो विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। लेकिन जिंदगी में पूरा भविष्य दिखाई देना जरूरी नहीं, अगला कदम दिखाई देना ये जरूरी है। तुनका तुनका करके गुड्डी चढ़ दी जान दिया, एक एक स्टेप ही आपको मंजिल की तरफ लेकर जाएगा। ढूंढ लेना रोशनी, क्योंकि मंजिलों की तरफ बढ़ने वाले रोशनी के मोहताज नहीं होते, वो तो सरदार होते हैं, अपने तरीके से चलते हैं, अपने मनमौजी होकर आगे बढ़ते हैं लाइफ में। और यही है कि स्टेप बाय स्टेप जब आप देखते हैं ना हिमालय की तरफ कि क्या चढ़ पाऊंगा ऊपर, तो ऐसे में आपको कदम कदम मिलाए जाए, ये थोड़ा सा याद रखना। जिस तरीके से कि अब किसी का भी डर नहीं, तेरे जी में आया तो कर वही जीना, तेरे बिना जचे मुझे ऐसे जैसे बिना चीज के बर्तन, यानी यू एंड मी मिल के बने हम, आजू बाजू रहेगा ना कोई भी गम। ये गम कर देता है कभी ना कभी आंखों को नम, लेकिन इट्स ओके, चलते चलो बस, क्योंकि घर से निकले हो चलते चलोगे तो मंजिल मिल ही जाएगी, नहीं तो फिर अच्छे ट्रैवलर तो हो ही ना। सुप्रभात 102.6 FM, दिल से दिल तक।

कहते हैं कि इंसान को अपनी वैल्यू जो है ना वो खुद समझनी चाहिए, बिकॉज लोग तो आपको डिस्काउंट पे खरीदने की कोशिश करेंगे, ये दिखाएंगे कि आप तो वर्थ इट है ही नहीं, कह देना कि तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन जब आप अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में खराब होना शुरू कर देती हैं। आप यकीन मानिए, पूरे ब्रह्मांड में आप सिर्फ अकेले ही हैं, और आपका होना एक इत्तेफाक नहीं है। कहते हैं कि तुम्हारे पैदा होने से पहले ब्रह्मांड ने अरबों साल बिताए, तारे बने, दुनिया बनी, जीवन आया, मिटा, फिर बदला, अनगिनत संभावनाओं के बाद तुम यहां तक पहुंचे हो। इसलिए खुद को मामूली मत समझना, तुम्हारे होने के लिए ब्रह्मांड को बहुत कुछ होना पड़ा। कहते ना, जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, धमाल करते हैं। कनकन जोड़कर खुद को बनाया है मैंने, मेरे जैसे हजार मिल जाएंगे, ऐसा कहने की गलती मत करना। और ये गलती नहीं है, गलत फहमी है, मैं अलग हूं। हाँ, अक्सर कहते हैं लोग आजकल कि मेरे वाला अलग है या मैं अलग हूं, लेकिन सच में आप अलग हैं। मेरा वजूद मेरी जिद और संघर्षों का ही सबूत है, और मेरे जैसा दूसरा

फिर कोई ना। लेकिन ये मौसम है, दिल्ली का वेदर है, ये कभी भी आपको खुश भी कर सकता है, डिहाइड्रेटेड भी कर सकता है, बहुत सारी फीलिंग्स जो है वो एक साथ ले सकता है। ये दिल्ली है जनाब, और ऐसे मौसम में हो जाए।

बिल्कुल, मैं सच के जावा और सच के नहीं भी जाओगे तो फिर मौसम ही ऐसा है, क्या पता कब बारिश हो जाए, खुद नेचर जो है आपको सजा देगा, सवार देगा। लेकिन कहते हैं कि आदत से ही आफतें आती है ना, कई बार छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन आदत, क्या करूं मैं आदत से हूं मजबूर, लेकिन वो 10 मिनट की आदत भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में बदलाव लेकर आ सकती है। एक लड़का हमेशा कहता था मेरे पास पढ़ाई के लिए समय नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। उसने एक दिन तय किया वो रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ेगा। 10 मिनट धीरे धीरे उसकी आदत बन गए और कुछ महीनों बाद वही 10 मिनट उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। बड़ा बदलाव हमेशा बड़े कदम से नहीं, छोटे कदम से शुरू होता है। तो आज भी अगर आप, और ये चीज कहीं ना रिश्तों में भी एप्लीकेबल होती है, 5 मिनट, 4 मिनट अगर आप अपने उस व्यक्ति को दे सकते ना जिससे आप प्यार करते हैं, चाहे आपके घर के लोग हों, आपके फ्रेंड्स हों, या फिर जिन्होंने आपके लिए लाइफ में कुछ किया हो, ये 5 मिनट भी उनसे कोई नहीं छीन सकता। एक बहुत अच्छा डायलॉग है, एक एक्टर ने कहा था हॉलीवुड के, कि मैं आपके आखिरी 7 मिनट बनना चाहता हूं। यानी कि हमारा जो ब्रेन है ना, आखिरी समय में उन 7 मिनट में सब कुछ समराइज करता है, चेरिश करता है कि किस तरीके से जीवन जिया, वो खुशनुमा पल। तो कहीं ना कहीं सबसे ब्यूटीफुल चीज जो है ना किसी को आप दे सकते हैं, वो है समय। जी हां, समय किसी के लिए रुकता नहीं और मुझे रोकने के लिए जरूर कहता है। मुझे पता है कि जब समय हो जाता है ना साइन आउट करने का, तो आप कहते हो तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ ना, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तभी तो रविंद्र सिंह आएंगे। जी हाँ, ट्रिंग ट्रिंग आने वाले रविंद्र सिंह, और फिर से जुड़ूंगा आपके साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। लेकिन तब तक के लिए एंटरटेनमेंट का डोज ये भी देते हैं हर रोज, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ जेंटलमैन। दिस इज रेडी, यू विल ऑलवेज रिमेम्बर। नहीं, अभी याद रखोगे जनाब, अभी तो माफी नहीं मांगूंगा आपसे, आऊंगा 8 से 9 के बीच में।

और अब आप सुनेंगे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को भी स्वीकृति मिली। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के दौर में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग पहल के क्रियान्वयन की समीक्षा की। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। और अब खबरें खेल जगत से। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल्ड टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट हासिल किए हैं। और अंत में नीदरलैंड में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया है। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी, आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 एफएम रेनबो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र सिंह और कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। तो चलिए आगाज इस कार्यक्रम का खूबसूरती से होना चाहिए। और कहते भी हैं कि भाई नई सुबह नई उम्मीदों और एक नई शुरुआत होती है। और चाहे दिल्ली की तेज रफ्तार हो, नोएडा की भागती सड़कें, गुरुग्राम की कारपोरेट हलचल या गाजियाबाद की चहल पहल, हम हैं आपके साथ आपकी सुबह को थोड़ा और खुशनुमा बनाने के लिए। तो भैया चाय की पहली चुस्की हो जाए, मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाए, क्योंकि शुरू हो चुका है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जहां मिलेंगी शहर की खबरें, काम की बातें, दिल को छू लेने वाली कहानियां, थोड़ा संगीत, ढेर सारी मस्ती। तो जुड़े रहिए भाई साहब हमारे साथ, क्योंकि आपकी सुबह हमारी आवाज के साथ अब होने वाली है और भी खास, क्योंकि ये कारवा है उमंगों का।

और भाई साहब, पल तो ऐसे ही होते हैं जहाँ पर उमंगों का पूरा कारवां होता है, बस उन पलों को हमें जीना होता है। अब कैसे जीना, ये हमारे नजरिए पर डिपेंड करता है। तो भाई साहब, नजरिया बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं, बस चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लानी, क्योंकि आपको देखकर बहुत सारे लोग भी प्रेरणा लेते हैं। और खासकर आपके संदेश जब हम तक पहुंचते हैं गुड मॉर्निंग के, तो बस हमारे लिए तो वैसे भी प्रभात सुप्रभात हो जाता है, और दिल्ली NCR में हो जाती है गुड मॉर्निंग। और ये गुड मॉर्निंग चल भी रही है, और गुड मॉर्निंग की शुरुआत जो हुई है उसमें बाहर देखा जाए तो बादलों की नरम चादर के साथ साथ बहुत कुछ देखने को मिल रहा है भाई साहब। साफ सुथरी सड़कें मिल रही हैं दिल्ली देखने में, है ना, और आसमान में चाहे बादल और बीच बीच में होती बारिश जो है ना, वो आपको एहसास कराएगी मौसम में ठंडक का, और एक खूबसूरत मानसूनी एहसास भी घोल देगी आपके इस पूरे दिन में, एक प्यारी प्यारी मिठास और बहुत कुछ खास। तो भाई साहब, चलिए मौसम की जानकारी हम दे देते हैं कि आज कैसा रहने वाला है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बादलों और बारिश का असर देखने को मिल सकता है। तो भाई साहब, खिड़की से आती ठंडी हवा का अगर आनंद लेना है तो बाहर निकलना होगा, और खिड़की या फिर आप अपनी बालकनी में पहुंचिए, चाय की चुस्की लीजिए और इस सुहानी सुबह के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि हम बेहतर खूबसूरत प्यारे प्यारे गीत दिल को लुभाने वाले बजाते रहेंगे। आपको करना क्या?

बस जुड़े रहना हमारे साथ, है ना। चलिए एक और प्यारा सा नगमा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपके संदेश हमको मिल गए, यानी आप हमें मिल गए, तो तू मिल गया, सब कुछ खूबसूरत हो गया। सुनिए प्यारा सा ट्रैक।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखा

0: था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: हाँ जी, तो बस एक छोटे से ब्रेक के बाद अब वापस आ गए हैं। बिल्कुल भी इधर उधर मत हिलिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताना बाकी है। क्योंकि जैसे जैसे कदम आगे बढ़ता है और जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता है, जैसे जैसे घड़ी की सुई बढ़ती है, तो हर पल हमसे कुछ कहता है कि भाई जरा देख लें इतिहास के पन्नों की तरफ। वो कौन सी बातें हैं जो हमें इस बात का एहसास कराएंगी कि दुनिया किस तरह से हर पल में बदलती चली गई और आज हम कहां खड़े हुए हैं। तो चलिए आज की तारीख में यानी 20 अगस्त की तारीख में पुरानी बातों से शुरू करते हैं और पुराने पलों से आज के वर्तमान पल तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1828 यानी 20 अगस्त 1828 की, जहां पर राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज का पहला सत्र कलकत्ता में आयोजित हुआ था और यह भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। 20 अगस्त 1897 की बात करें तो ब्रिटिश वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस ने कलकत्ता में मलेरिया फैलाने वाले एनोफिलीज मच्छर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खोज की थी, जिसकी जानकारी उन्होंने दुनिया के सामने रखी थी। थोड़ा और आगे बढ़े 20 अगस्त 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला में विद्रोह शुरू हुआ था और 1979 में चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। 2011 में प्रसिद्ध इतिहासकार राम शरण शर्मा ने अंतिम सांस ली थी और वो हमारे बीच नहीं रहते। और विश्व के पटल पे जो घटनाएं हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 1794 में अमेरिका के इतिहास में बैटल ऑफ फॉलन टिम्बर्स लड़ी गई, जो नॉर्थ वेस्ट इंडियन वॉर का अंतिम बड़ा संघर्ष माना गया था और अब भी माना जाता है। और 20 अगस्त 1949 की बात करें तो हंगरी ने नया संविधान अपना बनाया था। 1968 की बात करें तो सोवियत नेतृत्व वाली वारसा पैक्ट सेनाओं ने चेकोस्लोवाकिया हमें प्रवेश किया और प्राग स्प्रिंग के सुधार आंदोलन को दबाया था। 1975 में नासा ने वाइकिंग 1 को मंगल ग्रह की खोज के लिए रवाना किया था और 1977 में नासा का वॉयजर 2 अंतरिक्षयान लॉन्च हुआ था, जिसने बाद में बाहरी ग्रहों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और वॉयजर 1 वॉयजर 2 आज भी लगातार चला जा रहा है, बहुत सारी जानकारियां उसने ऐसी दी जिससे बहुत बहुत बहुत महत्वपूर्ण थी वो जानकारियां वैज्ञानिकों के लिए और लोगों के लिए। और इसके बाद 1988 की बात करें तो ईरान इराक युद्ध 7 साल बाद समाप्त हुआ था। 1993 की बात करें तो ओस्लो समझौते की वार्ताएं पूरी हुई, जो इसराइल फिलिस्तीन संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया था। तो भाई साहब 20 अगस्त इतिहास के कई महत्वपूर्ण पड़ावों का गवाह रहा है। भारत में सामाजिक सुधार से लेकर वैज्ञानिक खोजों तक और दुनिया में अंतरिक्ष अभियानों से लेकर महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं तक, यानी ये तारीख हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ बीते हुए कल का नाम नहीं है, बल्कि आज को समझने की एक खिड़की भी है। तो इस खिड़की को खोलिए, यानी दिमाग के सारे दरवाजे खोलिए, फिर देखिए हम कहां से कहां आ चुके हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि इस विरासत को संभाल कर रखिए और खुद से रूबरू होइए। और इन पलों को देखते हैं तो सच में बहुत अच्छा लगता है। संभाल कर रखिए इस विरासत को, इस पर बहुत मेहनत हुई है।

हाँ जी, तो खुद से रूबरू होना बहुत जरूरी हो जाता है, और जब हम जिस दिन खुद को जान लेते हैं, बस समझिए हमारी तरक्की का रास्ता हमने तय करना शुरू कर दिया और पहला कदम तो हमने उस तरफ बढ़ा दिया है। लेकिन आपको पता है कि कुछ लोग हमें आज प्रेरणा देते हैं, जब उनके किस्से, उनकी कहानियां हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, तब जाके हमें यह एहसास होता है कि अरे वाह, हमारे देश में या दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने लिए और अपने मंजिलों को पाने के लिए लगातार तत्पर रहे और एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां पर उनकी कहानियां सुनकर नई पीढ़ी को प्रेरणा मिली। जानते हैं उसी एक शख्सियत की आज हम बात करने जा रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत की तकनीकी क्षमता को दुनिया के मंच तक पहुंचा दिया, जिसके लिए सफलता सिर्फ उपलब्धि नहीं बल्कि ईमानदारी, मेहनत और सादगी का परिणाम रहे थे। 1981 में इंफोसिस की स्थापना कर भारतीय आईटी क्षेत्र को नई दिशा देने वाले इस उद्यमी को पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हम बात कर रहे हैं NR नारायण मूर्ति की।

पढ़ने वाला मत माने, अपने आप को तलाशिए और अपने आप को तराशिए और अपनी कहानी खुद लिखिए, ताकि जब हम पढ़ें तो उसमें कुछ खास हो। अपने पंखों को उड़ान दो। इस देश और दुनिया को भी आपका इंतजार रहता है कि कुछ ऐसा लेके जाओ जिससे हम जो ठहरे हुए हैं ना, वो भी आगे बढ़ सके। चलो उड़ान भरते हैं।

तो गीतों का लुत्फ उठा रहे हैं अब, चलिए जरा समझ लेते हैं खेल कूद को भी, क्योंकि BWF चैंपियनशिप चल रही है और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप में क्या कुछ रहा आज के दिन, क्या रिपोर्ट्स है, जानते हैं अपडेट्स।

0: दिल्ली में बैडमिंटन इन दिनों एक खेल नहीं जुनून बन गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम के बैडमिंटन एरिना में हवा में लहराते शटल पर लगता हर स्मैश, नेट पर चतुराई से जुटाया गया हर पॉइंट, फोरहैंड और बैकहैंड शॉट पर बनता हर अंक बैडमिंटन प्रेमियों के जोश को जश्न में बदल रहा है। शटलर्स की हर एक फुर्तीली चाल और रैकेट की हर गूंज इतिहास लिख रही है। इस रैकेट गेम के 44 फीट लंबे कोर्ट पर हर एक सनसनाते स्मैश के साथ स्टैंड्स में मौजूद हजारों बैडमिंटन प्रेमियों के दिल की धक तक और स्टेडियम से उठती गूंज ये बता रही है कि दिल्ली दुनिया का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस अद्भुत और अनूठे माहौल के बीच किसी को पराजय निराश कर रही है तो किसी की जीत खेल प्रेमियों को और ज्यादा जोश से भर रही है। आगे बढ़ने के लिए मचे जद्दोजहद के बीच चिर परिचित माहौल, घरेलू मैदान, तालियों की गड़गड़ाहट और स्टैंड से उठता शोर भारत के झंडा बरदारों को नई ताकत और गजब की स्फूर्ति से भर रहा है। इस जुनूनी माहौल के बीच भारतीय खिलाड़ी हैरत अंगेज परिणाम भी दे रहे हैं। बात चाहे 5 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट पीवी सिंधु की हो या फिर वर्ल्ड नंबर 1 शी युकी को पहले राउंड में बाहर करने वाले युवा खिलाड़ी आयुष सट्टी की, घरेलू दर्शकों का समर्थन इनमें एक नई जान फूंक रहा है। भारत के लिए तीसरे दिन की शुरुआत भी शानदार रही। कोर्ट पर उतरने से पहले ही एक जीत मेजबान देश के लिए दर्ज हो गई जब सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की 5वीं सीट जोड़ी मेंस डबल्स के राउंड ऑफ 32 में वॉक ओवर के साथ अगले दौर में पहुंची। स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर डुन और एडम प्रिंगल ने फिटनेस की समस्या के कारण कोर्ट पर उतरे बिना ही मैदान छोड़ दिया। हालांकि इस अनचाही परिस्थिति ने सात्विक और चिराग की जोड़ी के गगनभेदी स्मैश और नेट पर चीते जैसी फुर्ती को देखने की उम्मीद कर रहे बैडमिंटन प्रेमियों को थोड़ा निराश किया। फिर भी ये भारतीय जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मैदान पर जीत के साथ अभियान को आगे बढ़ाने का जिम्मा मिक्स डबल्स में 15वीं सीट ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो पर था। इस जोड़ी ने भी उम्मीदों को परवान चढ़ाया। दोनों का मकाऊ की जोड़ी लियोंग लोकचोंग और वेंगची एनसी के खिलाफ मुकाबला एकतरफा रहा। पहला गेम भारतीय जोड़ी ने 21-11 से जीता। दूसरे गेम में भी शुरुआत से ही पकड़ बनाए रखी और एक बार फिर स्कोर 21-11 ही रहा। ध्रुव ने बताया कि पिछले साल की गलतियों से सीखकर इस बार कोर्ट पर उतरे। वहीं तनिषा ने बताया कि बेहतर तालमेल से जीत आसान हो गई।
1: सिंस लास्ट ईयर वी लर्नड अ लॉट एंड दिस ईयर इट्स गोइंग वेल नाउ। लाइक देयर आर डेज लाइक व्हेन वी आर नॉट एट द बेस्ट बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट लाइक हाउ डू वी हैव टू बिकम मोर स्टेबल एंड कीप परफॉर्मिंग वेल।
2: बिफोर हिम कमिंग माय गेम वाज नॉट मोर मिक्स्ड डबल्स ओरिएंटेड बट आई थिंक आफ्टर हिम स्टेपिंग इन ही हैज चेंज्ड माय गेम अ लॉट एस्पेशियली लाइक मूविंग इन एंड बीइंग मोर एग्रेसिव व्हिच गिव्स ध्रुव अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटी एट द बैक एंड दैट्स आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स नीडेड इन मिक्स्ड डबल्स एंड गिव्स अस अ राइट प्लान।
0: हालांकि भारतीय खेमे की सफलता के तीसरे दिन का सिलसिला मेंस डबल्स में टूट गया जब हरिहरन अमसा करुणन और एम आर अर्जुन की भारतीय जोड़ी 15वीं रैंक कोरियाई जोड़ी कैंग मिन युक और की डांग जू से पहले गेम में संघर्ष के बाद मैच 17-21 14-21 से हार बैठी। इस मुकाबले में भारतीय जोड़ी के बीच वैसा तालमेल नहीं बन सका जिससे वे जीत तक पहुंच सकते थे। एम आर अर्जुन ने भी इस बात को माना।
3: आई थिंक हम लोग स्टार्ट अच्छा ही किया था मैच से पहले। हमारा टैक्टिक ऐसा था कि कोरियंस के साथ यू नो दे आर वेरी गुड एट डिफेंस तो मैच लंबा होने वाला था एंड हम लोग मेंटली प्रिपेयर था लंबा मैच खेलने के लिए एंड आई थिंक 15 ऑल तक वी एक्सिक्यूटेड आवर टैक्टिक प्रीटी वेल। हियर एंड देयर मिस्टेक्स हो रहा था बट हम लोग कवर भी कर रहा था 15 ऑल तक लेके आया मैच को बट फिर उधर से जो आई थिंक 2-3 पॉइंट्स कंटिन्यूस चला गया आई थिंक दैट कॉस्ट अस द मैच बिकॉज 18-15 से एक्सपीरियंस पेयर है वो लोग तो एक एक्सपीरियंस पेयर से 18-15 डाउन से टू ब्रिंग अप द मैच और क्लोज द मैच इज सच डिफिकल्ट टास्क।
0: कोर्ट नंबर 3 पर इसके बाद बारी आई भारतीय महिला बैडमिंटन की नई सनसनी उन्नति हुडा की। उनका मुकाबला था 13वीं रैंक वाली कनाडा की मिचेल ली के साथ। बिना किसी दबाव और तनाव के कोर्ट पर उतरी उन्नति ने हार के बावजूद सबको अपना मुरीद बना लिया। पहला गेम 21-11 से जीतने वाली हरियाणा की उन्नति ने दूसरा गेम आसानी से 9-21 से गंवा दिया। लेकिन इस मैच का सारा रोमांच तो जैसे तीसरे गेम में छिपा था। उन्नति दो बार मैच पॉइंट पर भी पहुंची लेकिन कैनेडियाई खिलाड़ी ने दबाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 23-21 से अंतिम गेम और मैच दोनों जीत लिया। लेकिन बैडमिंटन प्रेमियों का दिल तो भारतीय लड़की ने जीता। तभी तो हार के बाद भी उन्नति के चेहरे पर मुस्कान थी।
4: बहुत अच्छा मैच था। आई प्लेड रियली गुड। मैंने अपना पूरा दिया बट लास्ट में मैं अपने साइड मैच को कन्वर्ट नहीं कर पाई। दो बारी एडवांटेजेस भी आए, मैच पॉइंट भी आया बट आई एम रियली हैप्पी दैट आई pushed myself and pushed her also. It was a really good match and I'm happy the way I played on the net. I did good taps and dribbles also. I feel like in between 2-3 points I did few silly mistakes from my hand that shouldn't have been done because wo world number 13 hai so I think uski taraf se silly mistakes beech beech mein critical moments pe bahut kam hue and whenever she had the chance she just took it. So I have to learn this from playing with the upper ranked players.
0: उन्नति ने माना कि इस मैच

0: ने उन्हें ढेर सारा अनुभव दिया।
1: Yeah, I feel like in this tournament I was taking a lot of time and I was a bit more patient than my previous games and I was sticking to the plan and when she was able to understand what I'm playing so I was able to change my game plan also according to the situation so it has improved if I compare with my previous matches.
0: लगातार दो हार से हताश भारतीय खेमे की निराशा को मेन सिंगल्स में 14वीं सीड लक्ष्य सेन की हार ने और गहरा कर दिया। मैच में फेवरेट लक्ष्य की चुनौती को अमेरिका के गैरेट टैन ने मैराथन मुकाबले में 21-19, 19-21, 17-21 से ढेर कर दिया। पराजय से परेशान लक्ष्य ने माना कि विरोधी ने ज्यादा बेहतर खेल दिखाया।
2: इट वाज अ गुड मैच, आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माय ओपोनेंट, ही प्लेड अ वेरी सॉलिड गेम एंड अगेन टुवर्ड्स द थर्ड सेट बोथ ऑफ अस वर लाइक कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, सो या आई थिंक आई गेव इट माय ऑल इन द एंड, बट या इट वाज just not enough to win this match and we are a little bit disappointed.
0: इसके बाद बारी थी भारत के मेंस बैडमिंटन की नई उम्मीद आयुष शेट्टी की। पहले राउंड में वर्ल्ड नंबर वन को शिकस्त देने वाले आयुष ने श्रीलंकाई प्रतिद्वंदी दिमेंदु अभय विक्रमा को मात्र 26 मिनट में एक तरफा अंदाज में 21-8, 21-10 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी शक्ति को बचा लिया। आयुष ने कहा मैच आसान था।
3: आई थिंक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ टफ मैच, आई थिंक ऑल माय मैचेस आई कम प्रिपेयर्ड एज इफ यू नो इट्स गोइंग टू बी अ रियली ग्रेट मैच बिकॉज आई थिंक एवरीवन इज प्लेइंग गुड, प्लेइंग ग्रेट बैडमिंटन आई थिंक इन मेन सिंगल्स, सो या आई थिंक आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर अ टफ मैच बट हैप्पी विद द यू नो कंफर्टेबल, डेफिनेटली आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट मैच अगेन टुमारो अगेंस्ट एलबी, आई प्लेड हिम अ कपल ऑफ टाइम्स, इट्स ऑलवेज अ ग्रेट मैच एंड सुपर टफ ओपोनेंट, एज ऑफ नाउ यू नो रिकवर एंड आई थिंक लेटर यू नो वी प्रिपेयर फॉर द मैच एनालाइज
0: कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तीसरे दिन भारत के लिए अंतिम मैच में कोर्ट पर उतरी भारत की सबसे बड़ी उम्मीद पीवी सिंधु। सिंधु ने राउंड ऑफ 32 में कनाडा की वेन यू झेंग को 21-16, 21-17 से मात दी। मैच के बाद सिंधु ने कहा कि इस जीत के बाद अब वो अगले मैच के लिए भी तैयार हैं।
4: मुश्किल ही होगा ऑब्वियसली, इजी मैचेस नहीं रहेगा, अभी जब हम टॉप एथलीट्स के साथ खेल रहे तो इजी मैचेस या इजी पॉइंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग मैचेस एंड आई एम रेडी फॉर इट एंड मैं वांगजी के साथ बहुत अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव प्लेड अगेंस्ट हर एंड वी नो ईच अदर्स गेम, बस आई नीड टू गिव माय बेस्ट एंड प्ले माय गेम।
0: सिंधु ने माना कि उनके लिए फिटनेस को बनाए रखना इस समय एक चुनौती है।
4: या आई थिंक रिकवरी प्लेज अ वेरी मेजर रोल एंड यू नो बैक देन व्हेन यू आर एट योर 20s यू आर लाइक ओके यू नो यू कैन प्ले, यू कैन कम बैक, यू कैन प्ले एंड देन यू कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन, बट आई थिंक आफ्टर सर्टेन टाइम यू नो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड यू आर नॉट 20 और 19 anymore. You need to understand your body and accordingly smartly make those changes.
0: विदेशी खिलाड़ियों में वर्ल्ड नंबर 6 चाइनीज ताइपे के चाओ तियन चेन ने इटली के जियोवानी टोटी को आसानी से 21-12, 21-11 से शिकस्त दी। तीसरी सीड इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी भी सिंगापुर के जिया हैंग ते के साथ 19-21, 21-19, 21-11 से जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। 12वीं सीड चाइनीज ताइपे के लिन चुन यी डेनमार्क के रास्मस गेमके से हारकर उलटफेर के शिकार हुए। महिला वर्ग में टॉप सीड कोरिया की अन से यंग, तीसरी सीड चीन की वैंग जे ही, 10वीं सीड जापान की कोदाई नाराओका, 5वीं सीड चीन की हैन यू भी अन्य खिलाड़ियों के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब आज चौथे दिन प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले होने हैं। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री पुलेला भारतीय अभियान का आगाज करेंगी। इस जोड़ी का सामना 7वीं सीड जापान की रिन इवानागा और की नाकानिशी से होगा। मिक्स डबल्स के राउंड ऑफ 16 में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो 6ठी सीड चीन के गुओ जिनवा और चेन फेंग हुई से भिड़ेंगे। मेन सिंगल्स में आयुष शेट्टी का सामना 11वीं सीड इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में 3री सीड चीन की वांग जीई से दो दो हाथ करेंगी। भारत के लिए दिन का अंतिम मैच मेंस डबल्स में 5वीं सीड सात्विक सायराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का होगा। यह जोड़ी मलेशिया के जुनेदी आरिफ और यैप रॉय किंग से खेलेगी। तो तिरंगा यूं ही आसमान की बुलंदियों पर लहराता रहे, जीत का कारवां आगे बढ़ता रहे और भारतीय बैडमिंटन की स्वर्णिम गाथा लिखी जाती रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर स्वाति और इंदिरा गांधी स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश।
5: शोर मचा ले ओ दिल्ली जब शक्ल हवा में उछले,
6: तो अभी आप सुन रहे थे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप, जो विश्व महासंघ चैंपियनशिप चल रहा था उसकी आपने रिपोर्ट सुनी। उम्मीद करते हैं रिपोर्ट पसंद आएगी और अब बढ़ते हैं एक कदम और आगे।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
9: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
10: नमस्कार जी, वापस आ गए हैं। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद आपने सुनी रिपोर्ट्स BWF की, तो बैडमिंटन से अगर आपको लगाव था तो उम्मीद करते हैं वो रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। और अब चलिए बढ़ते हैं अपने इस कार्यक्रम में एक कदम और आगे, और हम बात करते हैं एक ऐसे शख्सियत की जिसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया और हमें सोचने पर मजबूर कर दिया पर्यावरण के बारे में। तो कहते हैं धरती का बढ़ता तापमान, बदलता मौसम और पर्यावरण पर बढ़ता दबाव, इन सारी चुनौतियों को दुनिया के सामने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखने वाले एक शख्सियत जिनका नाम पर्यावरणविदों में से एक था, और उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र कुमार पचौरी। 20 अगस्त 1940 को जन्मे डॉक्टर पचौरी लंबे समय तक टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे, और IPCC यानी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, के वो अध्यक्ष भी रहे। उनके नेतृत्व में IPCC को वर्ष 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से भी डॉक्टर पचौरी को सम्मानित किया गया, और उन्होंने जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के प्रति जो वैश्विक जागरूकता थी उसको बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज उनकी जयंती है, उनको याद करते हुए एक यही संदेश है कि प्रकृति की रक्षा आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की पहली शर्त होती है। वो हमें ये संदेश दे गए, वो हमें सिखा गए। तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार पचौरी को सादर नमन। और कहते हैं ना कि जो हवा चलती है और जो पर्यावरण में खुली हवा में हम सांस लेते हैं, ताज़ी हवा में, और उसकी जानकारी अगर हमें पहले से लगती है तो इस सबसे जागरूक किया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डॉक्टर पचौरी ने। उनको हम सल्यूट करते हैं, उनको नमन करते हैं और एक प्यारे से गीत के साथ एक कदम आगे बढ़ते हैं। और कहते हैं कुछ गीत के अल्फाज इतने खूबसूरत लिखे होते हैं कि वो जहन में उतर जाते हैं, दिल की गहराइयों में उतरते हैं और हमें एक संदेश भी देकर जाते हैं। और वो संदेश ऐसा नहीं कि हमें, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। ये गीत भी बहुत खूबसूरती से प्रकृति के लिए दर्शाया गया है।

तो भाई हवाएं चलें और हवा के साथ उड़ना तो बनता भी है। अपने पंखों को इतनी उड़ान दो कि नई ऊंचाई तक पहुंचो। और यही युवा पीढ़ी की पहचान होती कि देश को अगर दिशा देनी हो तो युवा पीढ़ी के साथ हो लो, बस दिशा अपने आप मिलती चली जाएगी। तो भाई साहब चलिए एक युवा नेता की भी बात कर लेते हैं। एक ऐसा युवा नेता जिसने कम उम्र में देश की बागडोर संभाली और भारत के भविष्य को नई दिशा देने की कोशिश की, जिसने देश को आधुनिक तकनीक, कंप्यूटर और संचार की नई दुनिया से जोड़ने का एक सपना देखा था और वो सपना आज हम देख रहे हैं किस तरह से पूरा हो रहा है। भाई 20 अगस्त 1944 को जन्मे इस नेता ने वर्ष 1984 में भारत

के प्रधानमंत्री पद को संभाला था और उनके कार्यकाल में तकनीकी, शिक्षा, दूर संचार और कंप्यूटरीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था। और आज का युग देख लीजिएगा, आप पर कंप्यूटर, मोबाइल, सब कुछ हमारे हाथों में है। तो ये उसी नेता की देन है जिस पर आज जो हमारा देश है, उसकी युवा पीढ़ी जो है आगे बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की। उनकी आज जयंती है, उन्हें याद करते हुए उनके सपनों के उस भारत को हम नमन करते हैं जो युवा शक्ति, विज्ञान और तकनीक के साथ आगे बढ़ने का संकल्प रखता है। और आज भी उनके द्वारा दी गई ये सौगात हम सबके काम आ रही है, युवा पीढ़ी के काम आ रही है और मानो एक जिंदगी का हिस्सा बन गई है वो सारी तकनीक। तो राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर सादर नमन करते हैं। और कहते हैं कि अगर बुलंदियों पर पहुंचना हो तो अपने सपनों को उड़ान देनी होती है और तभी ये बुलंदियां तय हो जाएं। तो आज बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर नजर आती है।

तो बुलंदियों में पहुंचने के लिए भाई साहब आगे बढ़ना पड़ता, और हमने देश के ऐसे युवा नेता की बात करी जिसने जो कुछ हमें दिया वो सौगात आज भी कहीं ना कहीं देश की तरक्की में चार चांद लगा रही है, और उसके बिना मानो जिंदगी अधूरी सी लगती है। लेकिन कुछ लोग और ऐसे होते हैं, चूंकि युवा शक्ति की बात कर रहे हैं तो युवाओं में एक शख्सियत ऐसी भी थी जो खेल जगत से थी, जिसने खेल में एक ऐसे खेल में संभावना जताई थी जिसमें लगता था कि शायद उतनी तेजी से भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिसके लिए हम सिर्फ जो शुरुआत करना चाहते हैं यही कहना चाहेंगे कि भाई एक बिसात 64 खाने और हर खाने में छिपी एक संभावना। कभी एक छोटी सी चाल पूरी बाजी बदल देती है, तो कभी जीत के लिए लंबे इंतजार और धैर्य की जरूरत होती है। कुछ ऐसा ही सफर रहा एक ऐसी लड़की का जिसने महज 8 साल की उम्र में शतरंज की दुनिया में कदम रखा। छोटी

से शुरू ये सोच और अभ्यास की यात्रा आगे बढ़ी और उन्होंने वुमेन ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर लिया। लेकिन कहानी सिर्फ खिताब की नहीं है भाई, ये कहानी है धैर्य, लगातार सीखने और हर अगली चाल पर भरोसा रखने की। हम बात कर रहे हैं तानिया सचदेवा की। उनका जन्मदिन है, जन्मदिन पर तानिया सचदेवा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कहते हैं कि बिसात हो या जिंदगी, सही चाल वही है जो हमें हार मानने की बजाय अगली कोशिश के लिए तैयार रखे। और इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश भी रहती है कि उन महान शख्सियत से आपको रूबरू करवाएं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है। हम उन लोगों की बातें करें, उनसे सीख लें, उनसे प्रेरणा लें, उनसे आगे बढ़ने की एक प्रेरणा जरूर लें कि हमें जाना कहाँ है, हमारी मंजिल क्या है और हम खुद को कैसे पहचानें। बस यही बात अगर हमें ध्यान में रखनी है तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिए कि आप अपने लिए नहीं सबके लिए बहुत कीमती हैं, बशर्ते आपका नजरिया जिंदगी को देखने का है क्या। तो चलिए ताने के लिए सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें गौरव के वो क्षण उपलब्ध कराए जिस पर पूरा देश आज फख्र करता है। तो चलिए सलाम इंडिया, सलाम तानिया। और इस गीत के साथ बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे 9 बजे।

और देखो भाई साहब, आपके पास 5G होगा, मेरे पास 2G है, यानी गौतम गौड़ हमारे इस वक्त स्टूडियो में आ चुके हैं। बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, उसके बाद प्रोग्राम को वो आगे ले जाएंगे।

और अब समय हो गया है आज के मुख्य समाचार का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को भी स्वीकृति मिली। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के दौर में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिजेरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा है। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख इस महीने की 31 तारीख बढ़ा दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल्ड टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट लिए। और नीदरलैंड में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुए।

याद सताएगी और आपने याद किया और हम चले आए। कहते हैं कि आरजू झूठ है, फरेब है, आरजू का फरेब खाना नहीं और खुश जो रहना हो जिंदगी में अगर दिल कभी किसी से लगाना नहीं। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि पेड़ लगाओ, वो कहीं ना कहीं आपको घाव नहीं आपको छाव देते हैं ना। और चलिए ये तो है, और ये भी कहा जाता है कि दूर है मंजिल और फार है किनारा, फिर क्यों नहीं आता ईमेल तुम्हारा, भूल गए नंबर या नाम हमारा, या यू फाउंड समवन हमसे भी प्यारा। मुझे पता है कि आप सज धज के

सज धज के रहने में कोई बुराई भी नहीं है. फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन. वेल नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, लेकर आपका होस्ट, आपका मित्र आ चुका है आरजे गौतम स्टूडियो में. एंड यही कहना चाहूंगा, बाबू जी हवा में प्रणाम. आपको लग रहा होगा ना ये हरियाणवी में कैसे मैं बात कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि आज जन्म दिवस है रणदीप हुड्डा का. बॉलीवुड के दमदार और बहुमुखी अभिनेता रणदीप हुड्डा आज 20 अगस्त को अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं. अपनी शानदार अभिनय किरदारों में पूरी तरह ढल जाने की क्षमता और मेहनत के लिए पहचाने जाने वाले रणदीप हुड्डा ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. कि यूं ही नहीं जमाने को कुछ करके दिखाया, यूं ही नहीं ताने मारने वालों का मुंह बंद करवाया, बेटा इतना हमने पसीना नहीं बहाया होगा जितना इन्होंने पसीना बहाया. मैं आपको बता दूं, हाईवे का वो टाइम था जब इन्होंने कोई भी सनस्क्रीन जो थी वो यूज नहीं की थी महीनों तक. एंड देखा आपने परफॉर्मेंस, वो याद ही होगा आपको. तो बस यही कहना चाहूंगा, उनकी खासियत है कि वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं से पीछे नहीं हटते और हर फिल्म के साथ खुद को एक नए रूप में पेश करते हैं. और उनका भी ये कहना था कि मैं जो है क्वालिटी में बिलीव करता हूं, क्वांटिटी में नहीं. तो हैप्पी बर्थडे टू यू. हालांकि जिसका काम उसी को साजे, हवा में प्रणाम, ढेर सारी बधाइयां.

वेल कहते हैं कि मैं शून्य पे सवार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं, अब आफतों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूं। जी हां, जिन्होंने ये लाइनें कही है ना, आज उनका भी जन्मदिन है। जी, अपनी सादगी, शानदार हास्य और दिल को छू लेने वाली शायरी से लाखों लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले जाकिर खान को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उनकी बातों में ना हंसी के साथ साथ जिंदगी की सच्चाई और रिश्तों की खूबसूरती भी झलकती है। ये अंदाज उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाता है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा था कि हमेशा जो है अपनी औकात से बाहर सोच लेना चाहिए। क्या पता ऊपर वाला सुन रहा हो और वो कह दे तथास्तु, कि हम भूख के सताए बच्चे हैं, एक दिन आएगा कि सब कुछ खाएंगे और घर से निकले हैं तो इतिहास रच कर ही जाएंगे। जाकिर खान, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज़ एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
7: हिमालय की गोद से लेकर
8: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
7: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
8: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
7: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
8: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
7: तो सुनना ना भूलें
8: रेनबो डेस्टिनेशंस
7: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाए।

इश्क न करियो काके, और जब ऐसा मौसम हो तो चाय के साथ हो जाए पापे। वैसे जो भी ला रहे हो दो लाना। वैसे मैं आपको बता दूं, शो को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। डीटीसी ने दिल्ली से करनाल के बीच इलेक्ट्रिक बस सेवा जो है शुरू की है, जिससे यात्रियों को रोजाना 10 फेरों का लाभ मिलेगा। वहीं दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग PWD ने अपना खुद का इंजीनियर कैडर बनाने की मंजूरी दे दी है। तो सोचिए, हमारा देश जो है बदल रहा है, और कहीं ना कहीं अपडेट अपग्रेड हो रहा है।

आपने ब्रेकफास्ट किया, वैसे आपने खाना खाया? ये लास्ट टाइम एक शादी में जब मैं 10 साल का था, एक अंकल ने मुझसे पूछा था। कहते हैं कि ख्वाहिश ऐसी करो कि दूर तक जा सको और जिम्मेदारियों को निभा सको। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पता है क्या होता है कि बोला जाता है कि नहाए धोए क्या हुआ जब मन का मैल ना जाए, नीम सदा जल में रहे धोए भास ना जाए। ऐसा इसलिए कह रहा हूं बिकॉज हमारे राष्ट्रपिता ने एक सपना देखा था और वो सपना ये था कि स्वच्छ भारत का, और वही सपना लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी आगे चल रहे हैं और दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान 2026 की शुरुआत हो गई है। राजधानी में ये व्यापक अभियान 17 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इसमें आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए।

खड़ा हूं कैसे मैं यहां पे, अब ना पूछना दर्द शायरी में तुमको चाहिए सबूत क्या। सफर ये सोच के जुड़ा हूं मैं जमीन से, यकीन ना था फिर भी आगे आया मैं यकीन से। आप ट्रैफिक में आगे निकलने की कोशिश ना कीजिएगा, और अगर आप जा रहे हैं धोला कुआ की तरफ तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक आपको मिल ही सकता है। क्या करें, गुरुग्राम में एंटर करना थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। 102.6 FM, दिल से दिल तक। गुड मॉर्निंग डिलियंसिया।

लेकिन अगर आपकी भी ऐसी तलाश है तो ये तलाश खत्म हो जाए, क्योंकि सलामत रहे दोस्ताना आपका भी। वेल, कहते हैं कि नींद को बोलो बाय बाय, अलार्म को करो इग्नोर, क्योंकि सुबह हो गई है और मस्ती होने वाली। अभी तो और भी, अभी तो आया हूं मैं जनाब, अभी अभी तो आयो, अभी अभी जाओगे, अरे पता ही नहीं लगता समय का। वेल, और कहते हैं पंजाबियों को ना दो ही चीजें पसंद है, एक बटर नान विद चाप और नाचते पैरों की थाप, और कभी भी ना चलो ट्रैफिक में ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं तो भी, पर पार्टी तो होती है।

करिए नचना आंदा नहीं। वेल चलिए नाचना आए ना आए, लेकिन खुशखबरी ऐसी है कि आप थिरकने पर मजबूर हो जाएंगे। भारत ने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया और इसी के साथ टीम टॉप 8 में पहुंच गई है। वहीं पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। एंड कहीं ना कहीं हॉकी के जितने भी प्रेमी है ना, उनके लिए अच्छी खबर है और पूरे देश के लिए अच्छी खबर है।

करें, एडिक्शन चीज ही कुछ ऐसी है। और अब एक ऐसे व्यक्ति आ गए स्टूडियो में जिसे जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है नहीं, और आप कहते हैं कि एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे रविंद्र जी? दिल जीतने के लिए आ गए हैं लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, तो जेंटलमैन अरे ओ पेट पूजा बाद में काम दूजा, समझ रहा हूँ मैं, मौसम इतना बढ़िया है तो मैंने कहा था रविंद्र भाई से जो भी ला रहे हो दो लाना, एक से भले दो का नारा लेकर। और अब स्टूडियो में भी सहारा मिल गया इनका, तो चलिए जेंटलमैन, दिस इज द डे यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट यू ऑलमोस्ट गॉट कैप्टन जैक स्पैरो। नाउ आरजी गौतम इज साइनिंग आउट।

और अब आप सुनेंगे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा, ईरान की मदद

करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा है। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के सातवें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है। और अंत में खेल जगत से, एफआईएच हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम स्टेलविन में इंग्लैंड से खेलेगी। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: हाँ जी नमस्कार, हाजिर हूँ मैं रविंद्र सिंह आपके साथ इस कार्यक्रम को लेकर। बस आपका जो इंतजार है पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि हम बजाने जा रहे हैं वो ट्रैक जो आपको आज खुश होने पर मजबूर करेगा, क्योंकि सारा मामला फीलिंग से जुड़ा हुआ है। तो फीलिंग को बैटर करते हैं। दिल के तराने गाने नए पुराने लेकर हाजिर हूँ मैं रविंद्र सिंह, नए पुराने गीतों का संगम। पुराने गीतों का भी हमारे पास बेहतरीन ट्रैक्स मौजूद हैं, तो आप बस हमारे साथ बने रहिए यहीं पर।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर,
4: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
5: पता का चाय गजब का स्वाद।
6: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
7: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: तो भाई साहब गीतों का सफर लगातार जारी है क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है दिल के तराने, गाने नए पुराने, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र सिंह। और इसी गीत के सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
1: वेलकम बैक टू द मैचलेस म्यूजिक आवर ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो। It's 10:15 a.m. by the studio clock, and it's time to play the first Hindi melody of the morning. This song is an example that music knows no language and barriers. This Hindi track was not just famous in India, but in other parts of the world as well. Written by Shailendra and composed by Shankar Jaikishan, it became a massive international hit, especially across the Soviet Union and parts of the Middle East. This is none other than Mera Juta Hai Japani, sung by Mukesh from the 1955 film Shri Char Subis.

को राम राम, मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए, मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सब पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। समझे ना भाई लोग, अपने पास एक ही चीज 16 आने स्वदेशी है और वो है मेरा हिंदुस्तानी दिल।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: Welcome back to the Matchless Music Hour on 102.6 MHz FM Rainbow. This is Mansi Ranjan with you for this hour. If you're someone who enjoys art, crafts and Indian textiles, well, Delhi is currently hosting the Weave the Future 5.0 Handloom Exhibition at Handloom Heart on Janpath. You can visit the event till August 23rd from 11 a.m. to 8 p.m. So, if you're around Janpath this weekend, this could be another interesting place to explore. And now, getting back to our musical journey, the next track on today's broadcast is a love song by Anne Murray.

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक टू द मैचलेस म्यूजिक आवर ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ FM रेनबो। Do you know that one of the simplest pleasures of radio is that it doesn't demand much from us? We don't have to search, scroll, or decide what comes next. We can just simply let the music play while getting on with the morning. Since there's little time left for the show, here is another timeless melody ready to make its way. So stay tuned for I'm Still Standing by Elton John.

नमस्कार, आप सुनेंगे एफएम रेनबो मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे सीमा सुरक्षा से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। तमिलनाडु में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोक से मुलाकात की। वित्त मंत्री भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के चौथे दौर में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर की यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। कहा, परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अमेरिका के राजदूत सार्जियो गौर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय और स्थानीय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के दौर में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रीय सरकारी संचार का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा है। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के सातवें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। भारत ने काबुल के सरकारी अस्पताल को दवाइयों और चिकित्सा सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा, यह सहायता अफगानिस्तान की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ

आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ईरान की मदद करने वाले देशों को बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी दी। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद में मतदान होंगे। भारत ने गोल टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार के पूरे मैच में पहली बार 10 विकेट लिए। और नीदरलैंड में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम शुरू हो चुका है बॉलीवुड ट्रेल्स और मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। बहुत सारी बातें होंगी बॉलीवुड जगत की, बॉलीवुड जगत से जुड़े हुए लोगों की और साथ ही साथ बॉलीवुड सरताज का क्विज भी होगा, तो हो जाइए तैयार। बातों की शुरुआत करने से पहले एक शुभारंभ वाला गाना तो बनता है।

तो शुभारंभ हो चुका है बॉलीवुड रेस प्रोग्राम का। बातें होने वाली हैं शुरू बॉलीवुड की, और बॉलीवुड की बातें शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि आज कौन है जिनका है बॉलीवुड सेलेब्स का बर्थडे, और बॉलीवुड सेलेब्स में कौन है आज जो बर्थडे मना रहे हैं। जी हाँ, बताते चले आपको, रणदीप हुड्डा है आज उनका है बर्थडे। हैप्पी वाला बर्थडे विश कीजिए सभी लोग इन्हें। और रणदीप हुड्डा ने अपने करियर की जो शुरुआत की थी 2001 में मीरा नायर की फिल्म मानसून वेडिंग से की थी, और इसके बाद राम गोपाल वर्मा की डी जो कि 2005 में आई थी, इससे उन्हें एक पहचान मिली। और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में भी इन्होंने काम किया, और हाईवे, सरबजीत, साहेब बीवी और गैंगस्टर, किक और स्वतंत्र वीर सावरकर जैसी फिल्मों में ये अपना अभिनय का जलवा दिखा चुके हैं। तो इन्हें करिए आप हैप्पी वाला बर्थडे विश। और इसके अलावा अमृता पुरी का भी है आज बर्थडे। मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ, और एक्टर मॉडल के तौर पर उन्होंने काम किया। 2010 में सोनम कपूर की फिल्म आयशा से इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की, और काय पोछे फिल्म जिसका मैंने आपको गाना अभी अभी सुनाया, इस फिल्म में भी उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बहन का किरदार निभाया था। मेड इन हैवन और फोर मोर शॉट्स प्लीज वेब सीरीज में भी इन्होंने काम किया है। तो इन्हें भी कीजिए हैप्पी वाला बर्थडे विश। और इसके अलावा जाकिर खान का भी है बर्थडे। तो भाई जाकिर खान कौन नहीं जानता है इनको, हंसा हंसा के लोट पोट कर देते हैं। लेखक के तौर पर भी ये काम करते हैं, कवि और अभिनेता तो है ही है। और आपको बताते चलें कि सितार प्लेयर और गिटार प्लेयर भी ये करते हैं। जी हाँ, ये दोनों चीजों पर इन्होंने डिप्लोमा लिया हुआ है। और कॉमेडी और किस्सा गोई अपने हुनर के लिए पहचाने जाते हैं, कॉमेडी शोज कर चुके हैं और लोगों को हंसा चुके हैं, तो इनका भी है बर्थडे। इन्हें भी करते हैं हम हैप्पी बर्थडे विश, और बढ़ाते हैं बॉलीवुड ट्रेल्स प्रोग्राम की बातें।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
7: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
6: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
8: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
10: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। बातें हो रही हैं बॉलीवुड की और बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में आ रही हैं और जिनमें अलग अलग एक्टर अलग अलग कैरेक्टर करने को तैयार है। उनमें से एक है कौन? अक्षय खन्ना। जी हाँ, अक्षय कुमार तो कर ही रहे हैं लेकिन अक्षय खन्ना भी उसी रास्ते पे चले गए हैं और अब बताते हैं आपको एक अलग अवतार में दिखाई देने वाले हैं और वो कौन सी फिल्म होगी और कैसे अवतार में दिखेंगे ये बताएंगे आपको। लेकिन ये प्यारा सा गीत पहले सुन लीजिए।

इंडस्ट्री की ताल से ताल मिलाकर अक्षय खन्ना भी चल पड़े हैं एक नई राह में। हनुमान जैसी शानदार सुपरहिट फिल्म, सुपर हीरो वाली फिल्म, साउथ फिल्म निर्देशक प्रशांत वर्मा महाकाली लेकर आ रहे हैं और बतौर निर्माता प्रशांत ने तेलुगु सिनेमा की पौराणिक फिल्म को तैयार किया है, जबकि महाकाली के डायरेक्शन की कमान फीमेल डायरेक्टर पूजा अर्पणा कोल्लूर ने संभाली है। और फिल्म की बात कहें तो जबरदस्त होने वाली है ये फिल्म, क्योंकि इस फिल्म में अक्षय खन्ना असुर गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभाने वाले हैं। हाँ जी, ये पहली बार होगा कि ऐसा कैरेक्टर वो प्ले करने वाले हैं। वैसे इन सारी चीजों के ऊपर से पर्दा 24 अगस्त को उठ जाएगा, क्योंकि 24 अगस्त को मेकर्स ने कुछ अलग करने की सोची है और इस फिल्म महाकाली में अक्षय का फर्स्ट लुक और वीडियो रिलीज किया जाएगा 24 अगस्त को। धुरंधर की बहुत जबरदस्त हिट, सुपरहिट और अपार सफलता के बाद अब गुरु शुक्राचार्य की भूमिका में निभाते हुए नजर आएंगे हमारे अक्षय खन्ना। और माइथोलॉजिकल फिल्म है ये और कैरेक्टर वाकई बहुत जबरदस्त है। और अब ये देखना है कि पहली बार अक्षय साउथ की फिल्मों में काम करने वाले हैं और साउथ की फिल्म से उन्होंने अपना जब खाता खोल ही दिया है तो आने वाले समय में भी बहुत सारी फिल्में कर सकते हैं वो। वैसे कुछ ऐसी बात आपको भी बता दूं कि अक्षय खन्ना जो है बहुत लाइमलाइट से हटकर काम करते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं फुल ऑन और कभी भी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी अपने साथ बटोर कर नहीं लाते, इसलिए चुपचाप अपना काम करते हैं और फिल्म से एक साइड लाइन ले लेते हैं। अब देखना यह है कि शुक्राचार्य के कैरेक्टर में कैसे लगेंगे हमारे अक्षय खन्ना। अभी हलचल फिल्म से शान और अलका याग्निक की आवाज में ये गाना।

0: वैसे क्या क्या होता रहता ना, आर्टिकल 370 और हक जैसे फिल्मों में गंभीर मुद्दे लेकर आने वाली यामी गौतम अब एक नए अवतार में आपको दिखाई देने वाली है। जी हाँ, आनंद एल राय की फिल्म में यामी गौतम दिखाई देने वाली हैं और नए अवतार में दिखाई देने वाली हैं। फिल्म का नाम भी कुछ नया नया सा है, नई नवेली, और यामी गौतम इस फिल्म में मुख्य भूमिका में होंगी। फिल्म का अनाउंसमेंट हो गया है, फिल्म 16 तारीख अक्टूबर में रिलीज होने वाली है और फिल्म का मजेदार पोस्टर भी रिलीज हुआ है। मजेदार इसलिए कहेंगे क्योंकि नई नवेली में जो यामी गौतम है लाल रंग के कपड़ों में दिखाई दे रही हैं और उनके हाथ में एक दुपट्टा है और एक शैतान को वो उस दुपट्टे से कसी हुई हैं। यानी कि ये जो फिल्म है ये हॉरर कॉमेडी होने वाली है। 16 अक्टूबर 2026 को दशहरे के मौके पे ये फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म का निर्देशन बालाजी मोहन करेंगे और हिमांशु शर्मा ने और दिव्य निधि शर्मा ने ये जो फिल्म है वो लिखी है और आनंद एल राय, हिमांशु शर्मा जो है प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, और संगीत जी वी प्रकाश जी ने दिया है। अब देखिए क्या होने वाली है ये फिल्म, कैसी होने वाली है। नई नवेली की जो कहानी है बिल्कुल हटकर होने वाली है। एक ऐसी दुल्हन की कहानी है जो शुरुआत में तो अपने ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छे से रहती है लेकिन बाद में जो है एक अलग ही तरीके के रूप में वो अपने घर पे दिखाई देती है और सब उसे डायन भाभी समझने लगते हैं। बस ऐसे ही कुछ होने वाला है इस फिल्म में, यानी कि कॉमेडी का तड़का लगेगा हॉरर के साथ। तो जल्द दिखाई देगी यानी कि 16 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर नई नवेली में यामी गौतम। अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और भी बातें होंगी आपके साथ।
1: NCERTPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR खर्च, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
5: ठीक है।
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूँ बबीता रावत और समय हो चला है आपसे बॉलीवुड सरताज का क्विज पूछने का। और बॉलीवुड सरताज का आज का क्विज बहुत आसान है। यामी गौतम की फिल्म जो आने वाली है, जो अपकमिंग मूवी है, उसका उसकी बात करिए।

ने, और उसी फिल्म का नाम आपको हमें लिखकर भेज देना है। जी हाँ, यामी गौतम की अपकमिंग मूवी का क्या नाम है उसे लिखकर हमें भेज दीजिए 9868107070 पर अपने नाम के और अपने जिस जगह से आपने हमें मैसेज किया है उस जगह के नाम के साथ। फिर से बात बोल दूँ आपको, एक बार रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन, यामी गौतम की अपकमिंग मूवी जो 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। जी हाँ, चलिए एक और चीज़ भी जोड़ दिए, उसका नाम हमें लिखकर भेज दीजिए।

फिल्मों के दीवानों को अपने एक्टर एक्ट्रेस से इतना प्यार होता है कि जब भी जाते हैं बस उनकी ही फिल्में देखना चाहते हैं। और ऐसे में कुछ फिल्में तो ऐसी होती हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया होता है और उसके बाद वो फिल्म हमें घर पर ही बैठकर देखने को मिल जाती है। जी हाँ, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो OTT पे आने वाली हैं। तो चलिए हम आपको बता दें कौन कौन सी फिल्में इस हफ्ते रिलीज

होने वाली है अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल 21 अगस्त को होने वाली है रिलीज। अक्षय के साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी जैसे बड़े स्टार इस फिल्म में नजर आ रहे हैं और स्क्रीन पर स्टार्स की पूरी टोली आपको दिखने वाली है। फिल्म की कहानी बहुत मजेदार है और बड़ी स्क्रीन पर इस फिल्म ने बहुत जबरदस्त नाम कमाया है। वैसे स्टोरी काफी लोगों ने देख भी ली होगी, लेकिन जिन्होंने देखी नहीं, एक छोटा सा स्पॉयलर दे देती हूँ। अमीर कारोबारी के पास इतना सारा काला धन होता है कि छिपाने के लिए एक बड़ी टेंशन होती है और बस इसी आइडिया को निकालते हुए इस पूरी फिल्म की प्लानिंग की गई है। हाँ हाँ, अब देखेंगे क्या कि कैसे कॉमेडी का तड़का लगता है इस फिल्म में, वो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी वेलकम टू द जंगल में। इसके अलावा साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की आखिरी फिल्म जननायकन भी 21 अगस्त को ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। अब इस फिल्म में एक पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आ रहे हैं और जैसा कि आपको पता ही है, जब पुलिस अधिकारी के रूप में कोई नजर आएगा तो फिर फुल ऑन एक्शन मूवी होगी ये। इनके साथ विजय के साथ बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन और प्रिया मणि जैसे कलाकार आपको नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एच विनोद ने किया है और अब OTT प्लेटफॉर्म पे आप इनका मजा ले सकते हैं।

0: वैसे नैन तक तक तक करते रहते हैं, और जब फिल्मों की बात आती है तो जब फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो उसकी रिलीज से पहले पहले बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, जैसे कि उस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही प्री बुकिंग की बात होती है। हाँ, कुछ कुछ फिल्मों की जो बात होती है ना वो इतनी अनोखी होती है कि एक हफ्ते पहले से ही उस फिल्म की प्री बुकिंग होने लग जाती है, और जब फिल्म बहुत जबरदस्त हो तो क्यों नहीं होगी इसकी प्री बुकिंग। टॉक्सिक फिल्म की बात कर रहे हैं, 26 अगस्त को ये फिल्म सिनेमाघरों पर दस्तक देने वाली है, लेकिन रिलीज से 7 दिन पहले ही एडवांस बुकिंग होने लगी है। हाँ जी, होने लगी है। और जब बात आती है तो रॉकिंग स्टार यश की बात आएगी, क्योंकि टॉक्सिक में वही काम कर रहे हैं। दुनिया भर में ये फिल्म रिलीज हो रही है, और ताज्जुब की बात यह है और बताने वाली बात यह है कि वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को लगभग 12,000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जा सकता है। बिल्कुल सही सुना है आपने, और ये पहली ऐसी फिल्म होगी जो इतनी बड़े लेवल पर एक साथ रिलीज की जा रही है बड़े स्क्रीन पर। इस फिल्म में नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया के साथ यश की फिल्म को एक लंबे इंतजार के बाद आप देख पाएंगे। और फिल्म वैसे मार्च में रिलीज होने वाली थी, लेकिन धुरंधर 2 के क्लैश के चलते इस फिल्म को अब रिलीजिंग डेट इसकी 26 अगस्त कर दी गई है। भाई, छाई रहेगी हमारी टॉक्सिक, और कैसे रहेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स हैं इस फिल्म में, और क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। अभी अभी अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
1: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

कि जब ट्रेंड चलता है ना तो फिल्मों में इसी तरीके का ट्रेंड चलता है. अलग अलग रोल, अलग अलग कैरेक्टर्स हमारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो प्ले कर रहे हैं. उसी में से अल्लू अर्जुन भी ऐसे ही हैं. अल्लू अर्जुन की एक फिल्म आने वाली है राका, और इस फिल्म में उनका जो रोल है वो डिफरेंट होने वाला है. अभी हाल ही फिलहाल जो रिलीज हुआ है पोस्टर, उसमें उनको एक भेड़िए के रूप में दिखाया दिया है, और जब देखें तो फिर नुकीले से पंजों के साथ एकदम इंटेंस लुक में दिखाई दे रहे हैं अल्लू अर्जुन, और बिल्कुल पहचान में भी नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल चेंज से लग रहे हैं. लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि राका फिल्म में बहुत सारे ऐसे गेस्ट अपीयरेंस वाले कैरेक्टर्स प्ले हो रहे हैं जो बिल्कुल अलग हैं. विल स्मिथ का नाम उनमें से एक है, और एक कैमियो करते नजर आएंगे. वैसे पहले भी शाहरुख खान का भी नाम आया था इस फिल्म में कि वो कैमियो करेंगे. अब ये देखना है कि अल्लू अर्जुन के साथ ये दोनों कहाँ पे क्लैश करते हैं मूवी में. जी हाँ, आमने सामने कहाँ पर रहते हैं. वैसे दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना, जाह्नवी कपूर इस फिल्म में दिखाई देंगे. और अभी हम ये गाना सुना दें, उसके बाद अनाउंस करेंगे हमारे आज के बॉलीवुड सरताज का नाम.

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स और बॉलीवुड सरताज का नाम

जल्दी से अनाउंस कर देते हैं क्योंकि हमने फोन मिलाया और उनके पास तक हमारी लाइन नहीं जुड़ पाई। बहुत कोशिश करी हमने आज के हमारे बॉलीवुड सरदार से बात करने की, पर क्या करें, वक्त का तकाजा है भाई। किसी न किसी दिन तो फिर से आपसे मुलाकात होगी, रूबरू करेंगे हम आपसे। नई नवेली है, आंसर क्या है? यामी गौतम की जो अपकमिंग मूवी है, आने वाली है, उसका नाम है नई नवेली। और सबसे पहले हमें जो आंसर मिला है, प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से इन्होंने दिया है सही सही जवाब, और बिल्कुल सही जवाब है। और आज बने हैं आप हमारे बॉलीवुड सरताज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ ही ये प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त करते हुए अगले प्रोग्राम की तरफ प्रस्थान करते हैं। और अगला प्रोग्राम है प्ले इट कूल, और प्ले इट कूल में आपके साथ मानसी होंगी, और उसके बाद होगा मेरा वाला सॉन्ग। आप और हम करेंगे एक दूसरे से साझा अपनी प्लेलिस्ट, तो करिए जल्दी से जल्दी मैसेज कब 1 से 2 के बीच में। अभी आपसे मिलते हैं ठीक 1 बजे, तब तक के लिए गाना एंजॉय कीजिए और अगला शो भी एंजॉय कीजिए।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: वेलकम बैक टू प्ले इट स्कूल ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ FM रेनबो। वेल, देयर आर सो मेनी वेज टू गिव अ रूम अ पर्सनालिटी एंड एवरीवन हैज देयर ओन डेकोर टेस्ट। Some people love bright shades, while some prefer everything minimal. Some love white more, while some

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
4: बेटा कुछ खा लो, मेरा ठाते आते शाम हो जाएगी।
3: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
4: हैं इतनी जल्दी?
3: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
6: हिमालय की गोद से लेकर
7: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
6: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
7: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
6: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
7: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
6: तो सुनना ना भूलें
7: रेनबो डेस्टिनेशंस
6: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
8: Welcome back to Play It Cool on 102.6 MHz FM Rainbow. Today we are talking about home decor and easy tips to beautify your home. Just playing the promos, we talked about what's your favorite decor style, and here is Antima who shares that she genuinely likes the minimalism decor style. It gives her so much space and every empty space further beautifies her room. Well, that's really nice to hear, Antima. Plus, there's Mr. Pankaj Dogra who writes that if he had to pick one decor style, he'd go with warm minimalism. Like it is clean and uncluttered with cozy lighting, wood tones, plants and a few personal touches. Wow, Mr. Dogra, you actually have a lot of things for decor themes. So, if you have a small room and want to make it bigger, so here's a little secret, a decor tip basically. Don't fill it with furniture. Instead, you can add a mirror opposite to a window. It can bounce the natural light around and make the space feel a little more open. And if you're wondering that what song would go well with that freshly opened room, so here's bringing a little more sunshine into the afternoon with Happy Now by Kygo featuring Sandra Cavazza.

0: रोहन बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
6: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
5: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
6: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
7: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
8: पता का चाय, गजब का स्वाद।
9: वेलकम बैक टू प्ले इट कूल ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो विद मानसी रंजन। टुडेज़ प्ले इट कूल आवर इज ऑल अबाउट होम डेकोर एंड म्यूजिक, एंड वी ऑल लव टू हियर सम बैकग्राउंड म्यूजिक व्हाइल डेकोरेटिंग आवर होम्स। So tell us, what's your go-to home decor track? Like, it's that one track that you can't even move without. So messages on the WhatsApp number 9868107070. We'll be there to read out your messages and listen to the favorite songs. In the meanwhile, here's Sunshine in the Room by James Bay to accompany that little home makeover.

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वे आज पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। वित्त मंत्री भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के चौथे दौर में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर की यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की सह अध्यक्षता में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। बैठक में समुद्री सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने तथा मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी सहयोग मजबूत करने पर विचार विमर्श की उम्मीद। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राजधानी में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी मोर्चों पर निर्बाध बहु एजेंसी समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। कहा, परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में विकासशील देशों की अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में निर्मित 2,35,000 आवासों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। नए चयनित लाभुकों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद आज राष्ट्रपति चुनाव होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 अन्य घायल हो गए हैं। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और चीन की वांग जी यी आमने सामने होंगी, जबकि आयुष शेट्टी का सामना

इंडोनेशिया के अल्वी फरहान से होगा और FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड का सामना करेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं बबीता रावत, आपके साथ मेरा वाला सॉन्ग प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जहां पर हम प्ले करते हैं आपके फरमाइशी गीतों को। और आप कैसे फरमाइश कर सकते हैं, हम तक अपनी बात कहां तक पहुंचा सकते हैं, कैसे पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल आपको सिंपल और साधारण सा पता है। जी हाँ, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9868107070 पर, जहां पे आप अपनी प्ले लिस्ट हम तक पहुंचा सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा गाना आज आप सुनना चाहते हैं। तो चलिए, अब प्लेलिस्ट को खोलने का समय आ चुका है और जानते हैं कि जो हम पहला गाना प्ले करने वाले हैं वो किसने फरमाइश की है। जी हाँ, देखे देखे देखे भाई कौन है हमारे साथ और किसने की है फरमाइश। मुझसे शादी करोगी का गाना और टाइटल ट्रैक हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं। कौन है ये? हितेंद्र दास, असम से इन्होंने फरमाइश की है और बहुत कुछ लिखा है। आकाशवाणी रेलवे स्टेशन, एफएम रेनबो चैनल, आई लव आकाशवाणी रेनबो, रेनबो चैनल माय फ्रेंड्स, रेनबो चैनल माय जान और रेनबो चैनल माय बंधु, बहुत कुछ बोला है इन्होंने रेनबो के लिए। और जी हाँ, सुन रहे हैं आप बिल्कुल ध्यान से। तो आपका पसंदीदा गीत लीजिए, आपके लिए आ रहा है

और ये प्यारा सा गीत पंकज अमरावती महाराष्ट्र से रिक्वेस्ट की है इन्होंने, और दिल ही दिल में 1999 में फिल्म आई अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में ये प्यारा सा गीत आप सभी लोगों के लिए भी, और साथ ही साथ खास तौर से पंकज जी के लिए।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
5: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
4: इम्पॉसिबल
5: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
6: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
7: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
8: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
7: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
9: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
10: इग्नोर नहीं, याद करो।
11: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

गुलफाम खान दिल्ली शहादरा से उन्होंने इस गीत की फरमाइश की है। आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग और मैं हूं बबीता रावत आपके साथ आपकी हम सफर।

जी हाँ, कृष्ण कुमार मिश्र जी, दिल्ली में रहता हूँ और आपकी पसंद का ये गाना हमने आपके लिए प्ले कर दिया। और बिल्कुल शिकवा मत रहेगा अपने दिल में, देखिए आपका गाना भी प्ले होगा।

0: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, और अगला जो काम हम करने वाले हैं, अगला जो गाना हम आपके लिए मेरा वाला सॉन्ग प्रोग्राम में प्ले करने वाले हैं, वो फरमाइश है गुड्डू धाकड़ जी की। और गुड्डू धाकड़ जी उज्जैन जिले बिड़ावन गांव से इन्होंने फरमाइश की है और कहा है, मेरा गांव मेरा देश पिक्चर का कोई भी गाना हमें सुना दीजिए। तो लीजिए, आपको सुनाते हैं हम इसी फिल्म का ये गाना।

और लीजिए आ गया है भरत शर्मा यमुनानगर। इन्होंने कहा है इस गाने की रिक्वेस्ट भेजी है हम तक पहुंच गई है। आप भी अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हम तक पहुंचा सकते हैं 9868107070 पर। मेरा वाला सॉन्ग प्रोग्राम चल रहा है, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग। और अब जो गाना हम प्ले करने वाले हैं वो है कंचन जी की रिक्वेस्ट, सोनिया विहार दिल्ली से इन्होंने रिक्वेस्ट की है। और इसके अलावा सौरभ अरनेजा जी भी कहते हैं गाजियाबाद से कि गुड आफ्टरनून दोस्त, वेलकम बैक। और साथ ही साथ इनकी कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट नहीं है, बस इनका नाम हमने इस शो में पुकार लिया। तो चलिए सुनिए आप कंचन जी की फरमाइश का ये गीत।

जी हाँ, आपसे मिलना और आपसे बातें करना हमें बहुत अच्छा लगता है। और जब भी आप कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट प्ले करने के लिए कहते हैं ना, हमें बहुत मन करता है हम सभी की सॉन्ग रिक्वेस्ट प्ले करें, पर क्या करें, वक्त का तकाजा है ना। लेकिन हम किसी किसी की सॉन्ग रिक्वेस्ट प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अब हम अगली सॉन्ग रिक्वेस्ट प्ले करने वाले हैं, नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से इन्होंने रिक्वेस्ट

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: आज सुबह सुबह ऐसी कुछ गर्जना धीरे से दिल्ली एनसीआर में बरसी और सराबोर कर गई पूरे दिल्ली एनसीआर को। और बस ऐसे ही सराबोर कर रहे हैं आप अपने गीतों से हमें, और प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। और इस गिटार की धुन से आप समझ ही गए होंगे ना, हाँ, भाटा पारा छत्तीसगढ़ से रिक्वेस्ट किया हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नौखे लाल वर्मा जी का ये पसंदीदा गीत आपको सुनाने जा रहे हैं परदेश फिल्म से।

वैसे चुपके चुपके से समय कैसे आगे बढ़ गया पता ही नहीं चला, और समय हो चला है हमारे जाने का, लेकिन जो वक्त का कारवा है यही नहीं रुकेगा। अगले प्रोग्राम में आप गीतिका उनियाल के साथ आशियाना में अक्षय वट में आज वृद्धजनों के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, और कल वैसे भी सीनियर सिटीजन डे है, और आप देखेंगे कि क्या आज खास लेकर आई है गीतिका आपके लिए। और इसके अलावा उसके अगला प्रोग्राम होने वाला है क्या? हाँ जी हाँ, जिसका नाम है आपका रेडियो डॉक्टर, और वेक्टर बोर्न डिजीज के बारे में बात होगी। डॉक्टर तनु जैन, डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज के बारे में बात होगी। TGHS से हैं ये, और आप सुनेंगे इस प्रोग्राम को 3 बजे, और 4 बजे फिर गीतिका लेकर आएंगी संदेश टू सोल्जर्स। गेस्ट होंगे इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार, सहस्त्र सीमा बल से हैं ये। तो ये सारी प्रोग्राम्स आपके लिए लाइनअप है। अभी छैया छैया करते करते हम यहाँ से निकलते हैं, और इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट जिन्होंने की है, उनका नाम है सुनीता शर्मा, शालीमार बाग दिल्ली से उन्होंने इस गाने की रिक्वेस्ट की है। और अब इसी गाने के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा, फिर किसी दिन किसी रोज इसी मोड़ पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बबीता रावत को दीजिए इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।

नमस्कार, पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान की रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के बीच आज नई दिल्ली में बैठक हुई। दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के प्रारूप के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वे आज पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राजधानी में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी मोर्चों पर निर्बाध बहु एजेंसी समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में निर्मित 2,35,000 मकानों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रूपये से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 लोग घायल हो गए। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड का सामना करेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम आशियाना में। और आशियाना के आज के अंक में हम आपको बता देते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन हम बात करते हैं अपने घर के बुजुर्गों के बारे में, क्योंकि हमारे घर के बुजुर्ग ना हमें केवल निर्मल छाया देते हैं लेकिन इस बड़े वृक्ष के तले हम स्वयं को हमेशा सुरक्षित पाते हैं, लेकिन इस वृक्ष को भी एक समय के बाद हमारी आवश्यकता होती है। और जब वृक्ष को हमारी आवश्यकता होती है तो हमें बस करना इतना होता है कि हम उसे उसके तने से जब खुद को लपेट लेते हैं, खुद में उसको समेट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वृद्ध वृक्ष भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगता है। दोस्तों, कल यानी कि 21 अगस्त को सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है और इसका उद्देश्य यही है कि आपको बार बार ये याद दिलाया जाए कि आपको श्रद्धापूर्वक सम्मान के साथ अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करनी है, उन्हें प्रेम देना है और साथ ही साथ उनके जो योगदान रहे हैं आपको बड़ा करने में, आपको पुष्पित पल्लवित करने में, उस योगदान को आप कभी ना भूलें, उन्हें सम्मान देते रहें। और सम्मान देने के लिए एक एक दिन, एक एक पल बहुत ज्यादा कीमती है। भले ही 21 अगस्त को सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पल पल अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखें, उन्हें प्यार दें, सम्मान दें। वैसे हम कब बड़े हो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता है ना, और हमारे माता पिता कब बुजुर्ग हो जाते हैं इस बात का आभास तो उम्र के उस पड़ाव में होता है जहां वो बहुत सारी चीजों से संघर्ष कर रहे होते हैं, चाहे फिर उनके मनोमस्तिष्क की बात हो या फिर उनकी शारीरिक ऊर्जा की बात हो। ढलती है लेकिन उस ढलान में भी अगर आपका साथ हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल और आप सुन रहे हैं आशियाना।

बिल्कुल, लम्हे गुजर जाते हैं और जो हमारा वर्तमान है वो हमसे ये कहता है कि किसी को हमारी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और जिसको आवश्यकता है वो हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब है और वो हमारे दिल में रचता बसता है। अगर वो हमारी जिंदगी में ना हो तो ये जिंदगी अधूरी अधूरी सी लगने लगती है। जी, हम बात कर रहे हैं अपने घर के बुजुर्गों की, जिनके बिना जीवन सोचना भर बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो हम हमेशा याद करते हैं और कहते हैं कि काश वो हमारे साथ होते। खैर, व्यक्ति का जाना तो नियति का लिखा हुआ एक खेल है, लेकिन नियति ने जितने भी दिन आपको दिए हैं ना, उन दिनों को मना लीजिए, सजा लीजिए उनकी जिंदगी को, क्योंकि वो आपसे बस आपका प्यार चाहते हैं और उसी प्यार में उनके लिए आप उनकी देखभाल, उनका स्वास्थ्य, उनकी मनोस्थिति और थोड़ा सा समय, जब ये सब घोल कर उन्हें दे देते हैं तो उनके लिए ये जीवन बहुत खूबसूरत नजर आने लगता है। तो भाई, हम हमेशा आपसे यही कहते हैं कि आपके बुजुर्गों को सबसे ज्यादा आवश्यकता आपके समय की है। जब आप उन्हें समय देते हैं ना, तो सारी परेशानियां चुटकियों में गायब हो जाती हैं और उन्हें लगने लगता है कि जैसे उन्हें कोई परेशानी ही नहीं, क्योंकि उनके बच्चे, उनके प्यारे उनके साथ हैं, उनके साथ उनका दुख सुख साझा कर रहे हैं। तो कीजिए ना उनसे बेशुमार बात, भले ही आप रहते हैं उनसे चाहे कितना भी दूर, लेकिन इन दूरियों को आज डिजिटल युग में आप आसानी से छूमंतर कर सकते हैं। फोन कॉल कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए। फोन कॉल से हो सकता है आप सिर्फ उनकी आवाज सुन पाएं, लेकिन वीडियो कॉल से तो आप उनको साक्षात देख सकते हैं। एक छोटी सी दूरी जरूर है, लेकिन उन्हें देख सकते हैं वो कैसे हैं, वो कितना मुस्कुरा रहे हैं और क्यों नहीं मुस्कुरा रहे हैं।

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
5: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
4: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
6: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
7: इग्नोर नहीं, याद करो।
0: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल। प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना आशियाना, जहाँ हम बात कर रहे हैं आपके घर के बुजुर्गों के बारे में। वैसे एक उम्र के बाद ना हम बच्चे भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं, वो इसलिए कि जिस तरह बचपन में आप मुंह फुला लिया करते थे, याद है आपको जब आपकी मनपसंद चीज नहीं मिलती थी तो आपके माता पिता तुरंत समझ जाया करते थे कि जरूर हमारा बच्चा हमसे इस बात पे नाराज है। और देखिए वक्त किस तरह से करवट लेता है। एक उम्र ऐसी आती है जब घर के बुजुर्ग बिल्कुल बच्चों के जैसे हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों में मुंह बुला लिया करते हैं। और आप अब इतने बड़े, इतने स्मार्ट और इतने सजग हो चुके हैं कि आप अपने माता पिता की हर मुस्कुराहट, हर दुख, यहाँ तक कि उनका बात बात में मुंह फुलाना भी समझ आपको आने लगता है। और जब आपको आने लगता है तो आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि आप उनके चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट लाएं। अच्छा, आपकी वजह बहुत सारी बेशुमार रही होंगी जब आपको आपकी मनचाही चीज ना मिली होगी, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जब आपके माता पिता गुब्बारे की तरह मुंह फुलाते हैं और आपसे बात नहीं करते, वो उम्र के उस पड़ाव में है कि आपसे कुछ भी नहीं चाहते। अगर कुछ चाहते हैं वो ये कि आप उनसे बात क्यों नहीं करते, और आपके ना बात करने पर वो नाराजगी आप तक पहुंच जाते हैं, आपसे बात नहीं करते, मुस्कुराते नहीं। अगर ऐसा करते हैं ना तो आप समझ जाया करें कि वो आपसे आपका वक्त मांग रहे हैं। और आप प्यार से जाकर उन्हें गले लगाएं, उन्हें जादू की झप्पी दें और उनसे पूछें कि गुमसुम गुम गुमसुम हो क्यों।

0: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर सात के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त आशियाना, जहां हम बात कर रहे हैं अपने घर के बुजुर्गों को हम कैसे खुश करें। तो खुश रखने का सबसे बड़ा तरीका यही कि आप उनको समय दें, उनकी परेशानियों को सुने, वो क्या सोचते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। शिद्दत के साथ सुनेंगे तो हर समस्या का निदान अपने आप मिलेगा। और कहते हैं कि आपकी बुजुर्गों की मेंटल हेल्थ उनकी फिजिकल हेल्थ से ज्यादा बड़ी है, क्योंकि कहते हैं कि हम बीमार जो होते हैं ना कभी भी शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से होते हैं। और मानसिक रूप से अगर हम मान लें कि हम तो स्वस्थ हैं तो सच में हम स्वस्थ होते हैं। और ये नीति ना हमारे बुजुर्गों के साथ कारगर साबित होती है, तो आप उन्हें बार बार एहसास दिलाते रहें कि आप उनकी हर परेशानी में उनके साथ खड़े हैं। और इसके लिए जरूरी है कि आप उनसे बात करते रहें। आप घर से दूर भी क्यों ना रहते हो, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि आज आपके पास इतने सारे संसाधन हैं कि आप उनसे वार्तालाप कायम रख सकते हैं। चिट्ठियां लिखिए, चिट्ठियां लिखने का दौर तो खत्म ही हो चला है, जैसे चिट्ठियां लिखिए अब तो व्हाट्सएप है आपके पास, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख डालिए और आप उन्हें कॉल कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए। चिट्ठी लिखने का मन है तो लिखिए, क्योंकि चिट्ठी लिखने में जो आनंद है ना वो फोन के कीपैड जलाने में बिल्कुल नहीं है। तो आप लंबी चिट्ठी लिखिए और देखिए जब वो उन तक पहुंचेगी तो सहज कर रखेंगे अपने दिल के पास, रोज तकिए के किनारे आपकी चिट्ठी को संभाल कर रखेंगे। तो समय दीजिए, और समय देना ही जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है, चाहे फिर वो अपनों को दिया जाए, गैरों को दिया जाए, बहुत अनमोल है, संजो के रखिए।

वैसे एक बहुत प्यारा संदेश आया जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब पिताजी नाराज हो जाते हैं तो उनको गुदगुदी कर दिया करते हैं। वाह क्या प्यारी और क्या खूबसूरत बात है। सबके अपने अपने तरीके, बस ये मान लीजिए कि कोई है जो आपके लिए दिन रात आंखें बिछाए बैठा है और वो आपके माता पिता हैं। फिलहाल यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT द्वारा।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
3: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
3: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का,
2: शेरी वर्नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी जी ने लिखा है।
3: उन्होंने लिखा है धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, भूगोल, इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
3: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
2: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियाँ तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
3: जी हाँ, ये तो है।
2: तो क्यों न आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
3: नेकी और पूछ, विमलेश जी आपने बिल्कुल सही कहा। जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
2: अजीत जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
3: वाह, क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
2: श्रोताओं, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
3: जी हाँ श्रोताओं, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है।
2: जी
3: श्रोताओं, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
2: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपानुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
3: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा।
2: जी
3: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती, कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?
2: जी अजीत जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
3: श्रोताओं, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया।
2: जी
3: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति

0: देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
1: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
0: जी हाँ श्रोताओं, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी
1: जी।
0: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
1: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
0: श्रोताओं, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
1: जी।
0: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं
1: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
0: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
1: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
0: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
1: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
0: श्रोताओ, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी।
1: जी।
0: हेलन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
1: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
0: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
1: जी।
0: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
1: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
0: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। श्रोताओ, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT Books PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और तालवाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
0: पानी रे पानी, जल चक्र पर कविता।

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का, अभी तो सुबह के साथ

0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ, भैया को भी ले चलते हैं ना।
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ। क्या भैया ही थकता है बस?
0: ओहो, अब चल भी, बहस मत कर।
1: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।
0: अरे तू कहाँ से आ गई? हट हट, मेरी बारी है।
2: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
0: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी सोनी जल्दी आएगी। सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।
3: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सबका रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चाहते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
0: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी। इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है। अरे आ गए आ गए आ गए, देखो।

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
1: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे किस पर?
1: किस पर?
0: पानी पर।
1: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
1: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
2: हाँ, ये बात तो है,
3: पानी की समस्या तो है,
4: हम तो परेशान हो गए हैं।
1: तो बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
5: जल चक्र?
1: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
0: तो चलो शुरू करें।

0: थोड़ा झुमके।
1: ठीक है तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया, आगे जोड़ो झुमरू जी और वो भी ताल में।
2: हाँ हाँ जोड़ता हूँ मैं, ये लो बात ध्यान से मेरी सुन लो। नदियों तालों का जल उड़ाया, पाप बन जल ऊपर आया।
1: झुमरू जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए, जब लग गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल।
2: रिमझिम रिमझिम वर्षा आई, चहू और हरियाली छाई, झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
1: इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
2: बताते हैं, सुनिए। पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
1: क्या बात है! सूरज भाप बादल वर्षा का जल चक्र यूं चलता जाता। सभी बोलेंगे, जल चक्र यूं चलता जाता।
2: तो बच्चों, कैसा लगा भाषा का ये खेल?
3: बहुत अच्छा।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
5: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
6: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
7: ये तुम्हारा हरा दिया, हरा दिया।
8: वैसे तनु, हाँ बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा।
9: जी,
8: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
9: नाना जी, मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
8: ये कैसी अजीब बात है?
9: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते, हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
8: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
9: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
8: अच्छा बेटा तरु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी, रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
9: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
8: अच्छा?
9: हाँ और क्या, तो सुनाइए ना। हाँ, जल्दी सुनाइए।
8: हाँ, बेटा सुनाता हूँ। अरे सोचने तो दो,
9: जल्दी
8: सोचिए। किसकी कहानी सुनाऊं? देखो वो।
9: अरे जीवन काका।
8: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई?
10: बाबूजी, आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
8: बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
10: जी
8: यहाँ लेट जाओ। लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु
9: जी,
8: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
9: जी अभी लाई।
8: हाँ हाँ, खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
10: जी
8: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है
10: जी।
8: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो।
10: जी जी जी, जी।
8: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
9: जी, जी, जी, नाना जी।
8: हाँ ला बेटा ला। जीवन
10: जी
8: जरा मुंह खोलो, लो इसे जीभ के नीचे रख लो।

0: डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
2: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
2: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था
1: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया, वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
2: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
1: चलो। ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहाँ एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस
2: जी।
1: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
2: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
1: बेटे, एकदम अलग आकार था।
2: अच्छा।
1: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
2: जी।
1: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उड़ते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
2: अच्छा।
1: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
2: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
1: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
2: अच्छा।
1: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
2: अच्छा।
1: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
2: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
1: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
2: जी,
1: जिसे बुखार होता
2: जी,
1: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग

0: थे
1: जी।
0: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
1: फिर
0: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
1: जी।
0: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
1: अच्छा।
0: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
1: लेकिन बुखार?
0: ओहो बेटा बताता हूँ, सांस लेने दे बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से
1: जी।
0: तो बेटा तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
1: जी,
0: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
1: जी।
0: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
1: अच्छा।
0: और बुखार का अनुमान लगा लेते। लेकिन एक बात।
1: क्या?
0: देखो पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
1: जी
0: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
1: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
0: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
1: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
0: हाँ बेटा ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
1: हाँ जी।
0: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
1: जी
0: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना
1: जी।
0: समझ गई ना
1: जी।
0: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था
1: जी,
0: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
1: अच्छा।
0: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
1: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
0: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
1: अच्छा।
0: आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं
1: जी,
0: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
1: अच्छा।
0: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा
1: जी,
0: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
1: अरे वाह।
0: हाँ। पर बेटा डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
1: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
0: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
1: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं
1: जी,
0: बोल कर बतला देता है।
1: नाना जी।
0: हा?
1: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
0: सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
1: अरे वाह।
0: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
1: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
0: है ना
1: जी।
0: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना
2: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। दोस्तों, बारिश का मौसम यूं तो चिलचिलाती गर्मी से राहत पहुंचाता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी परेशानियां भी ले आता है जो इस मौसम में आती हैं, और आज हम ऐसी ही परेशानी के बारे में बात करेंगे। यानी हमारा आज का विषय है वेक्टर बोर्न डिजीजेस। क्या है ये रोग और क्या है इससे बचने के उपाय, बताएंगी हमारी आज की विशेषज्ञ डॉक्टर तनु जैन, जो हैं डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीजेस, DGHS, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर तनु जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: और अगर आप भी इस विषय से जुड़े, आपके पास हैं कुछ सवाल, तो आप हमें करिए कॉल। और इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स आप नोट कर लीजिए, जो है 01123421080 और 23421082। आप हमें व्हाट्सएप से मैसेज भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर है 9868107070। मैं नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कॉल करने के लिए आप लगा सकते हैं 01123421080 और 23421082। व्हाट्सएप से मैसेजेस करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए 9868107070। डॉक्टर तनु, हमारा सबसे पहला सवाल है कि वेक्टर बोर्न डिजीज क्या है और इन रोगों के होने का कारण क्या होता है?
2: जी पूजा जी, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि बारिश हो रही है, और बारिश होने से पहले और बारिश होने के बाद कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादा देखने में आती हैं, और ये सारी बीमारियां तीन तरह की होती हैं। एक तो वाटर बॉर्न डिजीजेस, जो कि पानी, दूषित पानी पीने से या दूषित पानी में खाना पकाने से या उसका सेवन करने से होती हैं। दूसरी होती हैं जो हमारे मच्छर या मक्खियाँ होती हैं उनसे जो ट्रांसमिट होती हैं बीमारियाँ, उस तरह की बीमारी होती हैं। और तीसरा, आपने देखा होगा आजकल फ्लू की बीमारी भी काफ़ी हो रही है। तो ये तीनों बीमारियाँ जब मानसून आता है तो अपना प्रकोप बढ़ाती हैं, और ये अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं। कुछ बीमारियां वायरसेस से होती हैं, कुछ पैरासाइट से होती हैं, तो ये और कुछ बैक्टीरिया से होती हैं। तो इन बीमारियों का एक तरह से शुरुआत जो होती है वो जस्ट मानसून से पहले, लगभग मई जून के अराउंड शुरू होता है, और मानसून के बाद नवंबर दिसंबर तक ये चलती हैं। और इनके लिए पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये एक अच्छा माध्यम है जिसकी जिससे लोगों को जानकारी हम दे सकते
1: मिलेगी। जी मैम, आपने पैरासिस और बैक्टीरिया की बात करी, तो कैसे डिफरेंस आप करते हैं इनमें, कैसा क्या इनमें अलग?
2: तो अगर मैं हमारे सेंटर पे, जो नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है, और इसमें हम 6 बीमारियों के ऊपर देश भर में व्यापक कार्यक्रम चलाते हैं जिसके जरिए हम इन बीमारियों पे कंट्रोल करते हैं। तो जो हमारी वायरल बीमारियां होती हैं इसमें, वो है डेंगू है, चिकनगुनिया है, और जापानीज एनकेफेलाइटिस है, जिसे दिमागी बुखार भी कहते हैं। और डेंगू चिकनगुनिया तो बहुत कॉमनली लोग जानते हैं, तो ये वायरस से होती हैं। इसी के साथ जो मलेरिया है वो हमारी एक पैरासाइट से होती बीमारी है। तो लक्षण सारी ही बीमारियों के लगभग बुखार से शुरू होते हैं। तो फीवर अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग टाइम पे आता है, और उसका अलग अलग प्रोग्रेशन होता है। इसके साथ ही एक बीमारी होती है जिसे हम हाथी पांव या लिम्फैटिक फाइलेरियसिस कहते हैं। ये भी कुछ राज्यों में है, देश के लगभग 20 राज्यों में ये बीमारी है। तो ये क्यूलेक्स एक मस्किटो होता है, उसको मच्छर के काटने से ही होती है, और लोगों को कम जानकारी होती है कि ये मच्छर के काटने की बीमारी है। तो ये भी एक बीमारी है जो एक पैरासाइट से होती है। इसी के साथ एक और बीमारी है जिसको कालाजार कहते हैं, जिसको बहुत से लोग जानते होंगे। एक बिहार, झारखंड और आपका वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश वाला जो एक क्षेत्र है, उसकी एक बेल्ट है, उसी में ये बीमारी अधिकतर पाई जा सकती है। और ये एक सैंडफ्लाई से होती है, मतलब ये मच्छर से नहीं होती, ये एक सैंडफ्लाई होती है जो मच्छर के एक चौथाई साइज के बराबर होती है, उसके काटने से ये फैलती है। तो सभी का लक्षण बुखार से शुरू होता है, बट आगे प्रोग्रेशन डिफरेंट।
1: जी जी, तो सुना आपने कि आज का विषय कितना है इम्पोर्टेंट, और इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में कॉल करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे नंबर नोट कर लीजिए ना, 23421080 और 23421082। व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए 9868107070। डॉक्टर जैन, हम आपसे इसी विषय पर आगे भी और जानकारी लेंगे। सुन लेते हैं पहले एक गीत।

0: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर बोर्न डिजीजेज खास विषय पर, और हमारे साथ हैं डॉक्टर तनु जैन। डॉक्टर, हम आपसे पूछ रहे थे कि वेक्टर बोर्न डिजीज क्या है, जिसके बारे में आपने बताया, इन रोगों के होने का कारण क्या है?
1: जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये बारिश के साथ में ये डिजीजेस शुरू होती हैं, तो सबसे कॉमन डिजीज है डेंगी
0: जी,
1: जिसको कि सारे लोग जानते हैं और काफी उससे डरते भी हैं कि डेंगी ना हो जाए। तो इसके होने का कारण है एक मच्छर जिसका नाम है एडीज एजिप्टाई, जो कि टाइगर मस्किटो भी कहलाता है
0: जी।
1: और इसको पहचाना जाता है, इसके ऊपर धारियां होती हैं व्हाइट एंड ब्लैक, तो टाइगर मस्किटो, इसलिए इसे स्ट्राइप मस्किटो होता है। तो ये कहा जाता है और ये डे बाइटर है, दिन के वक्त में काटता है
0: जी।
1: और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पनपता है साफ ठहरे हुए पानी में
0: जी।
1: और इसीलिए कि बरसात शुरू होने के बाद कहीं पर भी जहां साफ ठहरा हुआ पानी है, चाहे तो वो आपकी छत की टंकियां हैं या आपके जो गमले हैं उसके नीचे की ट्रे हैं या छोटे छोटे कप्स आप बाहर रखते हैं या बर्ड फीडिंग के लिए जो आप रखते हैं या टायर्स हैं जो बाहर पड़े हुए हैं या डिस्कार्डेड डब्बे बोतल छत पे लोग डाले रखते हैं या इवन प्लास्टिक की शीट छत पे होती हैं, कुछ लोग लगा देते हैं कि बरसात का पानी नीचे ना आए, तो उसके अंदर में जब पानी जम जाता है तो एक हफ्ता के अंदर अंदर उसके अंदर ब्रीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये मच्छर डे बाइटर है और ये विसिनिटी में ही काटता है, जैसे पेरिडोमेस्टिक ब्रीडिंग कहते हैं, घर और घर के आसपास ब्रीड करता है
0: जी।
1: और ये मच्छर दिन में 10 से 15 लोगों तक को बाइट कर सकता है और सिंगल बाइट से ये वायरस ट्रांसमिट करता है। तो बहुत डेंजरस मस्किटो है और मुश्किल है उसको कंट्रोल करना
0: जी।
1: क्योंकि इसको जन भागीदारी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की नजर से बहुत जरूरी है देखना। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस डेंगी के बारे में। इसी तरह अगर आप मलेरिया में आएंगे तो मलेरिया का मच्छर है एनोफिलीस और ये सुबह जब हल्का धुंधला होता है उस वक्त या शाम के टाइम ज्यादा उस वक्त काटता है, इसकी हैबिटेट थोड़ी डिफरेंट है
0: जी।
1: और इसके काटने से मलेरिया पैरासाइट ट्रांसमिट होता है
0: जी। डॉक्टर साहब, आगे बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल। हेलो
2: हेलो
0: जी,
2: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: मैडम, मेरा सवाल डॉक्टर तनु जैन मैडम से है
0: जी
2: कि ये जो बीमारियां मैडम ने बताई हैं ये बारिश के दिनों में ही ज्यादा क्यों होती हैं
0: जी,
2: और साथ ही कि सरकार का क्या प्रयास रहता है इन बीमारियों को कम करने के लिए और आम आदमी इससे कैसे बच सकता है
0: जी।
1: तो पूजा जी, इन्होंने सारे सवाल आपके एक साथ पूछ लिए
0: जी।
1: तो जैसा कि बताया गया कि ये बीमारियां बारिश के मौसम में इसलिए होती हैं कि जगह जगह पे जल भराव हो जाता है,
0: जैसा अभी आपने
1: जी,
0: बताया
1: तो
0: जी।
1: वो जैसे साफ पानी में आपका डेंगू का मच्छर है, मलेरिया का मच्छर यूजुअली जो गंदा पानी होता है, ठहरा हुआ, रुका हुआ, बरसात का, जैसे नदी नाले उस तरह की जगहों पे, वहां पे ज्यादा पनपता है, जहां सॉलिड वेस्ट पड़ा होता है, गंदगी ज्यादा होती है, वहां पे मच्छर ज्यादा पनपता है। और सरकार के प्रयास जो है वो बहुत पहले शुरू हो जाते हैं। बेसिकली सरकार तो पूरे साल ही प्रयास करती है कि इस तरह की बीमारियां हमारे लोगों को ना हो और वो अपना बचाव कर सकें, तो उसके लिए तैयारियां तो पूरे साल ही चलती हैं, लेकिन एक नेशनल डेंगू डे होता है जो हम मई में

0: आते हैं 16 मई को,
1: जी
0: और उस दिन से खास करके हमारी तैयारियां और एक्सेलरेट हो जाती हैं, मतलब ज़्यादा बढ़ाव के साथ
1: बढ़
0: चलती
1: जाती
0: हैं
1: हैं
0: जी।
1: जी। और मैम चिकनगुनिया के बारे में अगर बात करें तो उसके बारे में बताइए
0: जी
1: कि वो कैसे।
0: तो चिकनगुनिया भी ये एडीज काट के वायरस, एडीज मच्छर के काटने से ही होता है। अगेन ये वायरल बीमारी है, इसके लक्षण भी बुखार को लेके ही शुरू होते हैं, लेकिन इसका जो मेन एक लक्षण होता है वो जॉइंट पेन्स होता है। तो जॉइंट्स में जो बहुत पेन होता है और आप एकदम डबल अप हो जाते हो, इतना ज़्यादा जॉइंट में पेन्स होता है कि आप डबल अप हो जाते हो, इसीलिए ये चिकनगुनिया जो वर्ड है वो आया है। और ये भी अगेन वही है कि ये मच्छर जो है साफ ठहरे हुए पानी में पनपता है। तो ये एडीज मच्छर 3 बीमारियां लगभग फैलाता है, एक
1: जी जी
0: बीमारी जीका भी और एक येलो फीवर जो हमारी कंट्री में थैंकफुली नहीं है। तो ये सारी वायरल बीमारियां एडीज मच्छर के फैलने से होती हैं, लेकिन बचाव देखिए कितना आसान है कि आपको बस अपने घर के आसपास ठहरा हुआ पानी नहीं जमा होने देना है और हर हफ्ते आपको एक ड्राइंग डे मनाना है। तो इसका बचाव बहुत ही आसान है और ट्रीटमेंट,
1: सावधानी की जरूरत
0: जी
1: है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल। और
0: सावधानी
1: मैम
0: की ज़रूरत है
1: लिम्फेटिक फिलेराइसिस की बात अगर करें तो
0: जी।
1: ये कैसे अपन।
0: तो अब इसके लिए भी एक एक्चुअली बहुत लोगों को पता भी नहीं है, हाथी पांव
1: हाँ
0: बहुत लोगों ने देखा भी
1: क्योंकि
0: होगा,
1: बिल्कुल
0: लेकिन कोई उसको ये नहीं सोच पाता कि ये हाथी पांव जैसी बीमारी मच्छर के काटने से
1: नहीं से
0: होती है,
1: होती है।
0: लेकिन ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होती है। और जिन एरियाज में अगेन ये क्यूलेक्स मच्छर भी जो गंदे पानी जहाँ पे इकट्ठा होते हैं या गंदगी जहाँ रहती है, ज़्यादातर वहाँ पे ये क्यूलेक्स मच्छर पनपते हैं। इनको न्यूसेंस मस्किटो भी कहते हैं, बहुत तादाद में होते हैं, शाम होते ही देखिएगा आप सिर पे आ
1: जी
0: जाते हैं, बट इनके काटने से ये बीमारी होती है। बहुत टाइम बाद इस बीमारी का पता चलता है, जैसे अगर बचपन में अधिकतर जो मच्छर काटते हैं उसकी जो इन्फेक्शन होता है उनमें माइक्रोफाइलेरिया होता है, एक छोटा पैरासाइट, वो ब्लड में होता है, फिर वो धीरे धीरे आपकी लिम्फ वेसल्स में चले जाता है। तो
1: जी
0: जब वो पैरों के लिम्फ वेसल्स में जाता है वहाँ इकट्ठा होता है तो लिम्फेटिक्स को डायलेट कर देता
1: तो
0: है
1: मैम क्या ये मच्छर पैर पे काटता है या कहीं भी काट
0: जी।
1: सकता है।
0: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा जी मुझे, मच्छर तो कहीं भी काट सकता है, बट
1: जी
0: हर किस्म के मच्छर की अपनी थोड़ी प्रेफरेंसेस होती
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: यूजुअली एक्सपोज पार्ट पे ही मच्छर काटेगा क्योंकि उसको ब्लड मील चाहिए होता है, उसको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए और अपने
1: जी
0: सर्वाइवल के लिए फीमेल मस्किटो को ब्लड मील चाहिए होता है। तो यूजुअली एक्सपोज पार्ट्स पे काटता है, तो पैरों पैर एक्सपोज होते हैं, मोस्टली हाथ एक्सपोज होते हैं, नेक का एरिया है, फेस ईयर्स बहुत एक्सपोज होते
1: जी
0: हैं। तो
1: फेस
0: ये
1: हमारा पूरा
0: जी फेस
1: एक्सपोज
0: पे
1: हो।
0: भी और आपके इस पे जी, यूजुअली कुछ लोगों की जैसे हैबिट होती है, बरसात है गर्मी है या फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं तो वो
1: जी
0: अपना जैसे ऊपर खुला रखते हैं तो ताकि
1: हाँ
0: गर्मी ना लगे, तो
1: बिल्कुल
0: बैठते हैं तो
1: हाँ
0: उसमें भी मच्छर कहीं भी काट सकता है
1: जी।
0: जी।
1: मैम इनके लक्षण क्या है अगर जो हमने चिकनगुनिया डेंगी मलेरिया के बारे में बात की
0: जी
1: तो इन क्या लक्षण है जो समझ सकें कि
0: जी
1: कोई भी इससे प्रभावित हो गया
0: जी
1: है।
0: तो हम शुरू करेंगे डेंगी के साथ क्योंकि डेंगी बहुत ही कॉमन एक
1: जी
0: बीमारी है और लगभग हमारी पूरी कंट्री में ये बीमारी है, सिर्फ सिर्फ लद्दाख में इस वक्त ये बीमारी नहीं है।
1: ओके
0: तो इसके लक्षण शुरू तो नॉर्मल जैसे वायरल के होते हैं, बुखार आएगा, हल्का बुखार भी आ सकता है, तेज भी आ सकता है, बट जो स्पेसिफिक लक्षण होते हैं वो आंखों के पीछे जिसे रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं, वो बहुत पेन होता है,
1: ओके
0: बदन में भी बहुत दर्द होता है। तो ये दो चीज़ें हैं, और क्योंकि खांसी जुकाम ज़्यादा इसमें नहीं होता है तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फीचर हो जाता है फ्लू से। अगर इन्फ्लुएंजा होगा तो वो ज़्यादा खांसी जुकाम के साथ आएगा, अगर डेंगी होगा तो वो बॉडी एक के साथ, हाई फीवर के साथ और आंखों के पीछे पेन्स के साथ आ सकता है। कभी कभी बॉडी में रैशेज आ सकते हैं, कभी नौजिया भी आ सकता है, कभी आपको पेट दर्द भी हो सकता है। तो ये सारे लक्षण के साथ अधिकतर ये डेंगी दिखता है। मलेरिया के लक्षण थोड़े से फर्क होते हैं, मलेरिया का बुखार जो है वो कपकपी लग के आता है, जिसे हम हॉट कोल्ड फेज और परस्पिरेशन फेज कहते हैं। तो वो
1: जी
0: एकदम ठंड लग के बुखार आता है, तेज बुखार आता है और फिर वो सडनली उतरता है, बहुत तेज हाई फीवर हो जाता है, उसको हॉट फेज कहते हैं, और फिर पसीना छोड़ के वो बुखार उतरता है।
1: जी
0: और ये बुखार कभी एक दिन छोड़ के भी आ सकता है, कभी 2 दिन छोड़ के भी आ सकता है।
1: जी
0: तो इस तरह का फीवर आए तो सोचें कि शायद ये मलेरिया हो सकता
1: मैम
0: है
1: कितने दिन में हमें ये पता लगा लेना चाहिए कि अब हमें टेस्ट की जरूरत है।
0: जी। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि लोगों को यही लगता है कि एक दिन रुक जाएं, 2 दिन रुक जाएं, फिर
1: हाँ
0: टेस्ट कराएं।
1: जी
0: तो जब सीजन आपका डेंगू का मलेरिया का चल रहा है तो जितना जल्दी हो सके अपना जांच करा लें। अगर आपको लग रहा है कि ये वायरल नहीं है, नॉर्मल फीवर नहीं है, बुखार आ रहा है, तो 24 से 28 घंटे के अंदर में आप जरूर जाके डॉक्टर को
1: जी
0: कंसल्ट कर लें या एक टेस्ट जरूर करा लें,
1: और
0: खास करके सीजन में बहुत
1: जी और आपने
0: इंपॉर्टेंट है
1: बताया कि इसमें बुखार रह रहकर आता है और
0: जी
1: बॉडी एक बहुत ज्यादा होता है।
0: जी
1: मैम हमारे सवाल आपसे जारी रहेंगे। इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ कॉल लाइन पर। हेलो हेलो लगता है इनसे संपर्क टूट गया है हमारा। और मैम अगर हम बात करें बचाव की तो क्या है बचाव के रास्ते?
0: तो बचाव के रास्ते तो जैसे हमने बताया कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता यही है कि आप अपने घर के आसपास सफाई रखें, पानी जमा ना होने दें। दूसरा रास्ता ये कि शाम के वक्त भी और दिन के वक्त भी जब भी पॉसिबल हो अपने घर में जाली का दरवाज़ा बंद करके रखें ताकि मच्छर की एंट्री ना हो। साथ ही अपने घरों में जो जैसे आपकी टंकियां हैं उनकी नियमित रूप से जांच करें। कई बार क्या होता है कि उनका लिड खुला रह जाता है और पानी उसके अंदर में ब्रीडिंग होती रहती है और हमको पता ही नहीं चलता कि वहां पे मच्छर है। फिर जब सोसाइटी में कोई एक आध केस आता है और फिर जब
1: चेकिंग
0: म्युनिसिपैलिटी की
1: होती
0: टीम
1: है।
0: आती है चेक करते हैं तो मालूम देता है कि वहां पे। तो एक तो जन भागीदारी और खुद एक जागरूकता और अवेयरनेस
1: जरूरी
0: बहुत
1: है
0: जरूरी है।
1: जी।
0: दूसरा कि इस सीजन में पूरी बांह के कपड़े पहने या अपने पैर कवर्ड रखें और अपने आप को मच्छर के काटने से बचाएं। कुछ भी आप यूज करना चाहें, जो भी लोकली अवेलेबल चीजें हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो
1: जी
0: ये बचाव है। और जैसे ही आपको बुखार आता है तो आप जांच करा के पता लगाएं कि आपको डेंगू या मलेरिया हुआ है, तो अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर लें
1: जी
0: फैमिली मेंबर से, क्योंकि अगर मच्छर हैं और आपको बीमारी है तो फिर वो फैमिली के अंदर में या आसपास में ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं। तो मच्छरदानी के अंदर जरूर सोएं। नॉर्मल भी मुझे लगता है कि लोगों को सबको मच्छरदानी का यूज जरूर करना चाहिए। ये एक बहुत ही क्या कहेंगे लो कॉस्ट में एक प्रिवेंशन है
1: जी
0: इतनी
1: जी
0: सारी बीमारियों से बचाव का। आप देखिए कितनी बीमारियां
1: हाँ
0: हमने डिस्कस की, हर बीमारी से बचाव एक सिंपल एक मच्छरदानी भी आप यूज कर
1: जी
0: सकते हैं। तो ये
1: जी
0: सारे बचाव जरूर करें
1: मैम एक कॉलर
0: जी।
1: जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं कॉल इनका। हेलो
2: जी मैम,
1: जी
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार।
2: मैम मैं बहराइच जिला से बोल रहा हूँ, गणेश जी।
1: हाँ जी
2: मेरा सवाल मैम से है, क्या
1: जी पूछिए।
2: वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए भी कोई वैक्सीन या टीका उपलब्ध है?
0: जी तो ये आपने सवाल जो पूछा है इसमें जो जापानीज इनकेफेलाइटिस है, तो जिस एरिया में जेई या दिमागी बुखार ज्यादा होता है वहां पर रूटीन इम्यूनाइजेशन में ये टीकाकरण उपलब्ध है, तो ये
1: जी
0: आप जरूर ले सकते हैं। लेकिन बाकी बीमारियों के लिए टीकाकरण की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारियां बड़े आराम से प्रिवेंट कर सकते
1: कर
0: हैं आप।
1: सकते हैं जी।
0: और इनके होने के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारी कंट्री में तो बीमारियों के रेट में भी और मृत्यु दर में भी बहुत गिरावट आई है।
1: जी
0: पिछले दस
1: बिल्कुल
0: साल में
1: में
0: बहुत गिरावट
1: बहुत
0: आई
1: कमी
0: है,
1: आई है जी।
0: बहुत कमी आई है। और ये एक जनभागीदारी का भी हिस्सा है, लोग भी समझना शुरू किए हैं इस बात को। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि देखिए कोई भी वैक्सीन बॉडी में जाती है तो कोई ना कोई छोटा मोटा रिएक्शन करती है, तो जब तक बहुत जरूरत नहीं है सरकार ऐसी किसी वैक्सीन को रिकमेंड नहीं करती है। लेकिन जेई की जहाँ पे, क्योंकि जेई में डेथ्स हो सकती हैं और जेई में थोड़े डिसेबिलिटी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, उसकी वैक्सीन जरूर अवेलेबल है। बाकी बीमारियों के लिए वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनसे कि आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं।
1: जी हम आपको एक बार फिर बता दें, आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर बोन डिजीजेज यानी मच्छर जनित रोग से बचाव के कारण जैसे एक खास विषय पर। अगर इससे संबंधित आपके पास भी है कोई सवाल या चाहते हैं आप अपनी परेशानी का समाधान, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर जो हैं 01123421080 और 23421082। व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए नंबर नोट कर लें 9868107070। डॉक्टर तनु अभी आपने बताया कि अगर टैंकी का लिड खुला रह जाए तो क्या बंद लिड में भी मच्छर पैदा हो सकता है?
0: नहीं, क्योंकि देखिए ये मच्छर को कोई तो स्पेस चाहिए जहां
1: जी
0: पे एग्स ले करती हैं, फीमेल मस्किटो एग ले करती हैं। और ये एक बहुत ही इनकी खासियत है जो मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि जो ये एग ले करती हैं,
1: जी
0: जैसे कूलर है
1: हाँ
0: ना, कूलर के खास करके आप कहेंगे कूलर में हम पानी भर देते हैं उसके बाद बरसात हो जाती है, हम यूज नहीं करते और वो पानी ठहराव हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्रीडिंग होती है उसमें। तो वो मच्छर ले करने के लिए तो उनको उसके अंदर एंट्री चाहिए। अगर कहीं से कोई टूटा हुआ है, कोई मच्छर वहां से एंटर कर गया, तो बंद लिड के अंदर में भी डेफिनेटली ब्रीडिंग सकती है। अब ये जो एग्स हैं इनकी खासियत क्या है जो हम लोग अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे, हम कहते हैं कि आप जब अपनी टंकी या इस तरह के कोई कंटेनर साफ करें तो उनको रगड़ रगड़ के साफ करें। रगड़ के इसलिए कहा जाता है कि आप पानी खाली करके अगर सीधा रख देंगे तो उसके अंदर उसके अंडे जो है सर्वाइव कर जाते
1: कर
0: हैं
1: जाते हैं
0: और 1 साल तक भी सर्वाइव कर सकते हैं ड्राई कंडीशन में। तो
1: ओके।
0: अगर आपने कूलर खाली करके ऐसे रख दिया, अगले साल जब आप पानी डालेंगे तो वो अंडे फिर से वायबल हो जाएंगे और वो वायबल होके फिर वो इन्फेक्टेड अगर हैं, अगर इन्फेक्टेड मस्किटो से वो एग्स आए हैं तो वो नेचुरल इन्फेक्शन कैरी करते हैं, इसको हम
1: जी
0: ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन कहते हैं। तो वायरस जो है अगर फीमेल मस्किटो से आया है एग के अंदर में, तो वो एग 1 साल बाद भी जब डेवलप करेगा हफ्ता या 10 दिन में एडल्ट मस्किटो में और बाइट करेगा तो वो डेंगी कॉज कर सकता है। तो काफी एक स्टर्डी एक डेंजरस मस्किटो है जिससे कि हमको बचाव अपने आप करना
1: जी। डॉक्टर साहब, अगर ये कूलर की जो सफाई है कितने दिनों में, खासकर बरसात के मौसम
0: तो
1: में?
0: हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि एक हफ्ता में एक बार, क्योंकि हफ्ता लगता है एक एग को हैच करके बन के एक एडल्ट मस्किटो बनने में, तो हफ्ते से 10 दिन में जरूर अपने कूलर्स को, जहां पे कंटेनर्स हैं और जिन चीजों को, जैसे आपकी बर्ड बर्ड ट्रे हैं या और चीजें हैं, तो उनको आप पलट के भी रख सकते हैं ताकि उनके अंदर दोबारा में पानी ना इकट्ठा हो। तो हफ्ता या 10 दिन में, जिसे हम ड्राइंग डे कहते हैं, एक जरूर ऑब्जर्व करें और अपने चारों तरफ चेक करें कि कहीं पानी गले।
1: और डॉक्टर साहब, अगर कूलर ऊपर है, कई कई बार ऐसा होता है, तो क्या एंटी मॉस्किटो स्प्रे से फायदा होता है?
0: नहीं, स्प्रे तो ऐसा वहां जाके करने का कोई जरूरत नहीं है। देर इज अ टैबलेट जो आप यूज कर सकते हैं उसके अंदर में, तो वो जरूर इफेक्टिव होती है। अगर आपको लगता है कि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं तो आप उसको जरूर यूज कर सकते हैं।
1: कहां से मिल
0: ये जाएंगे? आपको जहां पे भी गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है वो अपने आप ही प्रोवाइड करेगा,
1: और आप जाकर भी ले सकते हैं।
0: मतलब आप
1: जो भी सेंटर्स हैं पास में,
0: आप अपने सेंटर पे अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन ये सारा जो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं या रूरल लोकल बॉडीज हैं, उनके पास ये सब कुछ उपलब्ध होता है। और खास के मैं कहना चाहूंगी, आपके घर में अगर कोई चेक करने आए तो जरूर उसको अलाउ करें चेक करने के लिए, ताकि
1: वो आपको पता बता लग सके
0: पता लग सके कि आपके कहाँ कहाँ पे ब्रीडिंग हो रही है। और घर के अंदर जो गमले हैं उनको जरूर चेक करें टाइम टू टाइम, क्योंकि उसके अंदर में पानी इकट्ठा होकर ब्रीडिंग करता है।
1: एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं इनका कॉल। हेलो,
3: नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: मेरा मैम से सवाल है कि बारिश के टाइम में ना मुझे बहुत ज्यादा हेडेक और बॉडी पेन बहुत रहता है, जबकि मैं बाहर का ऐसा कुछ खाना पीना नहीं रहता, लेकिन सम टाइम पेट में दर्द और बॉडी पेन बहुत रहता है, तो ये नॉर्मल है या मतलब क्या है, ये मैं जानना चाहती हूँ। थैंक यू
1: जी।
0: तो जो आपने सवाल पूछा है कि आपको बॉडी पेन रहता है, तो अब ये मुझे नहीं आपके बात से पता चल पा रहा कि ये हमेशा ही रहता है या कुछ दिन पहले होता है, तो क्योंकि ऐसा बॉडी पेन हर वक्त तो किसी को नहीं रहना चाहिए बरसात के टाइम में। ये हो सकता है कि आप बहुत ठंडे में बैठ जाते हों, या इस टाइम पे लोग बहुत ठंडा ले लेते हैं तो उस वजह से शायद आपको हो रहा हो, या हल्का आपको वायरल हुआ हो, आपको पता ना चला हो, वायरल होके पास हो गया हो। जैसे इवन वायरल जो बुखार होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बुखार बहुत ज्यादा सिम्टम्स करेगा, हल्के सिम्टम्स के साथ भी निकल जाता है। डेंगी में भी आप देखेंगे तो लगभग 60% केसेस ऐसे होंगे जो कि बहुत तेज बुखार नहीं होगा, बल्कि उनको पता ही नहीं चलेगा हमें डेंगी हो गया। तो हो सकता है इस तरह के हल्के वायरल इन्फेक्शन आपको हुए हों जिससे आपको बॉडी एक हो रहा हो, तो जरूर आप जो है बरसात के टाइम पे अपना ध्यान ये रखें कि ठंडा पानी ना पिए, गर्म पानी पिए, अपने आप को बचा के रखें सर्दी से भी, और आसपास की गंदगी से बचाएं। और पेट में दर्द भी आपने कहा, तो क्योंकि बहुत ज्यादा इस वक्त तो खाने का और पानी का दूषित होने का संभावना रहती है, क्योंकि ड्रेनेज वगैरह कभी ओवरफ्लो करते हैं तो वो आपके पीने के पानी में या खाना पकाने वाले पानी में मिक्स हो सकते हैं। तो ध्यान रखें कि पका हुआ ही खाना खाएं, गर्म खाना खाएं, तो ये सारी चीजें, ताजा पका हुआ गर्म खाना खाएं, रखा हुआ खाना ना खाएं, और बाकी बहुत डिटेल्स तो नहीं पता है, बट ये सारे प्रिकॉशंस लेंगे तो आई एम श्योर आप बेटर फील करेंगे।
1: दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज वेक्टर बॉर्न डिजीजेस यानी मच्छर जनित रोगों से बचाव। कार्यक्रम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद भी।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तनु जैन, जो हमें बता रही हैं वेक्टर बोर्न डिजीज़ से होने वाली परेशानियों के बारे में। डॉक्टर साहब, हम बात करें उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पर ले लेते हैं उनका कॉल। हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी जी जी
2: हाँ जी मैम, मेरा सवाल ये था, मैंने जैसे सुनने में आया है कि
1: आप अपना नाम बताइए पहले।
2: मैम मैं संजीव बोल रहा हूँ रांची से।
1: जी जी पूछिए।
2: मैम मेरा सवाल ये था कि जैसे सुनने में आया कि कालाजार देश से खत्म होने वाला है, तो ये कब तक पॉसिबल है?
1: जी
3: जी ये बहुत अच्छा सवाल है, और हम लोग को बहुत गर्व भी है इस बात का कि कालाजार जैसी एक बीमारी जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब वो बहुत कम हो गई है। और इसकी एक डेफिनेशन होती है कि एक केस 10,000 पॉपुलेशन में हो, उससे कम केसेस अगर रहें एक ब्लॉक पे, तो उसको हम एलिमिनेशन मानते हैं, जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है। तो 2023 से अब हमारे जो ज़िले हैं, ये हमारे 54 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 633 ब्लॉक्स हैं, जिसके अंदर में कि अब ये बीमारी एलिमिनेशन के लेवल से नीचे पहुंच गई है। तो ये अगर हम इसको सस्टेन कर पाते हैं एक साल और, जैसे मैंने बताया सैंड फ्लाई के काटने से होती है, और इसका इसकी ये काफ़ी मतलब एक तरह से डेंजरस बीमारी रहती है। इसके अंदर में आपकी स्प्लीन बढ़ जाती है, लिवर बढ़ जाता है, बुखार आता है, पूरा शरीर काला पड़ जाता है। तो इसको इसमें बच्चे अगर ट्रीटमेंट ना हो तो इसमें डेथ्स भी हो सकती हैं, और ये काफ़ी सीरियस बीमारी हो जाती है। तो अब ये इसमें हमारे पास डेथ्स के केसेस बहुत ही नेग्लिजिबल हो गए हैं, और अगर ये हम सस्टेन कर पाए तो सून हमको WHO से इसका सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो
1: तब तक के लिए मैम प्रिवेंशन के लिए आप क्या?
3: तो प्रिवेंशन के लिए इसके लिए यही है सबसे इम्पोर्टेंट, प्रिवेंशन तो हमेशा मैं वही कहूंगी, लेकिन कालाजार के लिए थोड़ा डिफरेंट है। इसकी जो ब्रीडिंग हैबिटेट है वो फर्क होती है। ये थोड़े से कच्चे घरों में, जैसे क्रेवाइसेस होते हैं या क्रैक्स आ जाते हैं ना कच्चे घरों में, उसके अंदर में ये सैंडफ्लाई पसंद करती है ब्रीड करना। जैसे कैटल शेड होते हैं उसके अंदर में भी ये सैंडफ्लाई प्रेफर करती है, तो हॉट ह्यूमिड डार्क प्लेसेस में ये सैंडफ्लाई ब्रीड करती है। बहुत छोटी सी फ्लाई होती है और इसको काटने से ये इतनी भयंकर बीमारी होती है। तो अपना बचाव सबसे ज्यादा, तो बचाव के तरीके हर वेक्टरबॉर्न डिजीज के लगभग सेम है कि आप अपने घर के आसपास में सफाई रखें, मच्छरदानी के अंदर में सोएं, जब आपके घर में स्प्रे करने कोई आए तो प्लीज अपना स्प्रे कराएं। पर ये याद रखें कि स्प्रे हर जगह नहीं होता है। गवर्नमेंट एक देखती है कि कहां पे बहुत हाई एंडेमिसिटी है, बहुत ज्यादा केसेस जहां होते हैं, तो उसी के एक पैरामीटर होता है जहां पे हम स्प्रे करते हैं, क्योंकि कोई भी इंसेक्टिसाइड या कुछ यूज करना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो अपने लिए ठीक भी नहीं रहता है। और जहां पे कि बहुत सिंपल से मेजर्स काम करें वहां पे बहुत ज्यादा स्प्रे की, तो जहां जहां जरूरत पड़े वहां पे आप साथ दें स्वास्थ्य कर्मचारियों का जो आपके घर में आए। इसी तरह से डोमेस्टिक ब्रीडर चेकर्स आते हैं या आशा बहनें आती हैं आपके घरों में, तो प्लीज उनको चेक करने दें अपने सराउंडिंग्स को और बचाव का बताएं। तो बहुत ही मुझे लगता है कि बाय नेक्स्ट ईयर, कल नेक्स्ट ईयर तक हम लोग इस बीमारी को एलिमिनेट कर पाएंगे।
1: डॉक्टर जैन, हमारे पास व्हाट्सएप से मैसेजेस भी आ रहे हैं। हमें अकोला महाराष्ट्र से राजकुमार जी लिख रहे हैं कि आपका कार्यक्रम जो आज का विषय है बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ ही हमें एक और मैसेज आया है प्रीति का, वो लिखती हैं कि डेंगू के मच्छर की पहचान कैसे हो, हालांकि ये आप बता चुकी हैं, तो कैसे करें?
3: तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि दिन में अगर मच्छर काट रहा है तो मोस्टली वो डेंगू का मच्छर ही होगा। और ये मच्छर मैंने बताया आपको एडीज इजिप्टाई से टाइगर मस्किटो भी कहते हैं, इसके ऊपर स्ट्राइप्स भी आ सकती हैं, तो उस तरह से आप इसको पहचान भी सकते हैं। बट कोशिश करें कि

0: मच्छर आपके घर के आसपास ना ही आए तो
1: जी
0: अच्छा है
1: जी
0: जी।
1: और हमें आमिर लिख रहे हैं कि क्या एंटी मॉस्किटो जो क्रीम्स होती हैं क्या वो सेफ होती हैं स्किन के लिए?
0: तो जो एंटी मस्किटो क्रीम्स मार्केट में हैं वो
1: जी
0: सेफ होती हैं, अगर आप चाहें तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं, पैचेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेपेलेंट्स होती हैं, ये हेल्पफुल होती हैं,
1: जी
0: लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को ढक के रखें, वो
1: जी
0: ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि एंटी
1: जी
0: रेपेलेंट क्रीम्स हैं, पसीना आया तो वो बह
1: बह
0: जाएंगी
1: जाएंगी।
0: और एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको देंगी। तो ज़रूर अपने शरीर पे पूरे ढकने वाले कपड़े पहन के और मच्छरों से काटने वाली जगह से थोड़ा सा बचाव रखें।
1: मैम दिल्ली से साक्षी हमें लिख रही हैं कि कुछ लोगों को बहुत मच्छर काटते हैं और कुछ को नहीं, ऐसा क्यों होता है? क्या इसका संबंध ब्लड ग्रुप से है? और दूसरा, जो हम स्मोक करते हैं घर में, यानी कि अगर हमने कुछ जलाया मच्छरों को भगाने के लिए, तो क्या वो सेफ है?
0: देखिए ऐसा है कि अब मुझे नहीं पता आप कौन से स्मोक की बात कर रही हैं, कुछ मस्किटो रेपेलेंट कॉइल्स होती हैं तो वो उनकी टेस्टिंग है वो सेफ़ हैं, बट फिर भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, खास करके कुछ पेशेंट्स होते हैं अस्थमा के होते हैं
1: जी
0: जिनको
1: बिल्कुल
0: स्मोक
1: मैम,
0: से
1: उसी के
0: हाँ
1: लिए पूछा ना।
0: एलर्जीज या वो हो सकती हैं, तो डेफिनेटली उससे प्रॉब्लम हो सकती है। उससे अच्छा ये है कि आप जाली के दरवाजे रखें, बंद करें, रात में मच्छरदानी में सोएं, पूरी वहाँ के कपड़े पहने,
1: जी
0: लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो लिमिटेड उसमें आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकती हैं।
1: जी
0: और जो इनका एक सवाल था ब्लड ग्रुप का, ऐसा तो कुछ साइंटिफिकली
1: ये
0: प्रूवन नहीं है,
1: जी
0: बट हाँ देखने में आता है कुछ लोगों को ज्यादा काटते हैं
1: जी
0: मच्छर, कुछ को कम, बट कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है
1: जी मैम,
0: उसका।
1: उत्तराखंड कोटद्वार से नरदेव सिंह चौहान हमें लिख रहे हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और परिवार में दो तीन लोगों को बुखार आ जाता है तो दवाई के अलावा खान पान उनको क्या दे? बच्चे, जवान, बुजुर्गों को क्या अलग अलग खान पान देने की
0: हाँ
1: जरूरत होती है?
0: ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब
1: जी
0: भी बुखार किसी को आता है तो बदन में उसको खाने को जो कॉम्प्लेक्स खाना है, बहुत फैट है, बहुत मसाले हैं, उसको
1: जी
0: पचाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, वो इंसान को और बीमार कर सकता है। तो सिंपल खाना दें, ताज़ा पका हुआ खाना दें
1: जी
0: और इजीली डाइजेस्टेबल फूड दें। जितना लिक्विड्स आप देंगे, खास करके आप लिक्विड पे, तरल पदार्थों पे बहुत फोकस रखें, किसी भी
1: जी
0: तरह के तरल पदार्थ दें। बहुत ये नहीं कि फ्रूट जूसेस वगैरह देना शुरू कर दें, क्योंकि वो शुगर बहुत होता है उनके अंदर, तो ये
1: जी
0: सब आप दे
1: जी
0: सकते
1: जी डॉक्टर साहब इसके ऊपर बात करेंगे। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ कॉल लाइन पे, पहले उनका कॉल ले लेते
0: हैं।
1: हैं। हेलो
2: हाँ नमस्कार सर, मेरे को सुन पा रहे हैं आप?
1: जी, आप अपना सवाल पूछिए
2: हाँ
1: मैडम से।
2: मैं दिल्ली
1: जी
2: से बोल रहा हूँ, नई दिल्ली 84 से। ये आप तो डॉक्टर साहब आपको भी नहीं, पर आप जो सुझाव दे रहे हैं ना, ये घर के आसपास नाली ये कर रहा हूँ, दूसरा नहीं कर रहा है, तो वो कह रहा है नाली मेरी है, मैं साफ करूँ न करूँ, जो फिर आगे कार्रवाई करो जल बोर्ड वगैरह, वो बोले आप कॉलोनी में आपके अलावा किसी को कंप्लेंट नहीं है, तो व्हाट इज द मैटर कि ये उल्टा सुलटा क्या है?
0: जी, तो इसके लिए ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि
1: मैम ये हम
0: जो
1: सबकी भागीदारी
0: जी
1: है,
0: ये
1: किसी
0: सबकी
1: एक की नहीं।
0: भागीदारी है, और इसको हमें सबको मिलजुल के
1: जी
0: और एक उस स्पिरिट में करना पड़ेगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है। देखिए 1.4 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया की है,
1: जी
0: अगर हर इंसान सफाई रखेगा तभी सफाई हो पाएगी। कोई भी एक एजेंसी या कोई भी एक इंसान या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा
1: हाँ
0: सकता है अकेले,
1: अकेले, हाँ
0: तो ये
1: बिल्कुल
0: जन भागीदारी ही सबसे बड़ी चीज़ है। और हमें अच्छी स्पिरिट में, लोगों की मदद की स्पिरिट में,
1: जी
0: अपनी मदद की, आप दूसरों की मदद करते हैं तो खुद अपनी मदद हो जाती
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो मुझे
1: बिल्कुल
0: लगता
1: मैम,
0: है कि जरूर जब आपको पता चल गया है कि ये जरूरी है कि आप सफाई रखें, तो उसको जरूर मेंटेन करें और आसपास में भी सद्भावना बना के काम कर
1: बिल्कुल
0: सकते
1: भी।
0: हैं।
1: एक
0: जी
1: और कॉलर है मैम हमारे साथ कॉल लाइन पे। हेलो
3: हेलो
1: जी
3: जी मैम, मैं साक्षी बोल रही हूँ लखनऊ से। नमस्ते,
1: नमस्ते
3: मेरा क्वेश्चन डॉक्टर तनुजैन मैडम से है। मैडम,
1: जी
3: अगर घर में किसी एक मेंबर को मलेरिया हो जाए तो बाकी फैमिली मेंबर्स को क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए?
0: जी हालांकि मैं बता चुकी हूँ, ये
1: जी
0: मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए दो तीन चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है, अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो मतलब ज़रूर कहीं आसपास मच्छर हैं जो ब्रीड कर रहे हैं, और ज़रूर आसपास कोई पेशेंट और भी हैं जहां से आपको ये बीमारी आ रही है।
1: जी
0: तो एक तो आपने अपने घर के आसपास मस्किटो प्रूफिंग जितनी कर सकते हैं करनी चाहिए, फिर जिसको मलेरिया हुआ है उसको थोड़ा आइसोलेट करके एक मच्छरदानी के अंदर रखें, अगर घर में ही है। अगर अस्पताल में भर्ती हैं तो भी वही प्रिकॉशंस लेने हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर भी मच्छरदानी में रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट यह है कि जिसको भी बीमारी हुई है और डायग्नोज हो गई, उनका ट्रीटमेंट जरूर कंप्लीट करें। देखिए दो तरह का मलेरिया होता है, एक फैल्सिपेरम होता है, एक वाइवैक्स होता है।
1: जी
0: तो वाइवैक्स का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें 14 दिन तक हमको दवाई खानी होती है। यूजुअली क्या होता है, 3-4-5 दिन के बाद हम अच्छा फील करने लगते हैं
1: और दवाई
0: और
1: छोड़
0: दवाई
1: देते
0: छोड़
1: हैं।
0: देते हैं, तो आपके जो लिवर होता है उसके अंदर में इसके कीटाणु जाके बैठ जाते हैं।
1: ओ
0: आपने जब दवाई छोड़ दी

0: महीना डेढ़ महीना बाद वो वापस आपके ब्लड में आ जाते हैं। तो ये पैरासाइट जो है वो वहाँ पे डोरमेंट स्टेज में रहता है। तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगी अपने श्रोताओं को कि बीच में दवाई ना छोड़ें, 14 दिन की दवाई ज़रूर खाएं, उसको कंप्लीट करें ताकि बाकी लोगों को भी आप बचा सकें। क्योंकि अब जब आपके बॉडी में ये पैरासाइट रह जाएगा तो हो सकता है आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे,
1: जी
0: लेकिन जो मच्छर आसपास रहेगा वो आपकी बॉडी से उस पैरासाइट को दूसरे लोगों में ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये बहुत एक डेंजरस चीज़ होती है। तो ये तीन चार चीजों का जरूर ध्यान रखें, और जिसको भी मलेरिया है या बीमारी है उसको तरल पदार्थ, सादा खाना जो पच सके, फ्रेश फूड दें,
1: जी
0: एकदम पका हुआ तुरंत एकदम ताजा खाना खिलाएं।
1: जी
0: जी
1: मैम, अभी आपने खाने की बात की तो बरसात में संक्रमण बढ़ने के कारण बाहर का खाना तो अवॉइड करना ही चाहिए, घर के बने खाने में भी क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और इसमें एक सवाल ये भी है कि जिनको बाहर का खाना पड़ता है किसी कारणवश, तो वो क्या सावधानी
0: जी
1: बरतें?
0: तो जैसे अगर आप बहुत श्योर नहीं है कि जो सैलेड काटा हुआ है वो सेफ है कि नहीं है, साफ पानी से धुला हुआ है कि नहीं है, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। दही है काफ़ी दिन का रखा हुआ है या दही के अंदर कुछ वेजिटेबल्स हैं, वो उस तरह की चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। जो भी खाना गर्म है, पका हुआ है, उसको आप खा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक पानी का सवाल है, हर बार पानी उबाल के पीने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो जो आपके घर में पाइप वाटर सप्लाई से सेफ पानी आता है उसको पिए।
1: जी
0: आप फिल्टर यूज करते हैं तो फिल्टर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के घर में कोई संक्रमण हो जाता है और आपको ये डर है कि आपके घर में पानी दूषित हो सकता है, तो उसको उबाल के पीने के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके बच्चों में और बुजुर्गों में और उन लोगों में जिनमें कोई और भी बीमारियां हैं, जिनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी कम है।
1: जी मैम,
0: जी
1: आपने बच्चों और बुजुर्गों की बात की तो इसी से जुड़ा एक सवाल है कि इस मौसम में बच्चों के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो बीमार ना पड़े और उन्हें स्कूल और अन्य वजहों से बाहर भी जाना पड़ता है, तो क्या तरीके हैं जो आसानी से वो उन तरीकों को अपना सके, क्योंकि बच्चे कई बार लापरवाही करते हैं?
0: जी बिल्कुल, बच्चे तो कम
1: बिल्कुल
0: लापरवाही करते हैं, कुछ पेरेंट्स भी कर देते हैं,
1: जी
0: लेकिन ये है कि बच्चे हैं, खेलेंगे जरूर,
1: हाँ
0: है ना। सपोज बारिश में भीग गए खेले, तो जरूर उस वक्त प्रिकॉशंस ये लें कि भीग गए हैं तो जब आ जाएं तो उनके कपड़े सुखा दें, उनको वार्म वाटर दें या कुछ गर्म पदार्थ पीने के लिए दें।
1: जी
0: और मेरे ख्याल से एक ही सी चीजें हैं सबके लिए कि आप फ्रेश फूड खाएं, साफ पानी लें। बच्चों के लिए खास करके जरूरी है, अगर उनके टीके नहीं लगे हुए हैं तो उनको टीकाकरण जरूर करा
1: करें
0: लें,
1: जी
0: क्योंकि बहुत सारी और बीमारियां हैं जो फैलती हैं, जैसे मीजल्स है आपकी, तो ये सारी बीमारियां जो बचपन की होती हैं, वो सारी बीमारियों से टीकाकरण जरूर अपने बच्चों का कराएं। और ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा ऐसे बाहर ऐसी जगहों पे शाम को ना खेलें जहां बहुत ज्यादा मच्छर हो या जहां बहुत ज्यादा
1: खासकर
0: या
1: पार्क्स में मैम,
0: पार्क्स में।
1: इस
0: जी
1: टाइम में
0: और
1: हो
0: जाएं
1: सकते
0: तो
1: हैं
0: फिर वो एटलीस्ट अपने आप को ठीक से
1: आपको?
0: कवर
1: जी
0: करके
1: जी
0: जाएं।
1: जी
0: जी
1: और मैम, अगर बच्चों के बाद हम बाद उनके बाद बात बुजुर्गों की करें तो कैसे घर के बड़ों का ख्याल रखा जाए इस मौसम में?
0: हाँ, और बुजुर्गों के लिए भी तो बहुत जरूरी है कि थोड़ा
1: जी
0: वर्जिश जरूर करें, थोड़ा टहलें, थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा डेफिनेटली अपना ख्याल रखें। और खाने में तो बिल्कुल सभी को एक ही सा खान पान रखना है, जितना सादा आप खान पान इस बरसात के मौसम में रखेंगे उतना ही आपको हेल्थ में बेनिफिट्स
1: मैम,
0: रहेंगे।
1: जिनको डायबिटिक है या जो
0: जी
1: बीपी के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी आपकी कोई एडवाइस है क्या?
0: तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो डेफिनेटली शुगर तो नहीं लेना है, और इस सीज़न में मन करता है कि बहुत सारी मीठे मीठे
1: क्योंकि
0: चीज़ें होती
1: फेस्टिव
0: हैं।
1: सीजन
0: हाँ,
1: भी आ
0: फेस्टिव
1: चुका
0: आता
1: होता है
0: है,
1: थोड़ा थोड़ा।
0: जूस लेना है या इस तरह की चीज़ें लेनी है, और फ्रूट्स भी बड़े अच्छे अच्छे आते हैं आजकल, वाटरमेलन और ये सारी
1: जी
0: चीज़ें
1: जी
0: आ रही हैं,
1: बिल्कुल
0: तो उसको बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज़ में लें। अपना मेडिकेशन का पूरा ध्यान रखें, और बीपी के लिए सॉल्ट, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम निगलेक्ट कर जाते हैं ना, हम अचार खा लेते हैं, ध्यान नहीं देते कि उसमें नमक कितना चला जाता है। दही तो
1: जी
0: शायद हम बिना नमक के खाएंगे, बट अचार खा लेंगे या सॉस ले लेंगे, तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें और अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल
1: जी
0: रखें।
1: जी तो श्रोताओं, कार्यक्रम जारी है बस इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर बोन डिजीजेस जैसे खास विषय पर, और इस पर हमें बेहद ही खास जानकारी दे रही हैं डॉक्टर तनु जैन। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है कि इस मौसम में एक और बीमारी जो अक्सर हो जाती है, आई फ्लू, क्या ये क्यों होती है और कैसे इससे बचाव किया जाए?
1: जी देखिए, आई फ्लू बड़ी कॉमन बीमारी है। ये बैक्टीरिया से होती है और ये एक दूसरे से ट्रांसमिट हो सकती है, कभी वायरस भी होते हैं इसमें, तो ये भी इन्हीं चीज़ों से ट्रांसमिट होती है। और जैसे आपने आँख रगड़ी अपनी और कहीं टच किया तो ये टच से ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपना हाथ धोते रहें। तो ये जो हाथ धोना है, और इसको हम यूनिवर्सल हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस कहते हैं, तो हाथ को ज़रूर 20 से 30 सेकंड के लिए अच्छे से धोएं, जिसमें कि आप अपनी डिजिट्स को, सारी उंगलियों को, थंब को, उसके बीच में जो आपके डिजिट्स होती हैं उसके बीच में ज़रूर धोएं और साबुन से अच्छी तरह धोएं। तो बार बार हाथ धोने पर आप 3-4 बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। वाटर जो बॉर्न बीमारियाँ हैं, फूड बॉर्न बीमारियाँ हैं, और जो बीमारियाँ आपकी खाने पीने की या नाखून में जैसे आपके कुछ चले जाते हैं कीटाणु, तो उनसे जो बीमारियाँ होती हैं उन सबसे आप, टाइफॉइड खास करके है, तो जरूर आप लोग ये हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर थोड़ी देर पे आपको लगता है कुछ टच किया है तो 2-1 घंटा पे जाके आप हाथ धो सकते हैं। दूसरा ये है कि आंख को रगड़े ना, साफ पानी से साफ करें, और अगर आपको लगता है कि ज्यादा परेशानी है तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। ऐसा ना करें कि आप अपनी आंख में ऑफ द काउंटर जाके कोई दवाई डालना शुरू करें, क्योंकि आंख एक बहुत बड़ी देन है और उसको थोड़ा लाइटली नहीं लेना चाहिए हमें। तो अगर लगता है कि ये फ्लू में ज्यादा ही आपको प्रॉब्लम हो रही है, यूजुअली आंखें लाल हो जाती हैं, चिपचिपाहट सी होने लगती है, तो सादे पानी से, साफ पानी से उसको फ्रीक्वेंटली वॉश करें, और डॉक्टर जो भी आपको ड्रॉप्स सजेस्ट करें वही ड्रॉप्स यूज करें। ऑफ द काउंटर ना खरीदें, कुछ ड्रॉप्स बहुत हार्मफुल हो सकती हैं, जैसे कुछ लोग स्टेरॉइड ड्रॉप्स यूज कर लेते हैं, उसकी वजह से आपका इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। तो ये जरूर अवॉइड करें, एंड आंख को लेके कभी लापरवाही ना करें।
0: और मैम, कुछ लोग केमिस्ट से जाकर बस दवाई ले लेते हैं।
1: केमिस्ट से जाके प्लीज दवाई ना लें, क्योंकि इसमें आंख की बात है और ये कहीं भी अगर ज्यादा बढ़ गई तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है।
0: मैम, इस मौसम में कुछ लोगों को स्किन एलर्जी भी हो जाती है, इसका क्या कारण है और बचाव के लिए क्या करें, क्योंकि कुछ लोगों को चकते या रेड स्पॉट्स से हो जाते हैं?
1: जी, तो एक्चुअली क्या है कि यूजुअली इस मौसम में तो स्किन एलर्जी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जब स्पोर्स होते हैं, हवा में ज्यादा स्पोर्स फैलने शुरू होते हैं, तब जो ये आपका सीजन आता है जब पतझड़ जिसको कहते हैं, उस वक्त पूरे में स्पोर्स जाते हैं, फूल ज्यादा खिलते हैं, तो उसकी जो एलर्जन उसमें से जो निकलते हैं, दे कॉज दिस काइंड ऑफ एलर्जी। कुछ लोग बहुत प्रोन होते हैं और कुछ लोग को इतना फर्क उससे नहीं पड़ता है। तो जो लोग ज्यादा प्रोन होते हैं वो एंटी हिस्टामिनिक, एंटी एलर्जिक ड्रग ले सकते हैं, और ऐसी जगहों पे अगर वो पता लगा सकते हैं एलर्जी टेस्ट करा के कि उनको स्पेसिफिकली किस चीज़ से एलर्जी है, तो उसको वो अवॉइड कर सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारा और है आपसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो जाए तो पूरी तरह ठीक होने में कितना टाइम लगता है और इसके डेंजर साइंस
1: जी
0: क्या
1: तो
0: है?
1: अब मैं डेंगू से ही पहले फिर भी शुरू करूंगी, क्योंकि डेंगू सबसे ही कॉमन यहाँ पर बीमारी है। तो 7 से 10 दिन में यूजुअली ठीक हो जाते हैं, और लगभग 60% लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि उनको डेंगू हुआ है। मोस्टली लाइट वायरल फीवर होता है और ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ये जो वायरस है ना, वो बॉडी में आपके 7 दिन से ज्यादा नहीं रहता है। उसके बाद जैसे इन्फ्लेमेशन जो छोड़ के जाता है, उसकी वजह से आपको सारे सिम्टम्स आते हैं। तो अगर आपको बुखार हुआ है और 5 से 7 दिन के अंदर में आपका बुखार ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, या बुखार दोबारा वापस आ गया है, तेज हो रहा है, 5 दिन 6 दिन हो चुका है, बुखार तेज है, दोबारा वापस आ गया, या शरीर पे चकत्ते आ रहे हैं, या आपको पेट में दर्द, मतलियां हो रही हैं, तो जरूर जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करें। ये डेंजर साइंस हैं और ये इंडिकेशन देते हैं कि आप का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आप जरूर जाएं। और जो मोस्टली एक भ्रांति रहती है कि सिर्फ एक प्लेटलेट्स को देखना है कि प्लेटलेट कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उस पर इतना ध्यान ना दें, वो डॉक्टर अपने आप देख लेंगे। ऑफकोर्स वो भी एक इंडिकेशन है, जो आपकी बॉडी पे छोटे छोटे पिटिकी जिनको कहते हैं चकत्ते आते हैं या रैशेज आते हैं, तो वो ये इंडिकेट करते हैं कि आपके प्लेटलेट्स हो सकता है कम हो रहे हों। तो ये सारे डेंजर साइंस हैं। अगर आप नहीं ठीक फील कर रहे हैं, बुखार ज्यादा तेज आ रहा है, पेट में दर्द है, तो 5 में 6 छठे दिन में तो जरूर एक बार ही कंसल्ट करें
0: जी मैम। और मलेरिया और चिकनगुनिया की बात करें तो
1: मलेरिया में अगर आप बात करें तो यूजुअली मलेरिया में भी वही 7 से 10 दिन मैक्सिमम आपको लगता है ठीक होने में, खास के आप जब दवाई ले रहे हैं तो वो। और इसी तरह के सिम्टम्स मलेरिया में भी रहते हैं, अगर बुखार नहीं टूट रहा है, बहुत तेज फीवर आ रहा है, वॉमिटिंग है, हेडेक ज्यादा बढ़ रहा है, या किसी तरह के सीजर्स शुरू हो जा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा डेंजर साइंस होते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी बताया कि इसमें ट्रीटमेंट कंप्लीट करना और ठीक टाइम पे डायग्नोसिस कराना बहुत जरूरी है। चिकनगुनिया के भी वो वायरल डिजीज है तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, तो ट्रीटमेंट वही है कि आप तरल पदार्थ लें और अपना जो भी डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपी या जो एक्सरसाइजेस बताएं उनको फॉलो करें। कभी कभी चिकनगुनिया का पेन साल भर तक भी रह जाता है
0: जी, जोड़ों क्योंकि में। कई बार लोग कहते हैं कि बाद में भी उनको
1: डेंगू में भी कई बार आपको काफी दिन तक बॉडी एक रह जाता है, लेकिन चिकनगुनिया में खास करके जोड़ों में पेन एक साल तक भी कभी कभी चल जाता है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो भी वो दवाइयां आपको सजेस्ट करें वो जरूर लें।
0: मैम वेक्टर जनित रोग जो है नियंत्रण जागरूकता अभियान से कितनी मदद मिल सकती है?
1: तो एक्चुअली ये जो जागरूकता अभियान है ये जगह जगह पर हमारा चलता है और रेडियो के माध्यम से, जैसे आपका शो है, या रेडियो पे जो छोटे छोटे जिंगल्स हैं, या टीवी के माध्यम से, या स्कूल्स में, कॉलेजेस में और बड़े बड़े संस्थानों में जो हमारे कार्यक्रम चलते हैं वो लगातार जानकारी देते हैं लोगों को इस बारे में। और खास करके हमारे ग्रामीण इलाकों में जो हमारी आशा बहनें हैं
0: जी,
1: है ना, जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स हैं, या कि हमारी ANMs हैं और हमारे जितने भी पंचायती राज मेंबर्स हैं, वो सारे लोग मिलके इस जागरूकता अभियान का एक पार्ट बनते हैं और एक जन आंदोलन की शेप में जब ये चलता है तो इसके तहत बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और इसी के चलते हुए हमारे देश में

0: भारी गिरावट वेक्टरबॉर्न डिजीजेज में हाल के टाइमों में देखी गई है, तो मेरे को जरूर लगता है कि सब लोग अगर इसमें मिलके सहयोग देंगे और साथ देंगे, क्योंकि ये ऐसी जगहों पे ब्रीड करता है जहाँ पे हर सरकार का इंसान तो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि
1: जी
0: घर घर में ब्रीडिंग हो रही है,
1: जी
0: तो घर घर को एक एम्बेसडर बनना पड़ेगा, इसके
1: हाँ,
0: लिए
1: आगे आना
0: मेहनत
1: पड़ेगा
0: करनी पड़ेगी और आगे आना पड़ेगा
1: जी,
0: जी।
1: क्योंकि मैम अब कार्यक्रम में समय बहुत थोड़ा सा रह गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से बचने के डूज एंड डोंट्स क्या है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से विस्तार से हमें जानकारी दी, लेकिन अगर हमारे कोई श्रोता स्टार्टिंग में हमारा प्रोग्राम नहीं सुन सके तो वो अब जान ले कि डूज एंड डोंट्स
0: जी
1: क्या है।
0: तो हम डोंट्स से पहले शुरू करते
1: जी
0: हैं कि आप अपने घर के आसपास गंदगी ना जमा होने दें, अपने घर में कहीं पर भी पानी का ठहराव ना होने दें।
1: जी
0: अगर आपके घर में कहीं पानी का ठहराव है तो उसको खाली करके ज़रूर, जैसे मैंने बताया, रगड़ के अच्छे से साफ करके सुखा के वहाँ पे रखें। इसके साथ साथ ही अपने घरों में जितना हो सके आप अपने जाली के खिड़की दरवाजे रखें जो शाम को बंद करें, मच्छरदानी के अंदर ज़रूर धोएं, खास करके प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं,
1: जी
0: बुज़ुर्ग हैं
1: है
0: जिनके ऊपर बीमारी का असर ज़्यादा पड़ सकता है, जिनकी इम्यूनिटी लो होती
1: होती
0: है और
1: है
0: उनको
1: जी
0: सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं,
1: जी
0: उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरा ख्याल रखा जाए। अगर किसी को बुखार होता है तो बहुत ज़्यादा उसको डिले ना करें, ज़रूर डॉक्टर से सलाह लें, पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन 24 से 48 घंटे के अंदर में आप डॉक्टर से सलाह लें और अगर ज़रूरत है तो टेस्ट ज़रूर कराएं, और बाकी खान पान का ख्याल रखें, हल्का खाना खाएं, हाथ ज़रूर धोते रहें, वो बहुत एक
1: हाँ बहुत
0: इम्पॉर्टेंट
1: जरूरी
0: चीज़
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल
0: और अगर किसी को खांसी जुकाम या वायरल जो आजकल फ्लू चल रहा है वो है, तो खुद भी एक हमारे अंदर चेतना होनी चाहिए कि हम दूसरों को ना फैलाएं।
1: आइसोलेट कर
0: जी,
1: लें
0: अपने
1: थोड़ा
0: को
1: सा, बिल्कुल
0: आइसोलेट कर लें, थोड़ा मास्क पहन लें,
1: जी
0: दूरी बनाए रखें, या
1: जी
0: जब खांसे या छींकें तो अपना मुंह या हाथ लगा के कवर करके फिर मुंह को तब खांसे
1: जी
0: छींक। तो ये सब प्रिकॉशंस हम लेंगे तो ज़रूर हम मानसून को एंजॉय कर
1: कर
0: सकेंगे,
1: सक
0: बरसात को एंजॉय कर सकेंगे और बीमारियों में भी स्वस्थ रह सकेंगे।
1: रहेंगे। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विषय जो जुड़ा था वेक्टर बोन डिजीजेस या मच्छर जनित रोगों से होने वाली समस्याओं से, और इस पर हमें बेहद खास जानकारी दी हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर तनु जैन ने, जो है डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोन डिजीजेस, DGHS, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर तनु, आप यहाँ आई और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पूजा जी,
1: और
0: धन्यवाद आपका भी।
1: श्रोताओं, आज के लिए अपनी दोस्त पूजा को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान की रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के बीच आज नई दिल्ली में बैठक हुई। दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के प्रारूप के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वे आज पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। दिल्ली के उप राज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राजधानी में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी मोर्चों पर निर्बाध बहु एजेंसी समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में निर्मित 2,35,000 मकानों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रूपये से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की। सड़क और परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 अन्य घायल हो गए। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड का सामना करेगी। मैच भारतीय नियमानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार और अब हम आपको लिए चलते हैं अपने अगले कार्यक्रम की ओर, जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: नंदन वंदन अभिनंदन, आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक में हार्दिक अभिनंदन है। मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं और आपसे वादा करती हूं कि हर बार की तरह आज का हमारा ये कार्यक्रम आपके दिलों में एक नई उम्मीद जगाने वाला है, क्योंकि हमारे लिए कोई कहीं मुस्तैद है, कार्यरत है, जो अपनी जान को अपनी हथेलियों में लेकर चलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश की सेवा में सर्वत्र अपना सर्वत्र न्योछावर किए आगे बढ़ रहा है, हर दिन हर रात। आपसे साझा करना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं शिव शंकर कुमार जी, जो इंस्पेक्टर हैं जनरल ड्यूटी सहस्त्र सीमा बल में, आजकल गैंगटॉक में कार्यरत हैं और इन्हें गैलेंट्री मेडल से भी सम्मानित किया गया है। और सबसे प्यारी और खूबसूरत बात आज के अंक की ये है कि सीधा गैंगटॉक से यहाँ पहुंचे हैं आकाशवाणी के स्टूडियोज में आपको अपनी यात्रा से अवगत कराने के लिए, रूबरू कराने के लिए। हर सिपाही हर ऑफिसर की अपनी यात्रा होती है, लेकिन उस यात्रा का गंतव्य सिर्फ देश सेवा होती है। तो देश सेवा को समर्पित हमारे आज के मेहमान शिव शंकर कुमार जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। शिव शंकर कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार SSB की ओर से आप सभी श्रोताओं को जय हिंद कहना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं ऑल इंडिया रेडियो टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। SSB का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुरक्षा को बनाए रखना है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे SSB के सभी कार्मिक दिन रात पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपना काम कर रहे हैं। SSB हमारी इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो भूटान बॉर्डर के साथ साथ इलेक्शन ड्यूटी, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी को भी बखूबी अंजाम दे रही है। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी टीम का।
0: जी इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी, आपने जिस तरह से व्याख्या की यहाँ पर SSB की, इससे ये साबित होता है कि आप देश के साथ साथ अपनी सेवाओं से, सेनाओं से कितना प्रेम करते हैं। और आज आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सहस्त्र सीमा बल का, उन तमाम सैनिकों का, उन तमाम अधिकारियों का जो कहीं ना कहीं अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने, आप कहते हैं ना कि अपने आत्म मनोबल या आत्मबल तो हमें हमारी सेवाएं सेनाएं देती हैं, पर हम किस तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं वो भी सेनाओं के माध्यम से काबिले तारीफ है। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो नन्ना मन
1: जी,
0: लंबी उड़ान, छोटे छोटे पंख, आपका जो जीवन है खासतौर पर आपके बचपन की बात की जाए तो किस तरह के बच्चे थे आप? क्या शैतान थे और पढ़ाई में कितना मन लगता था? कैसा माहौल था घर में?
1: बचपन तो मेरा बिहार में सीतामढ़ी, जो एक बाजपट्टी पडदौरा गांव है, वहाँ बीता है। मेरा परिवार का माहौल बहुत खुशनुमा माहौल था और हमेशा इनकरेजिंग मिलता था काम करने के लिए। शरारती बच्चे तो थे ही, लेकिन हमारे परिवार से हमें मेहनत और अनुशासन के प्रति हमेशा सजग रहने को सिखाया गया है
0: जी।
1: और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने का भी एक हमारे पिताजी सिखाते थे कि पूरी ईमानदारी से कोई भी काम को करना है तो पूरी ईमानदारी से करना है, लगन के साथ करना है। तो वो हमारे अंदर हमेशा के लिए रह गया और आगे चल के हमारे जब भी हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी वो काम किया है
0: जी। कहते हैं कि हमारा जो परिवेश है, हमारा जो परिवार है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे विकास में। आज हम जो कुछ भी हैं अपने परिवार की वजह से और जो भी संस्कार आपको प्राप्त हुए वो देश सेवा में निहित है, नजर आ रहे हैं। और आज जब आप अपनी वर्दी पहने यहाँ FM रेनबो के स्टूडियोज, आकाशवाणी के स्टूडियोज में बैठे हैं, तो आपके माता पिता जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे, घर परिवार वाले सुन रहे होंगे, वो इस बात की मिसाल दे रहे होंगे कि हाँ, हमारे बच्चे ने अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए जो बेड़ा उठाया है काबिले तारीफ है। तो शिव कुमार जी, आप शिव शंकर कुमार जी, आप हमें ये बताइए कि कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको देश सेवा में इस पथ पर चलना है और SSB ज्वाइन करने का फैसला कैसे लिया?
1: मेरे लिए वर्दी हमेशा सम्मान और जिम्मेदारी की प्रतीक रहा है। मन में हमेशा ऐसी इच्छा थी कि फौज के प्रति, देश के प्रति कुछ करना है, तो ऐसा काम करे जो देश और समाज में अपना योगदान भी दे सके। इसी सोच को जब हमने ग्रेजुएशन पास किया तो सुरक्षा बल में जाने का फैसला किया। उसके बाद एसएससी की फॉर्म आई, उसमें मैंने पास करके और फिर एसएसबी को ज्वाइन किया है। एक एसएसबी एक ऐसा माध्यम रहा, एक ऐसा अवसर रहा जिसके देश सेवा के साथ साथ देश सेवा करने का पूर्ण मौका मिला
0: जी। और ये मौका आपके जीवन में एक सुखद अनुभूति लेकर आया, वर्दी पहनना, फिर देश सेवा में जितने भी ऑपरेशंस में आप कार्यरत रहे उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये अनुभूति जरूर हुई होगी कि अगर मैं सेना ना ज्वाइन करता तो ये मौका मुझे कहाँ मिलता, कहाँ मैं अपने देश का परचम लहरा पाता। तो ये सौभाग्य की बात है कि सेनाओं ने आपको चुना और सशस्त्र सीमा बल आपको बल दे रहा है आज, और आप इस बल से देश सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के उपरांत आपने एग्जाम क्लियर किया, क्या प्रक्रिया रही, कैसे पहुंचे और कितने अटेम्प्ट्स किए, कितने अटेम्प्ट्स में आपको ये हासिल हुआ, क्या कुछ और भी करने की सोच रहे थे साथ साथ, या सिर्फ ये था कि फौज में ही जाना है?
1: ठीक, ये मेरी पहली अटेम्प्ट ही थी और मैंने 2012 में ये एसएसबी को ज्वाइन किया था और इसकी जो फॉर्म थी एसएससी के थ्रू आई और 2010 में इसका प्रोसेस शुरू हो गया था। पूरी भर्ती जो होती है वो फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, रिटेन होता है, इंटरव्यू होता है, सारी प्रक्रिया को चयन करने के बाद, पास करने के बाद मेरा चयन हुआ था। इसमें फिजिकल टफनेस के साथ साथ मेंटल टफनेस की भी परीक्षा होती है इसमें, अगर वो सारा चीज़ आप पास कर जा रहे हैं तो फिर आपका चयन हो जाता है। उस समय एक ही बात मन में था कि अगर मौका मिले तो मैं भी अपने इस काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ ये करूँगा
0: जी। तो वो कौन सा वर्ष था जब आपका चयन हुआ और चयन होने के बाद जब ये खबर आप अपने परिवार तक ले गए तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?
1: ये 2012 में हुआ है। 2012 में हमें एसएसबी ज्वाइन करने का मौका मिल गया था, परिवार के लिए तो ये बहुत खुशी और गर्व का विषय था। लेकिन एक छोटा सा वो भी था कि फौज में जा रहा है तो फौज में घर से दूर रहेगा, उनके मन में एक था कि घर से दूर रहेगा, लेकिन उनका हमेशा सपोर्ट रहा है कि हाँ चलो जो भी करना है अपने मन से ईमानदारी से करते रहना है, मुश्किल परिस्थितियों में भी ड्यूटी करना है तो उसके लिए भी परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है, उन्होंने हमेशा साथ किया दिया है।
0: पर उसी साथ के चलते आप आज यहाँ तक पहुँच गए, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक का सफर आपने पूरा किया, इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। ये भी बताएं कि जब आप घर परिवार के साथ साथ जब जिस जगह से आप संबंध रखते हैं, आपके नाते रिश्तेदार दोस्त, उन तक जब ये बात पहुंची कि हमारा दोस्त या हमारा परिवारजन अब एसएसबी ज्वाइन करने वाला है, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? क्या कभी किसी ने ऐसा कहा कि आप जैसा बनना चाहते हैं, हम भी एसएसबी ज्वाइन करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं देश की?
1: सभी के लिए ये, हमारे गांव वालों के लिए भी ये गर्व की बात था कि हमारे बीच का एक लड़का कोई जाकर फौज में भर्ती हो रहा है, उस सब के लिए गर्व की बात था। और एक तो आइडल बन ही जाता है गांव समाज के लिए कि हाँ कोई भी जाए तो वो उसके जैसा बनना है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरे जैसा ही बनना है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करे वो ज़्यादा जरूरी है
0: जी। पर ऐसा तो ज़रूर होता होगा कि जब आप अपने घर जाते होंगे तो आपके अपने आपके दोस्त, आपके परिवारजन एक जमावड़ा सा लग जाता होगा और कहते होंगे सुनाओ ना कुछ किस्से कहानियां, क्या कुछ होता है एसएसबी में, जहां जिस बटालियन के साथ जाते हो क्या कुछ खास हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बहुत उत्सुकता रहती है कि हमारे जो देश के जो वीर हैं ना कैसी जिंदगी जीते हैं। हम आम जनमानस बस आपके किस्सों को दोहराते हैं, लेकिन जब आपकी जुबानी इनको सुनते हैं ना तो गर्व से सीना फूल जाता है। आज जिस कार्यक्रम के माध्यम से भी जितने लोग हमें सुन रहे हैं, संदेश आ रहे हैं, हम तक पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मन में जिज्ञासा रहती है कि कैसा जीवन जीते हैं। ये तो जानते हैं कि मुस्तैद रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई जिंदगी ऐसी होती होगी जो हम नहीं जी पाते, और यही कारण है कि आज देश के युवा भावी पीढ़ी फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऐसा होता होगा आपके साथ?
1: ये होता है, फौज ऐसी संस्था है जो एक जॉब नहीं देती, एक लाइफ देती है
0: जी,
1: ये पूरा जीवन देती है हमको। आप अगर आप इसमें जीना चाहते हैं तो पूरी लाइफ जो है वो देती है, और किस्से कहानियां तो चलते रहते हैं, घर पे जाते हैं तो जो भी किस्से कहानियां वो चलते रहते हैं, सभी उत्सुक रहते हैं कि कुछ तो बताए फौज में कैसे चलता है, क्या होता है नहीं होता है, ये सब तो चलते रहता है। और ड्यूटी के टाइम में ड्यूटी, और ड्यूटी जब नहीं रहती है तो हम लोग भी रिलैक्स होके रहते हैं और काम करते हैं
0: जी। लेकिन लक्ष्य, जिस लक्ष्य के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए आपने मेहनत की, वो लक्ष्य आपको प्राप्त हुआ, और लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ जैसे ही आप अपना एग्जाम क्लियर किया, हर चरण में आप उत्तीर्ण हुए, पास हुए, उसके उपरांत तो ट्रेनिंग जो एक अहम हिस्सा रही, तो ट्रेनिंग का सफर कैसा रहा, कहाँ ट्रेनिंग हुई, और क्या आप ये मानते हैं कि इस ट्रेनिंग ने आपको पूर्ण रूप से तैयार कर दिया था सेवा देने के लिए?
1: मेरी पोस्टिंग सबसे पहले

0: 2012 में हुई, जब मैं बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए सीटीसी सलोनीबारी असम में है वहाँ गया। वहाँ से एक सिविलियन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक फौज में आने के लिए, फौजी बनने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया 13 महीना का जो बेसिक ट्रेनिंग था उसमें। इससे ये होता है कि हमारा सिविल लाइफ और फौज के लाइफ थोड़ा डिफरेंस होता है। मतलब फौज में कैसे किससे बात करना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, सारा चीज़ को वो 13 महीने के अंदर में हमें हमारे इंस्ट्रक्टर लोग ने, हमारे जो भी अधिकारी लोग हैं उन्होंने हमें सिखाया, उसको पूरी तरह से मजबूत बनाया। फिजिकल टफनेस से लेके मेंटल टफनेस तक सभी चीज़ को हमने सिखाया गया उसी दौरान। उसके बाद हमारी पोस्टिंग आगे होती चली गई। उसके बाद मेरी पोस्टिंग सबसे पहले 53 बटालियन फालाकाटा में हुई, जो इंडो भूटान बॉर्डर को मैन करती है, वहाँ पे ड्यूटी करती है। उसके बाद 2018 में मेरी पोस्टिंग सीतामढ़ी 51वीं बयानी है, वहाँ पे जो इंडो नेपाल बॉर्डर को ड्यूटी करती है, मैन करती है, वहाँ पे हमारी ड्यूटी हो गई। वहाँ से होने के बाद हमें 2021 में ANO जो है एंटी नक्सल ऑपरेशंस है वो 16वीं वाहिनी जमुई बिहार में हमारी पोस्टिंग हो गई, वहाँ पे हमने दी। और फिलहाल मैं SSK गैंगटॉक में अपनी सेवाएं एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक ऑफिस ड्यूटी के रूप में दे रहा हूँ।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम यही कहेंगे कि ये सफ़र, ये कारवां यूं ही जारी है और जारी रहेगा। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने हमारे शिव शंकर कुमार जी, और आज इंस्पेक्टर के रूप में हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो इनके सफ़र के बारे में और चर्चा करेंगे। और आप सभी श्रोता जो संदेश भेजना चाहते हैं 9868107070 इस नंबर के माध्यम से आप संदेश भेजिए और अपनी भागीदारी निभाइए। इस बात का प्रतीक चिन्ह बनिए कि हम देशवासी अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। सेवाओं के माध्यम से हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो नित्य प्रति कार्यरत रहते हैं और जिनके लिए सिर्फ देश सेवा ही सर्वोपरि है, उनको सलाम करते हैं संदेश के माध्यम से।

0: लक्ष्य प्राप्ति किसे कहते हैं, ये तो हम अपने फौजियों से ही सीखते हैं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति प्रेम ने हमेशा इन्हें लक्ष्य प्राप्त करना ही तो सिखाया है। और इस लक्ष्य प्राप्ति की वजह से हमारे देश भारत ने हमेशा परचम लहराया है, अपने फौजियों की वजह से और इनके देश प्रेम की वजह से। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार सहस्त्र सीमा बल से। और जैसे कि मैं साझा कर चुकी हूं कि आजकल ये गैंगटॉक में कार्यरत हैं और सीधे गैंगटॉक से यहाँ आकाशवाणी के स्टूडियो आए हैं। यही इनकी कर्तव्य निष्ठा है, यही देश प्रेम है। और सहस्त्र सीमा बल ने जैसे ही इन्हें कहा कि आपको जाना है और पहुँचना है, देखिए ये तुरंत कल चले और आज यहाँ पहुँच गए। आपसे ये जानना चाहते हैं हम शिव शंकर कुमार जी, एक लंबा सफर तय करता है एक फौजी। 2012 में आपकी नियुक्ति हुई, आप सब इंस्पेक्टर बने, फिर 2018 में इंस्पेक्टर बने। ये सफर कितना चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। पदोन्नति अपने आप में हमें सुखद अनुभूति कराती है, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां और जिम्मेदारी लेकर आती है।
1: ये सफर मेरे लिए बहुत सीखने वाला रहा है। 2012 में मैं सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुआ था। उसके बाद एक प्रक्रिया है, अगर वैकेंसीज हो और आपका सर्विस रिकॉर्ड ठीक हो तो आपको एक डिपार्टमेंट आपको प्रमोशन देती ही देती है
0: जी।
1: उसके साथ जब 2018 में मुझे इंस्पेक्टर बनाया गया था, रैंक बढ़ने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ती है
0: जी।
1: इस दौरान मैंने अपने जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा, और जो हमारे सहपाठी है, कार्मिक है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि एक सिविलियन होकर आकर फौज में ट्रेनिंग के बाद अगर ऑन ग्राउंड जो ड्यूटी करता है उसको सीखने के लिए, जो पहले से जो भी काम कर रहे हैं उनसे सीखने को मिलता है, वो हमारे दिनचर्या में शामिल हो जाता है
0: जी। जी, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और आप उस जिंदगी को जीने लगते हैं और लगने लगता है हम इसी के लिए बने थे, और जिसके लिए बने थे आज उसके लिए कार्यरत है, आपकी रग रग में शामिल हो जाता है। शायद सेनाएं आपको इस तरह से तैयार करती हैं कि बस आपके रगों में, आपके खून में सिर्फ सेना है और देश प्रेम रह जाता है जी। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि जब आप सेनाएं ज्वाइन करते हैं, जब आपने SSB ज्वाइन की, तो निश्चित परीक्षण के अंतर्गत आपको फिर आगे पोस्टिंग्स मिली, लेकिन प्रशिक्षण का सिलसिला फौज में जाने के बाद कभी खत्म नहीं होता, वो तो बरकरार रहता है ना। तो क्या आपको लगता है कि जो भी ट्रेनिंग्स आपने बीच बीच में की या करते आ रहे हैं, इसने आपका निर्माण किया है, इसने आपको पूर्ण रूप से एक फौजी होना भी सिखाया है और कैसे चुनौतियों से लड़ा जाए ये भी बताया है।
1: प्रशिक्षण ही किसी को बेटर बनाती है। पहले हमने बेसिक ट्रेनिंग किया, उसके बाद समय समय पे ऑर्गेनाइजेशन हमको कोर्सेज कराती रहती है, इन प्रोफेशनल कोर्सेज हो और ट्रेनिंग भी हो वो कराते रहती है। जैसे आपको प्रमोशन भी मिलता है तब भी आपको कोर्सेज करने पड़ते, कोर्सेज क्वालिफाई करने पड़ते, तब आपको प्रमोट किया जाता है। उसी तरह से हर कोर्स के लिए, हर ड्यूटी के लिए अलग अलग कोर्सेज है जो आपको प्रोफेशनली साउंड बनाने के लिए कराए जाते हैं। जिस प्रकार से कोई भी कोर्सेज हो, जंगल वारफेयर का कोर्सेज हो, जंगल में कैसे रहना है उसकी ट्रेनिंग कराना हो, जैसे बॉर्डर पे ड्यूटी करना है, इंडो नेपाल बॉर्डर को कैसे मैन करना, इंडो भूटान बॉर्डर को कैसे मैन करना, उसकी भी ट्रेनिंग, ये अनवरत जारी रहता है। और फौज, मैंने पहले भी बताया, एक लाइफ है, तो इसमें अनवरत जारी रहेगा कोर्सेज कराना, जिससे कि आप और टफ हो सके और अपने काम को अच्छे तरह से कर सके। इसीलिए ट्रेनिंग हमेशा जरूरी है
0: जी। और ना शब्द तो कभी होता ही नहीं आपकी डिक्शनरी में, क्योंकि सेनाएं आपको हमेशा यही सिखाती हैं,
1: ना तो है ही नहीं,
0: इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। बस जैसा कि हमने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति ही आपका अल्टीमेट गोल है, जिस काम को आपको दिया गया उसको आपको पूर्ण करना है, यही आपकी जिम्मेदारी है।
1: और हम लोग उस जिम्मेदारी को पूरी तरह बखूबी निभाते भी है
0: जी, निभाते हैं। और एक बात व्यक्तिगत पूछना चाहूंगी, एक फौजी होने के नाते घर भी है, परिवार है, तमाम रिश्ते हैं और एक तरफ देश प्रेम है, तो इस कहते हैं कि एक फौजी के मन में कभी कोई जंग नहीं होती उसके वक्त, उस मतलब परिवार और देश को लेकर उसके मन में सिर्फ देश प्रेम होता है कि बस अब देश के लिए समर्पित है, माना कि घर है, परिवार है, भावनाएं हैं, तो इस चीज को आप किस तरह से अपने जीवन में समाहित करते हैं?
1: थोड़ा मुश्किल तो है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन परिवार का अगर सहयोग मिलते रहे तो ये सब आसान हो जाता है, परिवार और नौकरी के बीच में ये सामंजस्य बैठाना अगर परिवार से साथ मिलता है तो ये एकदम आसान हो जाता है। सुरक्षा बल की नौकरी में कई बार परिवार के जो महत्वपूर्ण अवसर होते हैं उसमें भी हम लोग नहीं आ पाते हैं, तब भी एक परिवार का जो सहयोग होता है अगर वो मिलते रहता है तो सारा आसान हो जाता है।
0: जी, सब कुछ आसान हो जाता है घर परिवार से आपको ये कहा जाए कि जाओ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करो, जाओ अपने कर्तव्यों को पूर्ण करो, क्योंकि हमारा सम्मान तुम्हारे सम्मान में है, क्योंकि जब जब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओगे तब तब हम गर्व से कहेंगे कि हमारा बेटा जो है देश प्रेम में है और देश के लिए कार्यरत है। तो यही तो जज्बा है जो हमें हर वक्त अपनी ओर आकर्षित करता है, और कितने ही युवा ये चाहते हैं कि हम फोर्सेस ज्वाइन करें और देश का नाम ऊंचा करें। तो मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम है।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इनकी यात्रा इन्हीं की जुबानी सुनने में जो सुखद आनंद प्राप्त हो रहा है ना जाने कितनों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन रहा है। बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, आप सभी के नाम हम जरूर लेंगे लेकिन इससे पहले इनकी यात्रा जिसको हम सुनने के लिए इतने ललायत हैं कहीं भी छूट न जाए, दिल चाहता है इनसे बार बार बहुत सारे प्रश्न किए जाएं। जितना हमें आपके बारे में पता लगा है कि आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई बार तैनात किया गया है, आपको तैयार किया गया है, कभी महसूस होता है कि अगर आपको ये कार्यभार ना सौंपे गए होते तो आप जो आज हैं वो आज ना होते।
1: जी, ऐसे क्षेत्रों में सबसे जरूरी होता है हमेशा सतर्क रहना, हमारी अपनी ट्रेनिंग और जो हमारे ऑफिसर्स के निर्देशों के अनुसार हम लोग काम करते हैं, ड्यूटी के लिए हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। टीम के साथ साथ एक टीम के भावना के रूप में काम करते हैं, टीम का कम्युनिकेशन एक दूसरे के प्रति ठीक रहना चाहिए और एरिया के बारे में जानकारी होना चाहिए जहाँ पर हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो कोई भी काम आसान हो जाता है।
0: जी, कोई भी काम आसान हो जाता है लेकिन आसानी से पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार करना होता है और आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, आपकी कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्यों का पालन करने की जो आप में गुण निहित हैं इसकी वजह से ही आपको शायद ऑपरेशन जोश के लिए भी चयनित किया गया, जहां पर आपने अपनी टीम के साथ मिलकर दमखम स्थापित किया और उस कहते हैं कि उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया।
1: जी, ये 8 जून की घटना है, 8 जून 2022 की घटना है। ये मेरे टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। ये बिहार राज्य के जमुई जिले की घटना है जिसमें हम एक ऐसे सफल ऑपरेशन के बारे में आज बात करेंगे जिसमें हमारी टीम ने एक हार्डकोर नक्सल को न्यूट्रलाइज किया था और उसमें भारी मात्रा में गोला बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद किया गया था।
0: जी,
1: ये सफलता मेरी नहीं पूरी टीम की सफलता है जिसमें आपसी तालमेल हो, सही समय पे जो मिली सूचना को परिणाम था कि हमने ये ऑपरेशन सफल किया। उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ टीम ने कार्रवाई की और नक्सल को न्यूट्रलाइज किया था। इस तरह के ऑपरेशन किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है, एक पूरी टीम होती है, पूरी टीम का योगदान होता है इसमें। आसूचना मिलने प्राप्त करने से लेके ऑपरेशन को अंजाम देने तक एक सभी कार्मिकों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और वो अपनी पूरी ईमानदारी और साहस के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया था। SSB इस ऑपरेशन के बाद जम्मू जिले में बहुत सारे नक्सलियों ने अपने आप इस ऑपरेशन के बाद खुद ब खुद सरेंडर किया सुरक्षा बलों के सामने आकर।
0: उनके मन में इतना डर
1: इनके मन में डर भर बन गया था और जस्ट एक सप्ताह के अंदर ही जो ये ऑपरेशन होने के बाद बहुत सारे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों और पुलिस के सामने आके खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि SSB के महत्वपूर्ण योगदान के कारण जम्मू जिला आज पूर्णतः नक्सल फ्री घोषित हो चुका है। इसमें SSB का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर अपनी टीम को भी, सभी साथी कार्मिकों को उनके साहस और मेहनत एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए बधाई देना चाहूँगा। सही समय पे सही कार्रवाई करना एक ऑपरेशन के लिए सबसे जरूरी होता है, जो हमारी टीम ने उसको किया।
0: जी, एक बात और पूछना चाहूंगी, जब इस तरह के ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते हैं, एक टीम का हिस्सा बनते हैं, तो निश्चित रूप से अपने सहकर्मियों से भी आप बहुत कुछ सीखते होंगे।
1: काफी कुछ सीखने को मिलता है। मैंने पहले भी बताया कि ये टीम को लेकर काम करने की पूरी टीम काम करती है, जिसमें हम लोग हमेशा कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो एक टीम के साथ काम करते हैं। इसमें किसी एक की जिम्मेवारी नहीं होती, सभी की अलग अलग जिम्मेवारियाँ बांटी हुई होती है और वो सभी

0: के इस काम को अंजाम देते हैं। एक सूचना मिलने से लेके ऑपरेशन करने तक सारी की जिम्मेदारियां अलग अलग होती है, और जब ये ऑपरेशन सफल होता है तो वो सभी के लिए उतना ही गर्व का बात है जितना अगर मैं क्या कहूँ इसको, सभी के लिए गर्व की
1: जी,
0: बात
1: हर
0: है ये।
1: मेंबर के लिए, जितने भी
0: जी
1: मेंबर्स हैं। अच्छा, हर मेंबर को उसका कार्यभार सौंप दिया जाता होगा और ये कहा जाता होगा कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करने पर जिस तरह से कमांड दिया जाएगा आपको, उसी वक्त डिसीजन लेकर कि आपको उसको सुचारू करना है, आप उसी वक्त अपनी बुद्धि से, अपनी, कहते हैं कि हमारी बुद्धि जो है हमें निर्णय लेने में मदद करती है, कमांडर आपका आपको निर्देश देता है, उसके बाद आप तैयार हो जाते हैं उस काम को करने के लिए।
0: ग्राउंड में आने के बाद सभी को ऑन ग्राउंड के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, लेकिन पहले जो भी प्रशिक्षण मिला हुआ है उसको अपने निहित करते हुए और काम को आगे किया जाता है। हमेशा जो भी ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले सभी का काम को बता दिया जाता है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, और सभी अपने अपने काम को बखूबी करते हैं और उसके कारण हमें सफलता मिलती है।
1: बहुत खूब। अच्छा, यहाँ पर आकर आपको लगता होगा जब आप ऑपरेशंस का हिस्सा बनते हैं, और जैसा कि हमने कहा कि आप बहुत से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आपने कार्य भी किया है, तो जो प्रशिक्षण आपने हासिल किए हैं, जो आपको प्रशिक्षण दिए हैं सशस्त्र सीमा बल ने, वो आपको लगता होगा कि वो आपके साथ बहुत अच्छा हुआ कि आपको वो ट्रेनिंग मिली, नतीजतन आप आज इतने सारे ऑपरेशंस का हिस्सा बन रहे हैं।
0: ट्रेनिंग सबसे जरूरी है, जितना टफ ट्रेनिंग होगा उतना फायदा मिलेगा ग्राउंड में काम करने के लिए और कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा काम करेगा। ट्रेनिंग सबसे जरूरी चीज़ है, टफ जितना ट्रेनिंग होगा उतना फायदा हमको ग्राउंड में काम करने के लिए मिलेगा।
1: जी, और कहते हैं कि कुछ विपत्ति जो है ना बताकर आती है, लेकिन कुछ अनदेखी होती हैं, उसके लिए आपको सशस्त्र सीमा बल किस तरह से तैयार करता है?
0: हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करके रखता है फौज, ऐसा ही है ही कि जो कठिन परिस्थिति जब भी है तब भी एक फौजी खड़ा रहता है वहाँ पे, उसी के लिए फौज रहती ही है।
1: जी, जैसा कि हम अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आपको आपके ऑपरेशन जोश के लिए, जिसमें आपने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उस नक्सली प्रभावित क्षेत्र को नेस्तनाबूद किया, और अगर हम गलत नहीं हैं तो जितने भी आर्म्स और एम्यूनेशन थे उनको भी आपने जब्त किया आखिरी में, और आपको 2024 में गैलेंट्री पदक से भी नवाजा गया, वो अनुभूति किस तरह की थी? सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनना अपने आप में एक अलग अनुभूति, लेकिन सम्मान मिलना आपके कार्य के लिए, वो उससे भी बड़ी बात। उस वक्त कैसा महसूस हुआ?
0: ये पल तो मेरे लिए गर्व और इमोशनल इमोशनल भी था। जब देश की सेवा करते हुए कोई सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी भी होती है। इस सम्मान को केवल अपना सम्मान नहीं मानता हूँ, ये पूरी टीम का सम्मान है, और मेडल आगे आगे अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर तरीक़ों से करने की
1: जी
0: प्रेरणा देता है, और आगे हम लोग भी और मेहनत से और लगन के साथ कार्य करते रहेंगे।
1: जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि जब मेडल प्राप्त होता है सुखद अनुभूति होती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आप अपने ऊपर और लेते हैं, और ये कहते हैं अपने आप से, स्वयं से बात करते हैं और कहते हैं कि अगली बार इससे भी बेहतर कर दिखाएंगे, है ना, और जितनी भी जिम्मेदारियां मिलेंगी उनका भी निर्वाह करते हुए चलेंगे, मन में बात जरूर आती होगी।
0: हमेशा कोई भी ऑपरेशंस होता है तो उसके बाद में उसकी समीक्षा होती है कि इस ऑपरेशन को और कितने बेहतर किया जा सके, तो आगे नेक्स्ट ऑपरेशन में उसको और उससे बेहतर किया जा सकता है, और करते हैं हम लोग।
1: जी बहुत बढ़िया। अच्छा, गैलेंट्री पदक के अलावा भी आपको और कई सम्मान दिए हैं SSB ने, उनके बारे में भी हमें बताएं।
0: तो उनके अलावा बहुत सारे सम्मान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन मिलता है, जिसे हमारे DG महोदय के द्वारा भी DG सिल्वर डिश से नवाजा गया है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में अगर ड्यूटी कर रहे थे वहाँ भी रिवॉर्ड्स मिले हैं, कमेंडेशन भी मिले हैं। हर सम्मान एक खुशी देता है और साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है कि और इससे बेहतर करना है कुछ।
1: जी, इससे बेहतर करना है, और देश की, चाहे फौज की बात की जाए तो चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे वो बाहम सुरक्षा की बात हो, और हर फोर्स अपना अपना कार्य करता है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्यरत है वो आंतरिक करते हैं, जो बाहम के लिए जिम्मेदार है वो बाहम सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, देश,
0: जी,
1: है ना, सिर्फ देश ही याद आता है और बस देश ही समझ में आता है, उसके अलावा कुछ और नहीं।
0: सबसे पहले देश है, देश के लिए कुछ भी करने के हो तैयार रहते हैं हम लोग।
1: जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही, देश के लिए तो मर मिटने तक के लिए तैयार रहते हैं जब अपने घरों से निकलते हैं और फौज ज्वाइन करते हैं, और फौज ज्वाइन करने के बाद तो जिस भी ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि घर भी लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, और शायद यही आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है, यही जो आपका प्रेम है देश के प्रति, हम देशवासियों को हमेशा ये प्रेरित करता है कि आप हमें जहां भी मिले हम आपको सलाम करें और कहें आप हैं तो हम हैं और आप नहीं तो हम नहीं।

0: और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हैं सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार, जिनकी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं दिल में खूक उठ रही होगी आपकी, और आप भी ये सोच रहे होंगे कि हम भी फोर्सेस ज्वाइन करें और देश के प्रति अपने सम्मान को, हर कोई व्यक्ति ना यही चाहता है कि देश के लिए काश हम कुछ कर पाएं, और सेना ज्वाइन करना हर किसी के दिल में हुक जरूर मारता है। आज हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी से, इनकी यात्रा हमने इनकी जुबानी सुनी। शिव शंकर कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अलग अलग बटालियंस में आप तैनात रहे, आप अलग अलग बटालियंस का हिस्सा रहे, क्या कुछ कार्यभार आपको सौंपे गए और वो कार्यभार आपको कितने अच्छे लगे? वो तो आपकी मुस्कान से पता लग रहा है कि आपके लिए हर बटालियन दिल के करीब रही है और बहुत सारी यादें देखी गई है हर बटालियन, तो कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे अपनी बटालियंस के बारे में?
1: मेरे लिए हर वाहिनी अपने अलग अलग यादें हैं, हर वाहिनी की अलग अलग यादें हैं, वहाँ पे काम करने वाले साथी जो भी रहते हैं वो एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। हम अपना सारा सुख दुख जो भी है उस के इर्द गिर्द ही बुनते हैं, हम एक टीम की तरह एक टीम भावना के साथ काम करते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी जो भी कार्य किए गए हैं वो साथियों के साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल हमेशा याद रहते रहते हैं। मैंने पहले भी बताया कि हमने सभी बॉर्डर पर काम किया है, इंडो भूटान बॉर्डर सबसे पहले हमने किया, इंडो भूटान बॉर्डर का सीनेरियो अलग, फिर इंडो नेपाल बॉर्डर पे आया, इंडो नेपाल बॉर्डर का भी अलग ड्यूटी, उसके बाद हमने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में काम किया 16 बटालियन में, जिससे हमें बहुत बड़ी सफलता भी मिली थी वहाँ पे। इसके बाद अभी हम पूरी तरह से ऑफिस ड्यूटी में है, गैंगटोक में पोस्टेड है, तो सारा काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसी ड्यूटी के दौरान।
0: जी, ये बहुत प्यारी बात होती है कि जब आपको अलग अलग ऑपरेशन साथ ही साथ अलग अलग तरह के कार्यभार संभालने का मौका मिलता है अपने कार्यकाल में, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। आप फोर्सेस को उतनी अच्छी तरह से जान पाते हैं कि हमारी जो फोर्सेस है क्या कुछ करती हैं, कैसे करती हैं, और यही शायद बहुत खूबसूरत बात होती है। अच्छा, ये बताइए कि हर बटालियन या हर जब जिस बटालियन में आप रहे हैं, 3-3 साल के अंतराल के बाद आपकी पोस्टिंग बदली होगी, एक बटालियन छोड़ने के बाद, एक पोस्टिंग छोड़ने के बाद कितना दुख होता है?
1: ये काफ़ी दुख होता है, कभी लगता ही नहीं कि वहाँ से निकल के दूसरे जगह चले जाए। एक फैमिली बन जाती है, लगता है कि यहीं पे अपनी पूरी नौकरी कर ले, यहीं पे अपनी ड्यूटी कर ले, लेकिन एक प्रोसेस है और उसको हमको मानना पड़ता है। जब ऊपर से आदेश आ गया कि आपकी पोस्टिंग दूसरे जगह कर दी गई है, वो बिना हिचक के हम लोग अपना बैग पैक करते हैं और चल देते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए।
0: जिस तरह जो भी निर्देश दिया जाता है उसी के तहत आप अपने आप को मुस्तैद करते हैं, फिर नई जगह में पहुंचते हैं और फिर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब किसी टीम में रहते हैं तो आपसी प्रेम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आप जब उस यूनिट को, उस पोस्टिंग को छोड़ते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन वो 3 साल का समय कहते हैं कि बहुत आत्मीयता लेकर आता है, सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपनी यूनिट के सहकर्मियों के साथ आप साझा करते हैं। पार्टी वार्टी करते हैं?
1: पार्टियां होती रहती है।
0: अच्छा,
1: ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि फौज एक लाइफ देती है, आप उस लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, ड्यूटी है और वो लाइफ भी देती है जो जिसके लिए हम लोग भर्ती होते हैं।
0: जी, अच्छा, आप कुछ देर पहले मुझसे कह रहे थे कि अगर आप यूनिट में ना भी हों, अपने घर गए हों और आपके घर में कोई खुशी का माहौल हो तो वो खुशी आपकी यूनिट में भी मना ली जाती है।
1: फौज में ये परंपरा भी है कि अगर घर में खुशी है तो फोन कर दो और यहाँ पे पार्टी पहले हो जाती है।
0: अरे वाह, क्या बात है। मतलब आपके जितने भी दोस्त है वहां पर अपने हिस्से की पार्टी वहां कर लेते हैं, आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। जब आपके साथ है, यूनिट में है, तब भी एंजॉय कर रही हैं, तब भी मना रही हैं, एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रही हैं, और अगर दूर भी हैं बस बताने भर से वो आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं।
1: फौज की ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी है, हमेशा सुख दुख उन्हीं के साथ बांट के रहना है, तो उनके लिए ही सारा चीज समर्पित रहता है, हम अपनी टीम के लिए ही हमेशा समर्पित रहता है।
0: अच्छा, ये बताइए कि जब घर आप जाते हैं तो घर से वापस जब अपनी यूनिट जाते होंगे तो माँ, घर परिवार वाले कुछ डब्बे खाने पीने का सामान देते होंगे, आपके साथ बंध कर जरूर जाता होगा।
1: वो सबके लिए होता है,
0: वो सबके लिए होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक महीने का सामान है तो वो एक महीने में खत्म होना है, या वो उससे पहले खत्म हो जाता है।
1: नहीं, वो सबके लिए होता है, जो टीम है हमारी वो सबके लिए होता है।
0: हाँ, तो मुझे लगता है कि जाते साथ ही सब डब्बे खाली हो जाते होंगे।
1: जरूर जरूर।
0: और बड़ी चाह होती है ये, अरे घर से आए हो, ये बताओ क्या लेकर आए हो।
1: हमेशा रहती है चाहत, रहती है कि कुछ तो लेकर आया होगा।
0: अच्छा ये बताइए, वैसे तो आप बहुत ज्यादा अपने काम में व्यस्त रहते होंगे, लेकिन आपके साथ ऐसा कौन है जो साथ चलता है, जिसको आप ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कोई जिंदगी में है, जिससे बात कर रहे हैं, जो चल रहा है साथ, कोई है ऐसा?
1: एक टीम रहता है, वो हमेशा हमारे साथ चलती है।
0: और रेडियो?
1: रेडियो भी है। वो रेडियो एक लाइफ का हिस्सा है, वो हमेशा आपको चलते रहता है, साथ साथ चलते रहता है। दिन दिनचर्या में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो आपको बताते रहती है। हाँ, हमेशा
0: ऐसा महसूस होता है किसी की आवाज़ कानों तक पहुंच रही है, लेकिन आप व्यस्त हैं, अपने काम में मग्न हैं, लेकिन अपना साथी, वो साथी तो है ही, सहकर्मी तो है ही, लेकिन रेडियो भी साथ साथ है। अच्छी बताइए कि त्यौहार कैसे मनाते हैं आप, सारे त्यौहार मनाते हैं वहाँ?
1: अगर हम यूनिट में मौजूद है तो त्यौहार हमेशा मनता है, और एकदम धूमधाम से सेलिब्रेट के साथ सभी चीज होते के साथ मनता है। अगर अगर घर पे नहीं है, अगर यूनिट में है, तो यूनिट में बहुत धूमधाम से त्यौहार मनता है, जिससे किसी को ये मलाल ना रहे कि मैं इस बार घर नहीं गया हूँ। हाँ। और बहुत धूमधाम से मनता है
0: जी। और खेलने का शौक कितना है आपको?
1: हम लोग उतने बड़े खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन खेलते हैं, सभी गेम खेलते हैं, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, सभी खेल में रुचि है, और सब समय मिलता है, खेलते रहते हैं हम लोग।
0: खेल कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति और आपके विकास, आपके शारीरिक विकास में एक अहम भूमिका निभाता है, जो हमेशा आपको सजीव रखता है।
1: फौज की नौकरी करने के लिए सबसे जरूरी है फिटनेस, और अगर आप खेल अपने नियमित हिस्सा रखते हैं तो आपकी फिटनेस भी बनी रहती है।
0: जी बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और आपको इतने सारे दोस्तों ने सलाम भेजा है, जय हिंद सर लिखकर भेजा है, यहाँ पर दोस्त ने अपना नाम नहीं लिखा, माफी चाहूंगी दोस्त, नाम लिखते तो शायद आसान हो जाता मेरे लिए पढ़ना। संदेश टू सोल्जर्स का नियमित श्रोता हूँ, तिरुचिरापल्ली विजय कुमार ने आपको नमस्कार भेजा है, और सेना नायक इंस्पेक्टर शिव शंकर जी को जय हिंद वंदे मातरम इन्होंने कहा है, इनकी राष्ट्र सेवा के लिए हमारा हृदयपूर्ण नमस्कार आप स्वीकार करें। आप
1: सभी को जय हिंद मेरा
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों संदेश भेजने के लिए। अच्छा यहाँ पर एक संदेश आया है, नाम इन्होंने नहीं लिखा, पर यह कहा है कि अगर हम फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे, हम जब डिग्निटी की बात होती है, साहस की बात होती है, समर्पण की बात होती है, या आम जनमानस को भी हम कैसे प्रेरित करें कि वो भी अपने जीवन में आत्मसात करें, कैसे उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में शामिल करें।
1: डिसिप्लिन अपने अंदर से आता है, डिसिप्लिन के लिए कहीं से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को अनुशासित रखिए, अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगी।
0: और वैसे भी हमारे फौजी अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जब भी हम इनकी गाथा सुनते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से जब आप घर घर तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन, डिसिप्लिन सब हमें मिल जाता है। संदेश हमारे पास आया है यहाँ पे यश शिंदे का, और इनको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, जय भारत वंदे मातरम इन्होंने लिख भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। जय हिंद लिख भेजा है मोनू सेठ ने, और इन्होंने लिखा है, मत देख लेना निगाह उठाकर मेरे वतन की तरफ, वरना वक्त भी तुम्हारा होगा, जगह भी तुम्हारी होगी, बस तिरंगा हमारा होगा। बहुत खूब। अगला संदेश हम तक पहुंचा है यहाँ पर शबनम का, बीके कॉलोनी से, और बीके दत्त कॉलोनी से, और ये कह रही है कि जब आपको प्रथम ड्यूटी मिली और ये इन्हीं का गांव है जहां आपको मिली, और ये बहुत ज्यादा खुश हैं, और बहुत ज्यादा खुश हैं कि आप गैंगटॉक से सीधा यहाँ आकाशवाणी स्टूडियोज पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर अदा कर रहे हैं सभी दोस्त। मंसूर का यहाँ पर संदेश आया, जय हिंद। यहाँ पर पीयूष ने संदेश भेजा है, चेतन पटेरिया ने ग्वालियर से संदेश भेजा है। यहाँ पर समय कम है, संदेश पूरे नहीं पढ़ पाऊंगे, लेकिन हम शिव शंकर कुमार जी को आपके संदेशों से जरूर अवगत कराएंगे। संदेश भेजने वालों में हमारे पास बिजनौर से संदेश है, और ये है चरण कुमार का, और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त संदेश भेजने का। शिव शंकर कुमार जी संदेश भेजा है इन्होंने, शिव पांडे लखनऊ से संदेश भेज रहे हैं, मोनिश इद्रिस ने बिलासपुर से संदेश भेजा है, संदेश भेजने वालों में बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, हम शुक्रिया देना चाहते हैं आपका। नितिश कुमार ने हमें संदेश भेजा है, देखिए आपसे प्रेम करने वालों की फहरिस्त बहुत बड़ी है और हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं इस बात को जानकर कि हमारी फौजियों से कितना प्रेम किया जाता है। अनिल कुमार का चंपावत उत्तराखंड से संदेश आया है। संदेश भेजने वालों में पंडित स्वार्षद संदेश भेज रहे हैं, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। संदेश भेजने वालों में से एक क्लास 12th के स्टूडेंट भी हैं जो एनडी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अजय अहिरवार ने संदेश हमें भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आप सभी का संदेश भेजने के लिए। और इंस्पेक्टर शिवशंकर कुमार जी जो SSP में कार्यरत हैं, आजकल गैंगटॉक में है, आपने जिस तरह से व्याख्या की और आप SSB का नाम ऊंचा कर रहे हैं, आप देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। संदेश भेजने वालों में और भी कई दोस्त हैं। KKS रायपुर छत्तीसगढ़ से संदेश आया है यहाँ पर, दोस्त आपका नाम है KKS रायपुर CG इन्होंने लिखा है। क्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदय, आप आम जनमानस में सैनिक जैसी कर्तव्य निष्ठा और श्रेष्ठ नागरिक बनने की प्रेरणा कैसे दी जा सकती है, इस पर हमने भी बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर किसी का नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पाई हूँ तो आप सभी से माफी चाहूंगी। अवधेश कुमार का औरंगाबाद बिहार से संदेश है। सुमन कर्माकर का सोनितपुर आसाम से संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके संदेश हम तक पहुंचे इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। और धन्यवाद देना चाहते हैं इंस्पेक्टर शिव कुमार जी का जो कार्यरत हैं गैंगटॉक में और सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में आने के लिए और हमें SSB से जुड़ी हुई इतनी सारी बातों से अवगत कराने के लिए।
1: धन्यवाद सभी को, सभी को जय हिंद। मैं देश के युवाओं से भी इतना कहना चाहूँगा, अपने सपनों पर भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सभी जो भी देश के युवा है, देश के सेवा और सुरक्षा बल में आना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपनी फिटनेस को और अनुशासन को बनाए रखिए, आप जरूर चयनित होइएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सबके लिए कि अपनी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते रहिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान की बात है। सभी को जय हिंद।
0: जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी SSB से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होने के लिए और इतनी सारी बातें साझा करने के लिए।

कोइजुमी के बीच आज नई दिल्ली में बैठक हुई। दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए। 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक महाबलीपुरम में संपन्न हुई। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में क्षेत्र के विकास और साझा मुद्दों पर चर्चा हुई। सिंगापुर में भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में निर्मित 2,35,000 मकानों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी। सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी को विश्व स्तरीय समावेशी और आर्थिक रूप से सशक्त शहर बनाना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के मिशन कर्मयोगी डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड का सामना करेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। तो ये थे अभी तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ बिल्कुल सही, इन्होंने कहा कि एफएम रेनबो को स्विच कर लीजिए और स्विच करने के बाद यकीन मानिए आपका यहां से कहीं और जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हर घंटे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई शुरुआत के साथ आपके साथ जुड़े रहते हैं हम 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ 102.6 पर आकाशवाणी एफएम रेनबो के जरिए। और आज इस प्रोग्राम में आपके साथ एक बार फिर से मिली हूं मैं, आपके अपनी दोस्त। अब आप कहेंगे भाई दोस्त बहुत समय के बाद आती हो, तो भाई कोई बात नहीं ना, जो मजा इंतजार के बाद मिलने में आता है वो जल्दी जल्दी मिलने में कहाँ आता है, है ना। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप मुझे पहचान गए होंगे, पहचान गए हैं तो जरूर बताइए, जल्दी से लिखकर भेज दीजिए अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़कर कि क्या वाकई आप पहचान गए हैं। आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम है सिटी लाइट्स, और सिटी लाइट्स में मैं आ गई हूँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ लेकर दिल्ली एनसीआर की खबरें, और साथ में होंगे चटपटे मजेदार और लजतदार गाने भी, और साथ साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पहचान तो डेफिनेटली मुझे लिया है, लेकिन साथ में इस प्यारी सी डगर पर, इस प्यारे से सफर में आप मेरे साथ चलने के लिए बिल्कुल हैं तैयार।

जी हाँ, फाइनली फाइनली वक्त आ गया कि मैं आपको बता दूं कि मैं कौन हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं हूँ आपकी अपनी आरजे, आपकी अपनी होस्ट, आपकी अपनी दोस्त रॉकिंग रश्मि। और दिल्ली वालों के लिए ना बहुत ही रॉकिंग खबर ये है कि भाई दिल्ली में ना 56 डेडिकेटेड वुमेन ओनली इलेक्ट्रिक बसेस स्टार्ट हो गई हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ वुमेन ओनली, यानी कि लेडीज स्पेशल बसेस। और सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग रूट्स है ना, और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी रूट्स जो हैं, क्योंकि इसे ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, फीमेल कॉलेज स्टूडेंट्स, उनके लिए, साथ में जो फीमेल स्टाफ भी इसमें होगा, साथ साथ जो विमेन इधर से उधर वर्किंग आवर्स में जाती हैं, स्पेशली जो सबसे ज़्यादा कंजस्टेड टाइम जो होता है ना, सबसे ज़्यादा बिजी रूट जो होता है, उन पर ये रहेंगी। तो यदि आपने भी अभी तक ये प्लान नहीं किया है ना कि आपको लेडीज़ स्पेशल से जाना है या नहीं, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि 30 लेडीज़ स्पेशल ट्रिप्स बने हाई डिमांडिंग कमर्शियल और रेजिडेंशियल रूट्स पर, साथ साथ 26 यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल बनेंगी जो 13 रूट्स पर चलेंगी, खास तौर पे मॉर्निंग और इवनिंग जो पीक ट्रेवल टाइम है ना उसमें ये रहेगा। तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम लोग कॉलेज आया करते थे ना, तो ये जो यू स्पेशल बसेस थी मैं अक्सर देखा करती थी कि थी उस टाइम पर, और वैसे भी अभी कुछ ही टाइम पहले ये बंद हुई थी, लेकिन एक बार फिर से इन्हें स्टार्ट कर दिया गया, तो डेफिनेटली, और खास तौर पे जिस तरह से ईव टीजिंग की घटनाएं होती है ना, उनसे बचाने के लिए फीमेल्स को खास तौर पे ये मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में ये बसेस आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हों या फिर लेडीज हों, जो देखिए ना वैसे भी लेडीज के पास इतने सारे काम होते हैं, वो बेचारी थक जाती हैं। तो यदि आपके रूट में भी ये बसेस पड़ रही हैं, तो बिल्कुल आप इनकी सेवा ले सकते हैं, और साथ साथ गाने भी गुनगुना सकते हैं जस्ट लाइक दिस। भाई यहाँ जरूर है कि ये थोड़े से हमारे मेल है, लेकिन हम तो फीमेल्स है ना, हम एज ए फीमेल गाड़ी निकाल सकते हैं, राइट।

0: ये अपना दिल छोड़कर आए हैं, लेकिन आप अपने दिल को संभाल कर रखिए, क्योंकि सिटी लाइट्स में आपके साथ हूँ मैं रश्मि, और लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत सारी बढ़िया बढ़िया खबरें और साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्स हैं जिन्हें सुने हुए मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त हो गया होगा आपको, लेकिन जब आप सुनेंगे ना तो वापस आप उस खूबसूरत से एरा में पहुँच जाएंगे जिसकी जनरली आपको तलाश रहती है। तो बस जाएगा कहीं नहीं, रहिए हमारे साथ FM रेनबो 102.6 पर।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जी हाँ बिल्कुल, लुट जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा यदि इनका गाना हम नहीं सुनेंगे। ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है जनाब, लेकिन ये भी फैक्ट है कि जब ये गाने हम सुनते हैं ना, तो एक उस एरा में पहुंच जाते हैं जब हिमेश रेशमिया का जादू छाया था ना, और उनकी इस फिल्म के साथ उनके बहुत सारे गाने हमें पसंद आया करते थे। हालांकि ये जो गाना था ये कुणाल गांजावाला की आवाज़ में था, लेकिन बावजूद इसके उनका भी ना एक अलग ही ऑरा था कुणाल का, और कुछ अलग एक अलग अंदाज की इनकी आवाज़ से। हालांकि अब इनके गाने कम बल्कि ना के बराबर सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब जब बजता है तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लग रहा है? गाना भी और प्रोग्राम भी आप हमें लिख सकते हैं हमारे हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर पर। जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं उन्हें तो पता ही है कि 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन हमारे नए दोस्त जो हैं उन्होंने भी बिल्कुल सुन लिया होगा, मैंने नंबर ऑब्वियसली बता दिया है। लेकिन साथ साथ आपको और भी बहुत कुछ बताने के लिए लेकर आई हूँ प्रोग्राम सिटी लाइट्स, और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे, आपकी अपनी दोस्त रॉकिंग रश्मि। अब देखिए ना जनाब, जो राष्ट्रपति भवन है उसमें एक बहुत ही प्यारा सा हमारा अमृत उद्यान है। जनरली होता क्या था कि फरवरी के महीने में खुलता था और जनरल स्टूडेंट्स जो होते थे उनके एग्ज़ाम्स होते थे, है ना, और वो देखना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाते थे। और वैसे भी ना अब स्कूल से पिकनिक्स वगैरह काफ़ी कम हो गई हैं, बच्चे अपने आप में बिज़ी रहने लगे हैं, तो जो पिकनिक्स जाती हैं वो काफ़ी दूर दराज की जगहों पर जाती है। लेकिन अमृत उद्यान एक ऐसी जगह है जो मुझे लगता है स्कूल्स को भी ज़रूर लेकर जाना चाहिए, और अब तो वैसे भी इसे साल में 2 बार खोल दिया जाता है आम पब्लिक के लिए। तो ये जो अभी सीजन चल रहा है, यानी कि अभी 16 अगस्त से ऑलरेडी अमृत उद्यान में एक बार फिर से एंट्री खुल गई है, और 15 सितंबर तक आप कभी भी जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि काफी स्कूल्स में इन दिनों एग्जाम्स नहीं होते। समय की यदि हम बात करें, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक डेली का टाइम है, सिर्फ और सिर्फ मंडे छोड़कर, क्योंकि मंडे को मेंटेनेंस के लिए इसे बंद कर दिया जाता है। एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन हाँ आपको ऑनलाइन स्लॉट बुक कराना पड़ेगा, और ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाने के बाद जब भी आप वहाँ जाएं तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि लास्ट एंट्री ना आपकी सिर्फ 5:15 तक होगी। तो अभी ये जैसे कि अभी हो रहा है 5:30 होने वाले हैं थोड़ी 2-4 मिनट में, तो आप अब नहीं जा सकते, लेकिन यदि आप कल के लिए प्लान कर रहे हैं या किसी और दिन के लिए प्लान कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। एंट्री करने का टाइम सिर्फ और सिर्फ 5:15 तक रहेगा, और यदि आप गेट नंबर 35 से एंट्री करते हैं ना तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखिए कितनी अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई ना, गाने भी सुनिए लेकिन साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, जो जानकारियाँ दे रहे हैं, यदि आप दिल्ली में कहीं घूमना चाहते हैं, ठीक है दिल्ली के बाज़ार ऑब्वियसली बहुत अच्छी जगहें हैं, और हमारे जो जेंजी हैं वो तो बाजार हो, मॉल्स हो, या कहीं पर भी अपने मतलब की जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो भी यदि जाना चाहे तो अमृत उद्यान उनके लिए भी एक बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन रहेगा घूमने के लिए।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

जी हाँ, और बिल्कुल दिल्ली की गलियां ना आपको भी याद कर रही हैं यदि आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं वहां जहां पर हो रही है 30th BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। देखिए, वर्ल्ड टॉप बैडमिंटन प्लेयर्स इस समय कंपीट कर रहे हैं, वुमेन सिंगल और डबल्स भी हो रहे हैं, साथ साथ मिक्स डबल्स भी हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको वहां पर जरूर जाना चाहिए। 17 अगस्त से ऑलरेडी ये जो चैंपियनशिप है ना स्टार्ट हो चुकी है और इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है वहाँ पर ये इवेंट हो रहा है। और देखिए कल यानी कि 21 अगस्त को, देखिए ना मैं भी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ जैसे मैं अभी की अभी वहाँ पर पहुँच जाऊँ। कल यानी कि 21 अगस्त को है क्वार्टर फाइनल्स, और यदि आपने अभी तक प्लान नहीं किया है ना तो जल्दी से जाइए, BWF ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर टिकट्स बुक करा सकते हैं। और यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जेब के ऊपर भारी नहीं पड़ सकते, हो सकता है पड़ जाएँ, लेकिन हाँ नॉमिनल प्राइजेस वाले टिकट्स भी डेफिनेटली अवेलेबल होंगे। लेकिन देखिए होता क्या है कि जब अपने देश में खासतौर पे राजधानी में कोई भी इवेंट यदि हो रहा होता है ना तो मुझे लगता है कि उसे ज़रूर देखने जाना चाहिए। और ख़ासतौर पे यदि आप बैडमिंटन लवर हैं या आप अपने फेवरेट जो स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, पीवी सिंधु हो, लक्ष्य सेन हो या फिर चिराग शेट्टी हो, और अभी आपने सुना भी ना कि कौन कौन हमारे कल क्वार्टर फाइनल्स में खेल सकते हैं उनके बारे में भी आपने अभी सुना, तो डेफिनेटली उनको देखने के लिए या उनको मोटिवेट करने के लिए अपने देश के लिए आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। कल मैंने बताया 21 अगस्त को है क्वार्टर फाइनल्स, 22 को होगा सेमीफाइनल्स, और फिर 23rd को यानी कि संडे को हो जाएगा फाइनल्स, और मे बी इस बार जो ट्रॉफी है वो हमारे हाथ में, और क्या कहते हैं होगा ना, तो कोई भी बहाना लगाइए जल्दी से जल्दी, ये बहुत सारे 10 बहाने हैं भाई, बहाने लगा लीजिए और पहुंच जाइए मोटिवेट करने हमारे प्लेयर्स को।

वेल दोस्तों, मुझे किसी भी बहाने की जरूरत नहीं है, मुझे जब आपसे बात करनी है ना, मैं फटाफट से फेडर जो है वो नीचे कर देती हूँ जैसे ही गाना खत्म होता है और आपसे बात करने के लिए आ जाती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके पास एफएम रेनबो 102.6 पर। हमारे बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वंदना का मैसेज आया है मध्य प्रदेश के जबलपुर से, कहते बिल्कुल सही कहा आपने, कुणाल गांजावाला की आवाज का ना अपना ही जादू था और अब उनकी आवाज सुनने को नहीं मिलती। कहते हैं कि कुछ आवाजें जहन में बस जाती है, ऐसी ही आवाज थी, लेकिन हाँ जब वो सुनाई देना बंद हो जाती है ना तो जैसे एक भूली बिसरी सी, पर सुनहरी याद हमेशा बनकर दिल में रह जाती है। वंदना जी बिल्कुल सही आपने कहा और ऐसी ही आवाज़ है कुणाल गांजावाला की। और मुझे लग रहा है यदि वो इस वक्त हमें सुन रहे हो ना तो प्लीज़ कुणाल सर ज़रूर फिर से थोड़ी से गाने कुछ मज़ेदार से खूबसूरत से नगमे ज़रूर लेकर आइए। इसके अलावा एक मैसेज और आया है, लिखने वाले कौन हैं, कराची से अमर रमेश कुमार खत्री टेलर, बहुत सारे इन्होंने नाम लिखे हैं और फरमाइश सुनना चाहते हैं। तो सर जी फरमाइशी प्रोग्राम थोड़ी ना है ये तो आपका अपना सिटी लाइट से जिसमें हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है और कहां पर आप जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो हो रहा है ना वो है हमारा मॉनसून, और मॉनसून में बहुत सारी बीमारियों से बचने का आपका प्रोग्राम क्या है ये मैं आपको जरूर बता सकती हूँ। देखिए ना, बारिश का महीना आता है, सावन का महीना आता है, कहीं खुशियां होती हैं लेकिन साथ साथ तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती है, लेकिन साथ साथ बहुत सी परेशानियां लेकर आती हैं, है ना। और खास तौर पे यदि उस वक्त आपको शॉपिंग के लिए जाना हो या कहीं पर बाहर निकलना हो, ट्रैवलिंग करनी हो, लॉन्ग ट्रैवलिंग करनी हो, तो थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है आप क्या करते हैं जब भी बाहर घर से निकलते हैं? भाई मेरे हिसाब से सबसे पहले जो आपका बैग है ना वो वाटर प्रूफ होना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है जो मैं जनरली करती हूँ कि अपने पास ना अपने बैग में कुछ एक पॉलीथीन टाइप क्या वाटरप्रूफ थैलियाँ या ए वाटरप्रूफ जो छोटे छोटे बैग्स होते हैं ना वो रखती हूँ, ताकि मैं उसमें अपना फ़ोन, अपना वॉलेट, ये चीज़ें रख सकूँ। कोई ज़रूरी मेरे पास पेपर हो तो कोई डॉक्यूमेंट हो वो भी मैं रख सकूँ, तो ये मैं ज़रूर रखती हूँ। क्योंकि रोज़ रोज़ बैग चेंज करना ऑफिस जाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यदि आप इस तरह से अपने सामान को सेफली रखने के लिए कुछ एक इस तरह से वाटरप्रूफ स्मॉल बैग्स रखेंगे ना अपने, तो जब भी बारिश आएगी आप उसमें निकाल के फटाफट से रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका फ़ोन और गैजेट्स के लिए आप एक जिप लॉक पाउच जो होते हैं वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा फुटवेयर की यदि बात करें तो बिल्कुल आपको एंटी स्लिप और साथ साथ रबड़ के जो होते हैं, जो मतलब फिसले नहीं आप या फिर आपको वो भीगे नहीं और जल्दी सूख जाए, इस तरह के आपका फुटवेयर होना चाहिए। और कोशिश ये कीजिए यदि बहुत ज़्यादा बारिश है, मतलब भारी बारिश है ना, तो अवॉइड कीजिए, फिर किसी दिन निकल जाइएगा। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निकलना या शॉपिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी सामान आपको लेना है, तो ऑनलाइन शॉपिंग है ना, कर सकते हैं भाई। और पहले से यदि आपने कोई सामान खरीद लिया है तो आपको उसको आप वाटरप्रूफ बैग में या किसी प्लास्टिक में आप रैप कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि जब भी आप शॉपिंग पे निकलें या ट्रैवलिंग के लिए निकलें ना, प्लीज़ घर से थोड़ा सा खाने का सामान लेकर निकलें, क्योंकि इन दिनों में बाहर के खुले खाने या स्ट्रीट फूड, या यदि कहीं पर आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ खुले का जो पानी होता है ना नया कहीं पे नल का पानी, ये मत पीजिएगा। और यदि आप लंबा कहीं जा रहे हैं कि आपको लगता है कि सुबह से लेकर रात तक आपको हो जाएगी और उस दौरान बारिश तेज़ है, तो हो सके तो अपने बैग में हमेशा एक स्पेयर अपने कपड़े ज़रूर रखिए। और भी बहुत कुछ बहुत ज़रूरी है वो भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको सुनाऊंगी एक और प्यारा सा ट्रैक। कहते हैं ना धीमे धीमे करने से सब काम अच्छे हो जाते हैं।

दोस्तों सच बताएगा आपको, ये वाला धीमे धीमे ज्यादा अच्छा लगा, पति पत्नी और वो दो का, या फिर जो पहले वाला आया था कार्तिक आर्यन का, धीमे धीमे वो ज्यादा अच्छा लगा। मैं अपनी बताऊं ना तो मुझे वो वाला ज्यादा अच्छा लगा था, लेकिन गाने तो सभी अच्छे होते हैं और रिमिक्स के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ तो डेफिनेटली होता है। फिलहाल यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ ना होने दे, तो आपको इन दिनों में मच्छरों से भी अपना ध्यान रखना है, और बाहर निकले तो भी इस बात का ख्याल रखना है कि आपके पास कोई मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम या फिर स्प्रे ज़रूर हो, और साथ साथ एक सैनिटाइज़र और पानी की बोतल प्लस मजबूत सा एक अम्ब्रेला या फिर रेनकोट आपके पास ज़रूर हो, क्योंकि ना इन दिनों में सबसे ज़्यादा जो ख़तरा होता है ना आपकी हेल्थ के ख़राब होने का ही होता है। तो मुझे लगता है आज का जो प्रोग्राम है ना वो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और यदि नहीं लग रहा है ना तो भी आप मुझे लिखकर बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, है ना। हमारे बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, और मुझे लगता है कि हमेशा इंतज़ार करते होंगे कि अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेकर हम आपके पास आएँ। तो फ़िलहाल आपके लिए गाना लेकर आई हूँ। हमारे जो जेंजी इस वक्त मुझे सुन रहे हो ना, उन्हें मैंने बता दिया है कि मॉनसून में जब भी निकले ना तो कोशिश कीजिए ये सब सामान आपके पास हो, क्योंकि आपको अपने मम्मी पापा की तो सुननी नहीं है, लेकिन हमारी तो सुन लीजिए ना। और जो दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड हो आपकी, उसको आप चाहे लेकर जाएं या ना लेकर जाएं, लेकिन अपने साथ ये सब सामान जरूर लेकर जाएं।

0: जी हाँ बिल्कुल, छोड़ दीजिए सबको इधर उधर, यदि आपको जाना है बाहर तो जाइए, लेकिन अपने साथ में ये सारा सामान जरूर लेकर जाइए। नीलम का दिल्ली के बरवाला से भी मैसेज आया है कि शो बहुत अच्छा लग रहा है और साथ साथ गाने भी इन्हें काफी पसंद आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पसंद की बात तो ये होती है ना कि जब समय आ जाता है जाने का तो उसको कोई नहीं रोक सकता, तो मेरे भी जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगला प्रोग्राम लेकर मैसेज मसाला मिक्स लेकर मुक्ति पहुंच चुकी हैं यहाँ स्टूडियो में। तो अब है वक्त उनका, तो रश्मि को दीजिए इजाजत, लेकिन साथ साथ आपको आने वाली राखी के त्योहार की आपको क्या कहती हूँ, ये बता रही हूँ कि बाजारों में सज चुके हैं राखी के बाजार, आप जाइए जाइए और अपनी पसंद की राखी लेकर आइए और कर लीजिए अपने भाइयों का इंतजार। फिलहाल रश्मि को दीजिए इजाजत, बाय बाय।
1: सारे सुनो सुनो, स्टार्ट हो

नमस्कार, 6 बज चुके हैं। आकाशवाणी रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक महाबलीपुरम में संपन्न हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में छात्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के बीच आज नई दिल्ली में बैठक हुई। दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा सहयोग संबंधी प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए। सिंगापुर में भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस फैसले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है जिसके तहत 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती के जरिए की गई नियुक्तियों को रद्द किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में निर्मित 2,45,000 मकानों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2000

1947 का अनावरण किया। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी को विश्व स्तरीय समावेशी और आर्थिक रूप से सशक्त शहर बनाना है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्सर्जन तीव्रता को कम करने और गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को विस्तार करने में भारत की प्रगति एक सतत तथा हरित दृष्टिकोण को मजबूत करती है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड का सामना करेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

कितनी अजीब बात है ना, मेरा भी मन चाहता है आपसे बात करना, ढेर सारी बात करना, इसलिए हाजिर हो जाती हूँ आपके साथ लेकर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूँ आपके साथ आपके आरजे दोस्त मुक्ति सैनी 102.6 पर, और साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी आपके साथ जुड़ी रहूंगी, बनी रहूंगी। तो फिर देर किस बात की है, आपके मैसेजेस पहुंच जाने चाहिए एकदम मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से। तो मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, कुछ बात करना चाहती हूँ, और मुझे पता है आपको भी बात करने में, व्हाट्सएप मैसेजेस करने में बेहद मज़ा आता है। तो फिर आपसे पूछ लेते हैं कि आपके लिए जो ये शाम का वक्त होता है ना, वो किस चीज़ के लिए होता है? सुकून का होता है, यादों में डूबने का होता है, या फिर चाय की चुस्की लेने का होता है, या फिर किसी खास शख्स से कुछ खास बातें करने का होता है, या फिर अपने काम की चुगली करने का होता है? तो जो भी आपका समय होता है ना, जो भी आपका वक्त होता है ना शाम का, वो क्या है मुझे बताइए और मेरे साथ जुड़ जाइए। कहाँ पर? आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैसेज आपको कहाँ करना है? 9868107070 पर अपने व्हाट्सएप मैसेजेस लिखकर भेज दीजिए कि शाम का वक्त आपका किस चीज़ का होता है, क्या करना आप पसंद करते हैं, चुगली करना पसंद करते हैं ऑफिस की, या जहाँ पे आप कहीं काम करते हैं, या फिर यादों में डूब जाना चाहते हैं, चाय की चुस्की आपको पसंद है, या सुकून के पल बिताना चाहते हैं, वॉक पर जाना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं ना। बस ये तो मैं आपको सिर्फ कुछ हिंट दे रही हूँ, आप क्या करना चाहते हैं वो मुझे बताइए और मेरे साथ जुड़ जाइए यहाँ पर, जिसका इंतजार आपको बेसब्री से रहता है। अब एक से बढ़कर एक सॉन्ग मेरे पास है, तो फिर मैं वो आपको सुनाऊंगी और आपके मैसेजेस का मैं इंतजार कर रही हूँ। थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, थोड़ा सा, ये ट्रैफिक है ना, ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा इत्मीनान। ये प्यारा सा सॉन्ग आपके लिए।

आपके मैसेजेस पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि ये टाइम जो है ना, जो मैंने आपसे पूछ लिया ना शाम का समय, ये सिर्फ और सिर्फ गॉसिप का या फिर गपशप का टाइम होता है। वैसे होना भी चाहिए, यही तो है कि इस समय इतनी सारी बातें हमारे पास होती है, इतने सारे कुछ कहने को होता है ना, कि बस कोई मिल जाए जो हमें सुनता रहे सुनता रहे सुनता रहे, और हमें कभी गलत ना ठहराए, सिर्फ सामने वाले को गलत ठहराए कि बिल्कुल तुम तो ठीक हो, सामने वाला ही गलत है, बस यही चाहिए होता है इस समय। वंदना का मध्य प्रदेश से ये मैसेज है, वो लिखते हैं कि शाम का वक्त होता है ऑफिस से लौटकर सुकून भरी चाय का, और इस चाय के वक्त कोई दोस्त मिल जाए तो फिर गपशप करने का तो अपना ही एक अलग मजा हो जाता है। मैं वही कह रही हूँ ना कि कोई मिल जाए जिसे दिल खोल कर सब कुछ कह दे और वो हमें बिल्कुल भी जज ना करे। मेरे शाम का वक्त रेडियो पर मैसेज मसाला मिक्स सुनने का होता है, और यही मेरे सैर का समय भी होता है। अनिल शर्मा का सरिता विहार से हमको ये मैसेज आया है, और ये बहुत लंबा सा मैसेज हमको पहुँचा दिया है कि कैसे यहाँ पर हम एकदम ठीक हैं, और शाम का ये वक्त हमारे लिए होता है चाय की चुस्की का, और साथ ही सुस्ती दूर करने का पकौड़े खाने का होता है। अपने जीवन की पुरानी यादों में हम डूब जाते हैं। और ये है नीलम स्वाति का, किशोर रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से ये मैसेज हम तक पहुँचा है, और ये लंबा सा मैसेज है वैशाली गाज़ियाबाद से। शाम को मैं क्या करता हूँ, मैं तो जनाब ऑफिस से वापस आता हूँ और फिर घर में एंट्री मारती हूँ, ऐसा लगता है जैसे दिन भर की नौकरी तो ऑफिस में थी, असली ड्यूटी तो अब शुरू हुई है। पहले कपड़े बदलता हूँ, फिर चाय की तलाश करता हूँ, और उसके थोड़ी देर बाद आराम करने की कोशिश करता हूँ, तभी से आवाज आती है, इधर आ जाना कुछ काम है। हाँ, ये होना भी लाजमी है। और सुबह के समय की बात अगर की जाए तो भविष्य के लिए होता है, पर जैसे ही शाम होती है तो हम एक सुकून और आराम ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हम हर वक्त को अपने काम में ही लगाए रखते हैं, अपने आप से कभी जोड़ते ही नहीं, और जब घर जाने का नंबर आता है तो बस एक बड़ी खुशी और एक बड़ी सी स्माइल चेहरे पर आ जाती है। बिजनौर से हमको ये मैसेज आया है, और साथ ही यह है नरेंद्र सोनी का मैसेज पटियाला से, वो लिखते हैं कि हमारा तो शाम का समय केवल और केवल आप जैसे प्यारे प्यारे संदेश सुनने वालों का होता है। भाई हम तो सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए हम रहते हैं बेताब एक दिन। तो ये मैसेज हम तक पहुँचा है कि टॉपिक पर यही कहना चाहूँगी कि जब भी शाम का समय होता है तो चाय की चुस्की लेने के साथ अपने फ्रेंड से फ़ोन पर बातें भी करते हैं, और कभी कभी कुछ पुरानी यादें भी याद आ जाती हैं, तो अकेले बैठे बैठे शाम में हम यही करते हैं। अंशी शर्मा का हस्तिनापुर मेरठ से मैसेज आया है, ये मैसेज है कि भाई शाम का समय होता है जिम जाने का, लेकिन जिम से पहले अपने दोस्त अगर मिल जाएं तो फिर ऑफिस की कुछ बुराइयां तो हो ही जाती हैं, और फिर उसके बाद जिम करने का मजा आता है। भाई मेरे साथ भी बिल्कुल यही होता है कि भाई ऑफिस पहुंचते ही पहले कुछ लोगों के साथ बातें करनी बनती हैं, वहाँ पे कुछ दोस्तों के साथ बातें अगर नहीं की ना तो फिर लगता ही नहीं है कि एक्सरसाइज में, कहते हैं कि प्री वर्कआउट खाना चाहिए, मुझे लगता है कि प्री वर्कआउट गॉसिप होनी चाहिए, अगर वो है ना तो आप इतना

अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप एकदम रिफ्रेश हो गए एक्सरसाइज करके। तो फिर कहीं और क्यों जाना है, 102.6 के साथ जुड़ जाना है, क्योंकि मैं हूं आपके साथ आपके आरजे दोस्त मुफ्ती सैनी, प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स लेकर हाजिर हूं आपके। तो आपकी शाम जो है वो कैसे बीतती है, सुकून से बीतती है, चाय की चुस्की के साथ बीतती है, या फिर यादों के साथ, या फिर कुछ गपशप, या फिर चुगलियों के साथ बीतती है, बताइए और हमारे साथ जुड़ जाइए प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में। नंबर आप नोट कर लीजिए 9868107070 पर मुक्ति को आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। फिलहाल ये ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए।

बिल्कुल दिल बेकरार है कि हमारा मैसेज लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा, या फिर ये भूल जाएंगी या फिर किसी और का मैसेज पढ़ के चली जाएंगी। जी हाँ, इत्मीनान रखिए, आपका भी मैसेज अगर हम तक पहुंचे तो ज़रूर हम लेंगे। रजनी शर्मा का मैसेज है बागपत से, और वो लिखती हैं कि मेरा टाइम होता है रेडियो सुनने का, इंतज़ार रहता है कि कब 6 बजे और मैसेज मसाला मिक्स के साथ जुड़ जाए। शुक्रिया, बस अपना साथ यूँ ही बना कर रखिए रेनबो के साथ। ये राजस्थान से मैसेज है कि खेत में सब्जी तो तोड़ के आ चुके हैं और साथ ही साथ रेडियो भी अब सुन रहे हैं आराम के लिए। वही बहुत अच्छी बात है। और ये मैसेज हमारे पास आया है कि हम देखते हैं, जब हम अपना टाइम बिताना होता है तो हम अमिताभ बच्चन के बहुत ही बड़े फैन हैं और साथ ही साथ सनी कपूर के भी बहुत बड़े फैन हैं। भाई सनी कपूर कौन है? मैं शायद नहीं जानती हूँ। और ये है कि उसके साथ ही साथ हम KBC देखना बेहद ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और मुझे ये कहना है कि भाई दिन में बहुत गर्मी होती है, शॉप पर कस्टमर बहुत कम आते हैं, और जैसे ही शाम होती है कस्टमर की लाइन जो है, सिलसिला जो है, वो चालू हो जाता है और मैं थोड़ा मैसेज करने में देर कर देता हूँ। प्रदीप सलूजा जी का ये मैसेज है। कोई बात नहीं भाई, कस्टमर को अटेंड करना पहले ज़रूर बनता है, उन्हें अटेंड कीजिए और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। जैसे ही आपको थोड़ा सा टाइम मिले झट से आप मैसेज कर दीजिए, जैसे अभी आपने कर दिया। अभी हम खेत में हैं दीदी के साथ में, सोयाबीन की फसल जो है वो हमें लगाई है और साथ ही गाने भी सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। भाई शुक्रिया, और बिल्कुल आप फसल लगाइए और अच्छे से खेती बाड़ी कीजिए और हम तक जो आप पहुँचाते हैं ये खेती, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, किसका मैसेज है ये? प्रयागराज से हमको मैसेज है निधि का, कि अपने फेवरेट लोगों से बात करना, चाहे वो मेरे पति हो या फिर मेरी सासू माँ या फिर मेरे पेरेंट्स हो, भाई सहेलियाँ, सबसे बात करना अच्छा लगता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मुझे हेल्दी कन्वर्सेशन करना अच्छा लगता है, ऑफिस से आते ही समय के साथ ही मैडम लोगों से बात करना भी अच्छा लगता है। भाई जैसे ही समय मिलता है अपनी फैमिली को समय देना ने बेहद पसंद आता है। तो भाई गॉसिप या फिर चुगली में इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता है। देखिए मुझे पता है आप लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है। संध्या की चाय हो, और भैया तो कह सकते हैं कि चोली दामन का साथ है, शाम को चाय ना हो तो फिर सब कुछ अधूरा सा है। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का शांति नगर सोनीपत से हमको ये मैसेज आया है। और एक और ही मैसेज है हमारे पास, चाय की चुस्की के साथ रेनबो सुनते हैं और अपने दोस्तों को भी सुनाते हैं और ये हमारी जो शाम है वो और भी खूबसूरत हो जाती है। गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फरहास, फरहीन फरहान का ये मैसेज हम तक पहुंचा है। मैं दोपहर 2-3 बजे से शाम को 8-9 बजे तक कंटिन्यूस अपने कजन सिस्टर को पढ़ाता ही रहता हूँ। प्रवीण चौहान इतना ज्यादा पढ़ाते हैं, भाई थोड़ा सा ब्रेक तो लाइफ में बनता है, तो चलिए वही ब्रेक जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। और जल्दी से हमें टॉपिक बता दीजिए क्या है, थोड़ा सा देर से हम जुड़े हैं। तो भाई हम आपको ये बताते हैं, बहुत टॉपिक तो कुछ खास नहीं कह सकते, सिर्फ बात करनी है, चर्चा करनी है, और हम भी चाय की चुस्की लेते लेते आपसे बात करना चाहते हैं। तो हम ये बता दें आपको कि हमने आपसे ये पूछा है कि जब भी आप शाम होते हैं तो शाम के वक्त आप क्या करना पसंद करते हैं? सुकून से बैठना, जिम जाना, योग करना, अपने लोगों से बात करना, किसी खास के साथ खूब सारी गॉसिप करना, चुगली करना, या फिर चाय की चुस्की लेना, क्या चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आती है बताइए और हमारे साथ जुड़ जाइए आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, और साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी हम आप तक लगातार पहुंच रहे हैं। 9868107070 नंबर है।

0: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: NCR EPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को

और ये मैसेज हमारे पास आया गुड्डू ठाकर का उज्जैन से। वो लिखते हैं कि भाई शाम के समय तो मैं ज्यादातर जलेबी और फाफड़े बनाता हूँ और आपका प्रोग्राम सुनता हूँ रेनबो पे। साथ ही एक घंटे में कब ये थकान जो है वो दूर हो जाती है पता ही नहीं चलता। भाई जलेबी और फाफड़े का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो टेस्ट है ना साथ में, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। बचपन में हम अक्सर खाया करते थे, मम्मी शाम के समय या तो समोसे या भी फाफड़े और जलेबी जो है वो ज़रूर आती थी। शाम के समय थोड़ा सा होममेड स्नैक्स और बच्चों के साथ आउटडोर गेम्स करना पसंद करते हैं। शाबाश का नोएडा से ये मैसेज आया, भाई बहुत ही अच्छी चीज़ आप करते हैं। मनीषा का ये हमें आया मध्य प्रदेश से मैसेज। मैं आपको बता दूं कि मेरी बाजार में शॉप है और शॉप के आसपास और भी शॉप हैं, तो उनके जो संचालक हैं और मैं, हम सब मिलकर शाम के वक्त इसी किसी भी रोज़मर्रा के सामान पर डिस्कस करते हैं, जैसे कि सब्जी का रेट क्या हो गया, फिर खाने पीने की चीज़, किराने की जो सामान है उन पर हम चर्चा करते हैं और शाम का वक्त हमारा इन्हीं चर्चाओं पर बीता है। और कभी कभी हम एक दूसरे की आदतों के बारे में भी चर्चा करते हैं। भाई ये जो चर्चा ना बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, जैसे बहुत ही फ्रूटफुल भी है और बहुत ही अच्छी होती है और कहीं ना कहीं हेल्दी कन्वर्सेशन, अगर जैसे कि अभी किसी ने कहा था अपने मैसेज में कि भाई हेल्दी कन्वर्सेशन करते हैं, तो ये उनमें से एक है और ऐसी करनी भी चाहिए। गॉसिप तो दिन भर चलती ही रहती है, कुछ तो ऐसा जो दिल को भी सुकून दे और खुशी भी दे। और यह है गुड इवनिंग आज का।

टॉपिक शाम किस तरह बीती है तो संबंधित है। वैसे मैं बता दूं मुक्ति जी, मेरी शाम ऑफिस के घर आते समय अपने घर के सदस्यों के साथ चेस एवं कैरम खेलते हुए अपने शाम के समय को कब कट जाता है पता ही नहीं चलता, और साथ ही साथ रेनबो सुनते हैं और गीतों के साथ मनोरंजन जो है हमारा होता चला जाता है। ये है हर्षवर्धन पांडे का मैसेज मध्य प्रदेश से। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, चेस और कैरम तो इतना खेला जाता था लेकिन अब कहीं ना कहीं वो है ना कि सब मोबाइल के अंदर बैठ गए हैं, चाहे वो लूडो हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ मोबाइल में सिमट के रह गया। अगर आप अपने फैमिली के साथ चेस मोबाइल पे ना खेल कर उस तरीके से खेलते से पहले खेलते तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बेस्ट टाइम है ये फैमिली के साथ बिताने का। जोया का मैसेज आया है कि लिखते हैं कि शाम को घर के सामने पार्क है, 2-3 घंटे के लिए वहाँ जाते हैं तो अच्छा लगता है। पैरट्स बर्ड्स सब आते हैं, उनकी आवाज़ें सुनना, नेचर के साथ बैठना देखते हुए बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं बहुत लकी हूँ कि घर के सामने ही पार्क है। भाई ये बात तो है कि घर के सामने अगर पार्क हो ना तो फिर आलस नहीं आता कि कहीं दूर पार्क में जाना है, कहीं दूर चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, पास में ही हो तो चीज़ें अपने आप से अच्छी हो जाती हैं। भुवनेश का मैसेज है अशोक विहार से, वो लिखते हैं कि आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई इवनिंग टाइम, आई लाइक टू टॉक माई parents about funny events in my office. I also like to play my piano and sing song. These things gives me a lot to fun and energy. भाई ये बात तो है कि फैमिली के साथ बात करना और ऑफिस की चाहे कोई भी अच्छी बुरी या कैसी भी बात रही जो फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं उन्हें बताते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सजेशन भी मिलते हैं, कुछ फीडबैक भी मिलते हैं और क्या सही है क्या गलत है उनकी भी राय अक्सर मिल जाती है। तो ये वो समय होता है जो हम अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपने आप बिताना चाहते हैं। मैं थोड़ी सी अलग हट के हूँ, मुझे लगता है कि शाम के समय सिर्फ जिम जाना चाहिए, खूब सारी गॉसिप करनी चाहिए और वो प्री वर्कआउट जो है ना मेरा, जो जिम में प्री गॉसिप जो की जाती है वो मेरा होता है प्री वर्कआउट। वैसे आप इसमें मत आ जाना, आपके जो जिम ट्रेनर ने कहा है आप वही कीजिएगा, लेकिन प्री वर्कआउट मस्ट है। मेरे लिए गॉसिप है, आपके लिए क्या है वो आप जाने, लेकिन जिम जाना या फिर एक्सरसाइज करना या वॉक पे जाना वो बेहद ही ज्यादा जरूरी है। शाम को नौकरी खत्म करके घर जाते ही दिन की थकान लेकर दिन की जो थकान है वो घर जाके ही निकलती है। घर पहुंचते ही बीवी को हेलो मुस्कुराते हुए चेहरे से अभिनंदन करते हैं, चेहरा धोकर कपड़े बदल कर साथ में चाय पीते हैं और गुफ्तगू करते हैं। शाम को चाय पीते ही फोन पर लंबी बातें करते हैं और चाय ठंडी घूंट में ही पीकर खत्म कर देते हैं। अनिल शर्मा का सरिता विहार से मैसेज आया है। तो चलिए भाई, ये जो समय है ना इसको बिताइए, इसको जिए, और ये जो जीना है ना इसी का नाम है जीना। इसका कुछ अलग से नाम नहीं है भाई, जीना इसी का नाम है कि चुस्की लेते रहिए चाय की, अपनों से बात करते रहिए, अपना समय अपने साथ बिताते रहिए, इससे बेहतर कुछ नहीं। और साथ में थोड़ा सा समय हमें आपका भी चाहिए। 102.6 पर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी। शाम का समय आपका कैसा बीतता है, क्या करना आप पसंद करते हैं, 9868107070 पर बता दीजिए अपने दिल की बात।

सब कुछ मिल जाता है इस भागती दौड़ती जिंदगी में, मुझे लगता है कि सिर्फ मोहब्बत और प्यार ही नहीं मिलता, और इसी के चलते इतनी ज़्यादा टेंशन, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इतनी ज़्यादा इरिटेशन, इतना ज़्यादा डिप्रेशन, इतनी ज़्यादा एंजाइटी की बस क्या कहा जाए इसके लिए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको इन सबसे निजात पाना है, इन सबसे दूर हो रहा है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ अपने पे ध्यान दीजिए, योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, या जो भी आपको एक अच्छी चीज़ लगती है ना अपने शरीर के लिए, वो ज़रूर करनी चाहिए। कुछ भी ना सही ना, कुछ भी नहीं करना चाहते तो एक वॉक पर निकल जाइए, और अगर मुश्किल लगता है वॉक करना तो फिर वॉक एंड टॉक चालू कर दीजिए। सच मानिए, यकीन मानिए, एक घंटा भी अगर आप वॉक कर लेंगे ना, किसी से बात करते करते यूं एक घंटा बीत जाता है तो अभी लगता है कि आधा घंटा हुआ होगा, जब आप समय देखेंगे ना एक घंटा हो चुका है तो पता भी नहीं चलेगा। देखिए, दो फायदे हैं, किसी से बात भी आपकी हो जाएगी, दिमाग भी रिफ्रेश हो जाएगा, और साथ ही साथ आपकी बॉडी भी है वो भी हेल्दी हो जाएगी। तो देखिए, ज्ञानवर्धक बातों का सिलसिला तो जारी रहता है जब तक आप मुक्ति के साथ रहते हैं, तो ये ज्ञानवर्धक बातों को समेट के रखिए, संभाल कर रखिए। वैसे मैंने आपसे भी कुछ पूछा, आप थोड़ा सा फ्री हुए अभी, बिजी हैं या फिर अपने कामों में लगे हुए हैं, या फिर चाय की चुस्की पर पूरा फोकस है, साथ में पैटी खा रहे हैं या फिर गर्मा गर्म समोसा खा रहे हैं। समोसा मेरा इतना फेवरेट है, इतना फेवरेट है, मैं एक बार में 3 समोसे लाल चटनी के साथ खा सकती हूँ, मतलब बाय गॉड की कसम। ठीक है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन जो समोसा, जो आपका प्यार है ना, उसे आप कैसे छोड़ सकते हैं? भाई समोसा, 3 समोसे जब तक साथ में ना खाए जाए ना, लगता ही नहीं कि कुछ खाया है। भाई वो तो कहते हैं ना कि सिर्फ अभी लगता है कि अभी सिर्फ मुंह तक रह गया है, गले तक उतरा है, फिर लगता है कि हाँ अब पेट में पहुंच गया। अब वो जितना भी टेस्ट आ रहा था ना मुँह में, वो एकदम भरपूर कुछ दिनों की फिर छुट्टी हो जाती है। तो जो भी आपको करना है ना, दिल खुलकर अपने लिए ज़रूर किया कीजिए, यही है जो हम अपने साथ कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। फिलहाल आप मुझे खुश रखने के लिए क्या कर रहे हैं, 9861070070 पर अपनी बात पहुंचा दी है या नहीं, कि शाम के समय आप क्या करना पसंद करते हैं बताइए। मुक्ति को आपका इंतजार है, आपकी बातों का इंतजार है। फिलहाल मुझे लगता है कि बहुत से मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं व्हाट्सएप के, मुझे ले लेना चाहिए वरना शिकायतों का दौर शुरू हो जाएगा। और ये मैसेज है कि गुड इवनिंग।

जी गुड इवनिंग जी, मेरी शाम बहुत बिजी होती है क्योंकि मैं ट्यूशन लेती हूँ। मुझे शाम अपनी फ्री अच्छी लगती थी, लेकिन अब करना पड़ता है। कभी मंदिर या मार्केट जाना हो, फिर वहाँ से आके अपने साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। कुछ लिखना, ये सब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। डॉली का ये मैसेज हम तक पहुँचा है। भाई डॉली, अच्छी बात है, अपने साथ समय बिताना और अपने आप को बिजी रखना ना, ये भी कोई आसान कला नहीं है। अगर अपने आप को बिजी रख रही हैं, सबसे अच्छी चीज़ है। मनीष जुनेजा का मैसेज है सदर बाजार दिल्ली से, वो लिखते हैं घर जाने से पहले रेडियो ऑन करके मूड फ्रेश करता हूँ शाम को और फिर घर जाता हूँ। भाई घर पे ऐसा क्या मूड खराब हो जाता है जो घर जाके जाने से पहले आप रेडियो सुनते हैं। घर जाते जाते भी रेडियो सुनिए, घर पर भी रेडियो सुनिए, अपने आप को फ्रेश बिल्कुल रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच। ये है नवलू का मैसेज हमारे पास। बहुत दिनों बाद मैं मैसेज भेज रहा हूँ प्रोग्राम में। ऑफिस की ड्यूटी खत्म करके बस से घर जा रहा हूँ और साथ ही प्रोग्राम सुन रहा हूँ। गोवा से हमको ये मैसेज आया। भाई थैंक यू सो मच। बिल्कुल जब समय मिले ना ट्यून इन कर लीजिए। अगर ऑफिस में बिजी है, कोई टेंशन है, तब तो जरूर सुना कीजिए। अगर ऑफिस में बिजी है, बहुत गुस्सा है, तो थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, थोड़ी देर बाद सुन लीजिए, पर सुन जरूर लीजिएगा। डिनर प्रिपरेशन का टाइम होता है और ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग यही रहता है, और साथ ही साथ ट्रिपल एम भी सुनते रहते हैं। शैलजा का नीमराणा से हमको ये मैसेज आया है। पर ये बात तो है, खाना बनाने का समय होता है और मेरा कहिएगा कि जिम से आके सीधा खाने का समय ये होता है। मैं टीचर हूँ और इवनिंग रूटीन जो है मेरा कि ये है कि चाय बनाती हूँ, हस्बैंड के साथ चाय पीती हूँ और साथ ही बालकनी में जो इंजॉय करती हूँ नेचर की ब्यूटी को, और साथ ही रेनी सीजन हो तो फिर मज़ा ही आ जाता है। ग्रीनरी देखने को मिलती है, पीसफुल एटमोसफियर होता है और साथ ही रिलैक्सिंग शाम होती है। श्वेता सोनी का नागपुर से हमको ये मैसेज आता है। यही जिंदगी जीने की कला है, शाम चाय सबके साथ पियेंगे, चाय पीते खबरों की गुफ्तगू करते रहेंगे, शाम में दुख को बाय बाय कहेंगे, पार्क में शाम की सैर करते वक्त साथी के साथ दिल की बातें करेंगे, साझा करते करते आगे की बातें दिल में नहीं रखेंगे और सब कुछ कह देंगे। बिल्कुल सब कुछ कह देना ही बेहतर रहता है। दिल में रखकर कब तक रख लेंगे? वो सोचते ना कि नहीं, हम तो किसी से नहीं कहेंगे। वही बातें सबसे पहले किसी से कही जाती हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, थोड़ा सा तो तसल्ली अपने आप को देनी होगी। नहीं इतनी आपाधापी में रहेंगे, इतनी जल्दबाजी में रहेंगे ना, तो मैं सच कह रही हूँ, सच जो भी आप चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे इन उलझनों से। चलिए उलझनों से निकलते हैं। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक जो है इस समय मेरे पास है और वो खूबसूरत ट्रैक सीधा आप तक पहुंचेगा, और जब खूबसूरत ट्रैक आप तक पहुंच ही जाने वाला है तो फिर देर किस बात की है, क्योंकि हम बने हुए जुड़े हुए हैं आप तक। और ये ब्यूटीफुल ट्रैक अभी भी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं ना, समय है हमारे पास, जल्द से भेज दीजिए 9868107070 पर।

और ये मैसेज हम तक आया है कि भाई कुछ भी कहिए लेकिन हम शाम के समय गॉसिप करना नहीं भूलते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा पसंद आता है। तो चलिए भाई, जो भी आपको करना है ना शाम आपकी, आप जो करना चाहें वो कर लीजिए। हमको जानना था आपसे, हमने जान लिया और मैंने भी अपना शाम का समय बता दिया कि मैं क्या करना पसंद करती हूँ। सबकी अलग अलग राय है लेकिन कुछ ना कुछ हम जरूर करते हैं, ये सबसे खास बात है। हम सिर्फ शाम को ऐसे ही जाया नहीं जाने देते, अपने लिए समय निकाल लेते, अपनों के लिए समय निकाल लेते और चाय की चुस्की के लिए भी समय जरूर निकाल लेते हैं। देखिए, इससे बढ़कर कुछ और हो सकता है कि अपने पर हमारा पूरा फोकस है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि समय हो चला है मेरे जाने का, लेकिन 7 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम हिट्स एंड मेमोरीज और उसके बाद 8 बजे आऊंगी मैं आपके लिए प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती लेकर, और उसके बाद 9 बजे का समय रहेगा आपकी याद आती रही का, और साथ ही रेशमा फारूकी रहेंगी आपके साथ में। तो फिलहाल मुक्ति कहेगी आपसे इतना ही कि भाई वक्त भले ही मेरे जाने का हो चला है लेकिन ऐसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते करते ही हमारा साथ कब बीत गया पता ही नहीं चला। और आपके लगभग जो भी मैसेज हम तक पहुंचे थे वो सभी मैसेजेस मैंने आपके ले लिए हैं। और एक जो गीत है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं वो आप सुनवा दीजिए। देखिए, फरमाइशी प्रोग्राम ये नहीं है लेकिन कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ आप तक अच्छा हम पहुंचा सकें, और यही हम कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचा सकें, और वही सबसे बेहतर चीज़ होती है कि अच्छी चीज़ें आप तक ज़रूर पहुंचा देनी चाहिए। फिलहाल मैं चलती हूं क्योंकि मुझे मिला है 8 बजे आपके साथ प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में, तो ढेर सारी मस्ती होगी और उस मस्ती में और कुछ क्या होगा पता चलेगा आपको उसी प्रोग्राम में। फिलहाल ये खूबसूरत सा ट्रैक उदित नारायण की आवाज़ में आपके लिए।

0: Jim Reeves there with the track Just Walking in the Rain. And time for me to take yet another itsy bitsy break. I'll see you on the other side in just a little over a minute.
1: Koyal si teri boli.
2: Aye aye.
1: Teri teri chhi nazar mein hai jadoo.
2: Arey besure gaane kyon suna rahi ho mujhe?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
6: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: वेलकम बैक, you're with us on Akashvani Rainbow and this is a show where old songs come with new smiles and some songs when heard for the first time create a foundation for new memories. The show is rightly called Hits and Memories and every melody here knows its way to a special moment. And I have more messages coming in here and this one is from Vikram Singh from Panchkula. He says, I love walking in the rain and getting soaked. Wow, that's beautiful. I mean, you know, you have to actually be there and experience the drops falling on you and you just getting soaked. And

0: Absolutely. Show must go on and the show will go on. We have a good more than 10 minutes to go. But right now, it's time for my Itsy Bitsy break. Please stay with me.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
0: Riding on the airwaves of Akashwani Rainbow, we are together walking down the golden corridors of memories. Moments that have long passed but are still fresh in our hearts and always will be. We are almost at the end of the hour and we would like to remind you all that tough times are like the rain, temporary yet necessary, and good times are like rainbows. They will eventually follow.

नमस्कार, 8 बज चुके हैं। आकाशवाणी रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त जांच समिति गठित की है। ये समिति दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच करेगी। 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक महाबलीपुरम में सम्पन्न हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिरिंजो कोइजुमी के बीच आज नई दिल्ली में बैठक हुई। दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा सहयोग संबंधी प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए। सिंगापुर में भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीपीएन के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को आज देश का 23वां राष्ट्रपति चुना गया। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस फैसले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है जिसके तहत 11वीं से 13वीं जीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती के जरिए की गई नियुक्तियों को रद्द किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में निर्मित 2,45,000 मकानों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। जल शक्ति मंत्रालय ने आज सुजलम भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत डेटा शेयरिंग, अंतर संचालन नियता और हितधारकों तक पहुंचकर नीति जारी की। और बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर मैं हूं आपके साथ प्रोग्राम लेकर म्यूजिक मस्ती। आपके आरजी दोस्त मुक्ति सैनी और म्यूजिक की मस्ती बस यहीं पर होने वाली है। आप बिल्कुल जुड़े रहिए, बने रहिए, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी हम आप तक लगातार पहुंचते रहेंगे। तो फिर सोचना क्या है, बस ट्यून ही तो करना है और अपने कानों में ईयरफोन।

हेडफोन या फिर अपने की जो भी डेक है, जो भी आपके पास स्टूडियो है, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा अप कीजिए और सुनिए इन सॉन्ग्स को और बस मंत्रमुग्ध हो जाइए इसी के अंदर और बहुत सारे ख्वाब ख्याल आएंगे सामने, लेकिन जो अच्छा होगा वही टिकेगा और बाकी सब अपने आप ही धूमिल होते चले जाएंगे। वैसे आप क्या सोच रहे हैं इस समय, आपके दिल में क्या चल रहा है? हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, थोड़ा सा विराम दीजिए, थोड़ा सा थाम लीजिए। कुछ चीज़ें रुकने के बाद ही एक नए मूड पर पहुँचती हैं, एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुँचती हैं, मुझे तो ये लगता है। लेकिन आपका क्या मानना है आप वो भी बता सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वैसे जुड़ने के बहुत सारे तरीके ऐसे हैं कि चाहे तो आप वार्तालाप आप हमसे कर सकते हैं, बहुत सारे सजेशन आप हमें दे सकते हैं, बहुत सारे फीडबैक आप हमें दे सकते हैं, या फिर अपने प्यारे प्यारे व्हाट्सएप मैसेजेस तो आप भेजते ही रहते हैं जिनमें आप बताते रहते हैं कि आपके हाल क्या है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन म्यूजिक मस्ती का ये जो प्रोग्राम होता है ना, ये होता है कि आपको खुद से जुड़े, आप अपने आप से जुड़े रहेंगे तो फिर चीज़ें खुद ब खुद जीवन में ऐसी होंगी कि आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ नया सा होना अभी बाकी था, अब हो चुका है तो बस और किसी चीज़ की इंतज़ार नहीं है, और चीज़ किसी की गुंजाइश नहीं है।

दो ब्यूटीफुल ट्रैक्स आपके लिए लेकर आई हूँ मैं खास, और ये फायदा कह सकते हैं या ये कोशिश रहती है कि कुछ ऐसे सॉन्ग्स लेकर आए जिस पर आप भरपूर एंजॉय कर सकें, क्योंकि गम देने के लिए, परेशान करने के लिए और बहुत सारी टेंशन देने के लिए वही दुनिया है, या फिर खुद भी हैं, खुद भी ऐसे लगता है ना लाइफ में कभी कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा है या सब कुछ अच्छा कैसे चल रहा है, कुछ गलत होने वाला है क्या, तो भी टेंशन लाने की अपने आप सोचते हैं। तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कुछ ऐसा आपको देने के लिए, कुछ ऐसा आपको सुनवाएं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए करें कि आपको लगे कि हाँ बस कुछ सुकून भी ज़िंदगी में कोई चीज़ है जो हमारे अंदर होनी चाहिए। फिलहाल ये सुकून से थोड़ा सा दूर हटिएगा, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अब ये आके जो घर पर लेट जाते हैं ना, आप शाम को चाय पी के पकौड़े खा के या जो भी आप खाते हैं उस पर लेट जाते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको वॉक पर निकलना है, आपको जिम जाना है, या फिर आपको कोई भी एक्सरसाइज का एक ऐसा मंत्रा जरूर लेना है जिसमें रहकर आप अपने आप को एकदम रिफ्रेश, एकदम ऐसा महसूस करें कि बस आपको लगे कि यही लाइफ है, यही तो चाहिए था, इतने फिट, इतनी एनर्जी शाम के समय भी, घर आकर भी, और जब सोने जाए तो लगे कि बस आज का जो दिन है हमने अपना पूरा यूटिलाइज किया, थैंक यू टू गॉड। तो ये तो हमें करना चाहिए, ये अगर हम नहीं कर रहे ना लाइफ में तो बहुत बड़ी चीज़ें मिस कर रहे हैं। सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा, हम भी चलेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अपने लिए अगर थोड़ा सा टाइम निकाल लेना तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। फिलहाल आप किस चीज़ के लिए टाइम निकाल रहे हैं, कहाँ जा रहा है आपका समय, मुझे पता है, मुझे क्या, हम सबको पता है कि हमारा जो एक्चुअल समय वो कहाँ जा रहा है, जहां की नहीं जाना चाहिए। तो चलिए जहां भी जा रहा है ना वहां से थोड़ा सा हटाकर इधर आ जाइए 102.6 पर, क्योंकि यहां पर खास प्रोग्राम आपके लिए चल रहा है, प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। मैं हूं आपके साथ आपकी अर्जुन दोस्त मुक्ति सैनी।

0: प्रॉब्लम।
1: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
0: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
1: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
0: रियली?

इन मस्ती भरे सॉन्ग्स के बाद एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे आपके साथ आपका प्रोग्राम लेकर म्यूजिक मस्ती, क्योंकि मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी और जल्द ही आपको मुक्ति बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

भाई जिस तरह की धूप जो निकल रही है ना जो दिन में, तो भाई उसमें तो लगता है कि भाई मुखड़े पे चश्मा तो बनता है, क्योंकि आंखें ही नहीं खुलती हैं भाई, आंख खोलनी है तो चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं वो सनग्लासेस जो हैं आपको बहुत अच्छे से जो नज़ारे हैं वो दिखवा देती हैं। फिलहाल आपकी खूबसूरती में तो चार चांद लग ही जाते हैं, इसीलिए तो गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा बनता है, या फिर काला तिल लगा लीजिए। जो भी आपको करना है वो कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ आपकी है और आपके अलावा और किसी की भी नहीं है। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि म्यूजिकली योर्स दिल से दिल तक हम पहुंचते रहेंगे सीधा आप तक। और ये कारवा चल रहा है या फिर चल चुका है और आप तक ही सीधा पहुंच कर ये रुकेगा, तो फिर देर किस बात की। जो भी ट्रैक्स में लेकर आए ना म्यूजिक की मस्ती में ना, कहीं भी खलल कहीं भी ब्रेक नहीं आना चाहिए, बस ये मस्ती जो है चलते रहनी चाहिए। ये पूरा जो एक घंटा होता है ना, इसमें एक मिनट कह सकते हैं कि हर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो गाने ना सीधा दिल तक पहुंचते हैं और दिल को सुकून पहुंचाते हैं। और ये वो पल होते हैं जब आपको सुकून की जरूरत होती है, आराम की जरूरत होती है, कुछ भी ना सही तो एक लंबी वॉक पर निकल जाते हैं या फिर आराम से कहीं बैठ जाते हैं, गानों को सुनते हुए कुछ ना कुछ जहन में ख्याल तो आते हैं और वही ख्याल जो है हमारे लिए बेहद खास हो जाते हैं।

प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती की मस्ती लगातार चल रही है और ये मस्ती बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है। और जितने भी सॉन्ग्स मैं आपने लेकर इतना से यकीन माने वो सभी सॉन्ग्स प्ले हो गए हैं, लेकिन एक सॉन्ग मैंने बचा के रखा है आखिरी के लिए। और ये मैंने आपको इसीलिए बता दिया क्योंकि वो लम्हा आ चुका है जब आज के म्यूजिक मस्ती का आखिरी सॉन्ग जो है वो आपके लिए प्ले किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ आगे आने वाले प्रोग्रामों की रूपरेखा क्या रहेगी आपके लिए। 9 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम आपकी याद आती रही रेशमा फारूकी के साथ, और उसके बाद का समय रहेगा ऑल दैट जैज का 10 बजे का, और 11 बजे का समय रहेगा रंगे महफिल रेशमा के साथ। तो ये बेहतरीन प्रोग्राम आने वाले हैं आपके लिए। तो फिर आपको कहीं क्यों जाना है, बिल्कुल भी अपना समय जो है ज़ाया नहीं करना है। और ये जो आखिरी सॉन्ग है ना प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती का, आपको बिल्कुल याद रहने वाला है। और ये मस्ती ना हर रोज़ 24/7 आपके लिए खास रहती है 102.6 पर। थोड़ा सा वॉल्यूम अप कर लीजिए और अपनी लाइफ को भी अप कर लीजिए। डाउन तो जा ही रही है, अपने आप जाएगी, लेकिन अप करने में जो मज़ा है ना वो और किसी में नहीं। या तो बैलेंस रखिए या फिर थोड़ा सा अप कर लीजिए, क्योंकि जब थोड़ा सा भी आप डिसबैलेंस होंगे तो कहीं ना कहीं बैलेंस भी आके आप रुक जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है मुक्ति। ज्ञानवर्धक बातों का सिलसिला पूरे 1 घंटे में ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहां मुक्ति है वहां ज्ञान की बातें। कोई बात नहीं, कभी कुछ बातें ज्यादा कर लेनी चाहिए, दिल खोल कर लेनी चाहिए, दिल खोल कर हंस लेनी चाहिए। शायद कहीं ना कहीं कोई चीज किसी के काम आ जाए, कोई बात किसी के काम आ जाए। फिलहाल आपके काम आए तो मुझे तहे दिल से बेहद खुशी होगी। मुक्ति कहेगी आपसे इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्यार की इज्जत कीजिए। आपकी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। फिलहाल अपनी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी को दीजिए इजाजत इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ।

0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार।
1: हाँ।

और आइए आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर सुनते हैं अभी तक के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति एचपीईसी का गठन किया। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली को 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेटा सेट प्लेटफॉर्म एआई कोष पर एक विशेष कार्यशाला आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को आज देश का 23वां राष्ट्रपति चुना गया। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिनों के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल मूसलाधार बारिश की संभावना है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बना ली है। और हॉकी में महिला विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद दूसरे दौर में प्रवेश किया। तो ये थे अभी तक के आकाशवाणी पर मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। कार्यक्रम लाए हैं आपके लिए, आपकी याद आती रही। तो चलिए, यादों में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम सब की जिंदगी में जो हमारी यादें होती हैं गुजरे हुए वक्त की, वो यकीनन हम सब के लिए हमेशा से बेहद खास हुआ करती हैं। तो आज भी कुछ यादों को याद करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप कैसे हैं, आपके मिजाज कैसे हैं। तो जनाबे आली, आप यकीनन बहुत अच्छे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि भाई जो मिजाज है वो कैसा है। तो भाई, हम तो जानते ही हैं कि आपका मिजाज हमेशा से बहुत ही अच्छा रहता है। आप मोहब्बत को आवाज़ देने की कोशिश करते हैं और हमेशा ये भी एहसास करते हैं कि ज़िंदगी बेहद खूबसूरत होनी चाहिए, और इन खूबसूरत जो हमारे पल हैं इसमें हमें उन यादों को ज़रूर जगह देनी चाहिए जो हम सब की ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा हुआ करती हैं। तो चलिए, याद करते हैं उसी को जो कभी कभी बहुत याद आता है।

क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये दिल उसे याद ना करे? ऐसा हो ही नहीं सकता। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि वक्त सारे ही जख्म भर दिया करता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन शायद वक्त सिर्फ हमें जीना सिखाता है, ऐसा मुझे लगता है। जो जख्म है, जो दर्द है, जो याद है, वो तो हमेशा रहती है दिल में। कब उसकी टीस का एहसास नहीं होता। कहते हैं ना, कुछ एक कमी जो होती है जिंदगी में, कुछ खालीपन जो कहलाता है, खला होता है, कुछ रिश्ते वक्त के साथ भी वैसे ही रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। अलबत्ता वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है, लेकिन इस दिल में वो लोग हमेशा रहते हैं जिन्हें ये दिल बेहद चाहता है, बेहद मोहब्बत करता है। अब देखिए ना, कभी अगर आप किसी रास्ते से गुजरे हों, कभी आप अपने कॉलेज के रास्तों से गुजरे, स्कूल के रास्तों से गुजरे, या फिर उस पुराने घर के पास से जहां कभी आप रहा करते होंगे, तो आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा। वो गलियां, वो आवाजें जिन्हें आप शायद रोजाना सुना करते होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जो जिंदगी है, या फिर जो वक्त है, या हमारी जो मसरूफियत है, हम उसमें बहुत ज्यादा अपने आप को बिजी कर लेते हैं, बावजूद इसके एक अंदर खालीपन रह जाता है। और ये जो बेचैनी होती है और ये जो कसक होती है, इसको मुझे नहीं लगता कि कोई भर पाता होगा। एक अजब तरह की बेचैनी रहती है, और तब दिल कहता है कि इतना बेचैन भी कोई किसी को ना करे कि ये दिल तड़प तड़प कर उसे याद करे।

0: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है आपकी याद आती रही।

दिल की चोरी अगर हो जाए तो फिर यादें तो बसेरा कर ही लिया करती हैं, क्योंकि रोज जना मुलाकातें नहीं हुआ करती, रोज दीदार नहीं हुआ करता, लेकिन हाँ ये जो यादें हैं ये रोजाना आ जाती हैं।

कई बार जानते हैं ये दिल बहुत मजबूर हो जाता है किसी से बात करने के लिए, लेकिन न जाने क्यों ये जो जिद हमारे अंदर पैदा हो जाती है वो कहती है कि हम ही क्यों शुरुआत करें, आगाज वो क्यों नहीं करता। ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपका दिल चाहता है किसी से मिलने को, आपका दिल चाहता है जिसे आप याद कर रहे हैं उससे एक छोटी सी मुलाकात हो जाए, तो एक बार कॉन्टैक्ट करने में क्या जाता है। एक बार कोशिश कीजिए, जिन्हें आप याद करते हैं रोज़ाना उनसे मुलाकात भी कर लीजिए एक बार, और देखिए ना आप भी तो हमसे मुलाकात के लिए रोज़ाना आ जाते हैं। बीबी फातिमा रामपुर से हैं बाराबंकी। आज का प्रोग्राम ज़बरदस्त, गीत लाजवाब। थैंक यू सो मच। और कौन है, सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से लिखते हैं कि अति उत्तम प्रस्तुति, अनमोल बातें और 90 के दशक के सदाबहार गीत बहुत कर्णप्रिय लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। और कौन है हमारे साथ, इसके अलावा हमारे साथ हैं, आपका शो सुनने में थोड़ा लेट हो गया फिर भी आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा, प्रेमचंद प्रेमी जी। बिल्कुल आपका नमस्कार स्वीकार है, आपकी दोस्ती स्वीकार है जनाब। आगे लिखते हैं, मेरी ओर से समस्त देशवासियों को रेडियो श्रोता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो से ये पल सुहाने मिले हैं, खुशियों को दिल के तराने मिले हैं। जरा पास आओ, नाचो जी गाओ, गाने के लाखों बहाने मिले हैं, गाने के लाखों बहाने मिले हैं। वाह क्या बात है, बहुत खूब प्रेमचंद जी। आज श्रोता दिवस है, रेडियो श्रोता दिवस, आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत इसकी शुभकामनाएं। और आप जैसा श्रोता हमारे साथ हैं और हमें क्या चाहिए, ऐसे ही आप सब लोग अपना प्रेम हमारे साथ हमेशा बनाए रखिएगा। हम भी कोशिश करेंगे कि आपका जो प्रेम है, आपका जो सम्मान है, उसे हम हमेशा अपने दिल में जगह दें। गुड इवनिंग मैम, मोहम्मद इम्तियाज हैं जवाहर कैंप कीर्तिनगर न्यू दिल्ली से, लिखते हैं कि हूँ जुदा तेरी राहों से, फिर क्यों तेरी तलाश दर बदर है, ये सच है कि तू अब नहीं, फिर क्यों मेरे तस्वुर में आती हो। ये तो भाई कमाल की बात है कि आप जिसको तलाश कर रहे हैं वो आपकी मिल नहीं पा रहा आपसे, और लेकिन तस्वुर में वो हमेशा आपके साथ है, तो थोड़ी सी कोशिश और कर लीजिए इम्तियाज साहब, शायद कभी मुलाकात हो ही जाए। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ एक लड़की से, आराध्या लखनऊ से, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत याद आती है। मैम किस पे मैसेज करूँ? तो भाई आप अगर चाहते हैं कि आराध्या से आप मिलना चाहते हैं तो उनके फ्रेंड से कॉन्टैक्ट कीजिए, और आपसे कैसी मुलाकात हुई, कहाँ मुलाकात हुई, तो आप बेहतर जान सकते होंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी को याद करते हैं तो एक बार कोशिश कीजिए कि आप उनसे मिलें, मुलाकात करें, अपने दिल की बात करें। उसके बाद आगे क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोस्त कोशिश कर

करने में कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस हम तो यही कहते हैं कि जो ये खूबसूरत रिश्ते हैं जिन्हें हम याद करते हैं, खूबसूरत दोस्त हैं, अच्छे दिनों के साथी हैं, और ज़िंदगी का जो उतार चढ़ाव हैं उसके जो साथी हैं, हमेशा हमेशा याद रखिए उनको। कोशिश कीजिए कि अगर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है तो आप उनसे ज़रूर मिलने की कोशिश कीजिए। बहुत खूबसूरत दिन उनके साथ आखिर गुजारे होते हैं, ठीक है ना। तो अब वक्त का इशारा है कि मैं आपसे यहीं इजाज़त लूँ और वादा करूँ कि प्रोग्राम रंग महफिल में 11 बजे आपसे फिर मुलाकात करने के लिए आऊँगी। कुछ अच्छी खूबसूरत गज़लें और शाहकार आपके लिए लेकर आऊँगी, दिल की बातें करेंगे आपके साथ। तो बस फिलहाल मैं चलती हूँ, लेकिन आकाशवाणी का जो ये रेनबो चैनल है इस पर जो गीत संगीत का सिलसिला है वो ऐसे ही जारी रहेगा। बाय बाय एंड टेक केयर।

0: We hope you're enjoying the music. Please allow us to take a very short break and we'll be right back with more melodies for you.
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: हाय
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: Welcome back, coming to you live from the studios of Akashvani Rainbow. The show is called All That Jazz. And the next track, On the Milky Way Express, is an instrumental jazz fusion composition by legendary saxophonist Wayne Shorter. The track blends Shorter's signature adventurous harmonies with funky electric production and features space-themed concepts.

0: Time to take another ritzy bitsy break, and we'll be back shortly.
1: Dil ke tarane, gaane naye purane. Non-stop film music, rozana subah 9 se 10 baje tak. Rainbow 102.6 par.
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: Welcome back. You're with us on Akashwani Rainbow, and the show is called All That Jazz. The song Jumpin' at the Woodside is an up-tempo swing tune originally composed and recorded by the Count Basie Orchestra in 1938. The Stan Getz version is the one recorded with vibraphonist Lionel Hampton in 1955. It is a standout, energetic track in their collaborative album Hamp and Getz.

और लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमू ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने को मंजूरी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर बैठक की। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता वरिष्ठ मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल मूसलाधार बारिश की संभावना है। नई दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मलेशिया की जुनैदी आरिफ और राय किंग याप की जोड़ी को 21-23, 21-19, 21-17 से हराया। और हॉकी में महिला विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद दूसरे दौर में प्रवेश किया। तो ये थे अभी तक के रेनबो इंडिया पर मुख्य समाचार।

रंगी महफिल प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर। और रंगी महफिल में हम जिंदगी को बहुत करीब से देखने की कोशिश करते हैं और उस जज्बे का एहसास करने की कोशिश करते हैं जो हमारे दिल के आसपास रहता है। और वो जज्बा हम सब के लिए, हम सब की जिंदगियों के लिए बहुत ज़रूरी हुआ करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर वो जज्बा नहीं तो जिंदगी जिंदगी नहीं दोस्त। वो कहते हैं ना कि क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे। तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। मौसम, खुशबू, बाद सबा, चांद, शफक और तारों में कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे।

तुम्हें एक बात कहनी थी, इजाजत हो तो कह दूं मैं। ये भीगा भीगा सा मौसम, ये तितली फूल और शबनम, चमकते चांद की बातें, ये बूंदें और बरसातें, धड़कते मौसमों का दिल, महकती खुशबुओं का दिल, ये सब जितने नज़ारे हैं, कहो किसके इशारे हैं। सभी बातें सुनी तुमने, फिर आंखें फेर ली तुमने, मैं तब जाकर कहीं समझा कि तुमने कुछ नहीं समझा। मैं किस्सा मुख्तसर करके, जरा नीची नजर करके, ये कहता हूं अभी तुमसे, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मोहब्बत हो गई है तुमसे, न जाओ अब कहीं क्योंकि मोहब्बत हो गई है तुमसे।

बार बार उसे कैद करने के बारे में सोचता है। लेकिन जनाब, ये दिल कई बार उसके लिए धड़कना भी छोड़ देता है। इंसान का दिल टूट भी जाता है, धीरे धीरे वो खामोश हो जाता है। धड़कता है दिल मगर किसी के इंतज़ार में नहीं। सांसें चलती रहती हैं मगर जिंदगी जैसे कहीं पीछे छूट जाती है। वो कहते हैं ना कि दिल ही तो है नसंग खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। कभी जिस दिल में मोहब्बत की रोशनी थी, वो कई बार तन्हाई का भी शिकार हो जाता है। कई बार ये दिल बार बार पूछता है कि आखिर क्यों जिया जाए, किसके लिए जिया जाए।

कोई इस तरह का खूबसूरत शाहकार सुनते हैं तब क्यों लगता है कि वाकई शाम धुआं धुआं सी और न जाने कितनी कहानियां अक्सर याद आती हैं। आप जानते हैं पसंदीदा शख्स में भी शिफा होती है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात। पसंदीदा शख्स में भी शिफा होती है जिसको फकत देख लेने से ही बेचैन दिल को सुकून मिल जाता है, क्योंकि जनाब ये दिल बार बार उसे देखना चाहता है, बार बार उसे महसूस करना चाहता है। वो पास हो तो जिंदगी खूबसूरत नजर आती है, वो पास हो तो फिर पांव जमी पे कहां पड़ते हैं। एक नजर, बस एक नजर ये दिल चाहता है कि बस उसी का दीदार हो।

शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गईं। न जाने क्यों जब भी

रुख से पर्दा उठा दे, बस अभी रंग महफिल बदल जाएगा। तुम तसल्ली ना दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा। तो जनाब, इसी को तो कहते हैं दिल से मोहब्बत। बस एक नज़र, बस एक नज़र हमने सीने से लगाया, दिल ना अपना बन सका। मुस्कुरा कर तुमने देखा, दिल तुम्हारा हो गया। मुस्कुरा कर तुमने देखा, दिल तुम्हारा हो गया। जी हाँ, इसी को तो कहते हैं मोहब्बत, इसी को कहते हैं इश्क। वो सामने हो तो दिल तड़प उठता है कि काश उससे बात हो जाए, और जब उससे बात होने लग जाए तो लफ्ज़ नहीं मिलते कि आखिर क्या कहा जाए, क्या दिल की दास्तां सुनाई जाए, कौन सी कहानी बयां की जाए। बस फिर दिल करता है कि जब ख्वाब में हो मुलाकात तो शायद शायद कुछ

ख्वाबों की बातें, ख्यालों की बातें, ये चांद की बातें, ये फूलों की बातें, ये आसमान की बातें और ये खूबसूरत महबूब की बातें, यही तो है जो दिल को करार आ ही जाता है ना दोस्तों। ज़िंदगी इसी का नाम है और देखते हैं कि आप क्या कहते हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी और सिमरन मुखी शांति नगर से हमारे साथ हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए। और हमारे साथ प्रदीप सलूजा जी हैं जनकपुरी नई दिल्ली से, बहुत धन्यवाद। और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगता है और लिखते हैं कि आवाज़ बहुत मीठी है, क्या राज है। भाई इसका कोई राज नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ होते हैं, बस इतनी सी ही बात है। और हम भी आपको सुन रहे हैं कस्बा गन्नौर यूपी से, फारूक अली खान, फैज़ी फराज, फरीन फरहान, फारिया और ताहिरा। बस हवाओं तुम्हारा जिक्र कर लेता हूँ और चांद से तुम्हारा पता पूछ लेता हूँ। चाहत ऐसी कि अभी ख़त्म ना हो और मोहब्बत ऐसी हर पल गहरी होती जाए। बहुत अच्छा लिखा है आपने फारूक अली खान साहब, बहुत अच्छा। और इसके अलावा ये हमारे पास मैसेज किसका है, आपने दोस्त अपना नाम नहीं लिखा और आप सुनना चाहते हैं कुछ और गज़लें, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ और अच्छा सुना सकें। और फ़िलहाल प्रोग्राम सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एनी रोमांटिक सॉन्ग तो मुझे लगता है ये हमें लिखकर भेजा है रणधीर यादव ने और तारा देवी ने, और लिखना चाहते हैं आप ये रणधीर यादव जी कि उनकी बर्थडे है उनकी मैम की यानी कि उनकी वाइफ की, तो सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत को आवाज़ दे रही हूँ और आपका ये खूबसूरत साथ ऐसे ही बना रहे। हैप्पी बर्थडे तारा जी, आप हमेशा साथ रहें और हमेशा आप लोग ऐसे ही खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ ज़िंदगी में कदम से कदम मिलाकर साथ चलते रहें, और क्या चाहिए, ठीक है ना। और प्रोग्राम बहुत लाजवाब है, सौरभ है महाराष्ट्र से, और अच्छा लगता है आपको अगर कार्यक्रम और अच्छा लग रहा है तो यकीन मानिए हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप सब दिल से सुनते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो एक एक लफ्ज़ पर गौर करते हैं, तो बहुत शुक्रिया मनीष, आप सुनते हैं और लिख भी लेते हैं तो ये बड़ी बात है। तो चलिए, हमारी तो जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती हैं दोस्तों क्योंकि आप सब हमारे साथ रहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, मोहब्बत को पसंद करते हैं, और हमें क्या चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। और जब बात रंगे महफिल की आती है तो उसकी याद आई है सांसों, ज़रा आहिस्ता चलो। उसकी याद आई है सांसों, ज़रा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। तो जनाब, मोहब्बत को फिर देंगे आवाज़ किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए मोहब्बत की जो खूबसूरत कंदील है इसे रोशन रखिए, क्योंकि जब आप इसे रोशन करते हैं तो पूरी दुनिया में मोहब्बत का उजाला होता है। चलती हूँ और एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल आप सबकी नज़र कर रही हूँ इस उम्मीद पर कि आपको पसंद आएगी। और जाने से पहले हमेशा की तरह चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिएगा, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।

मध्यरात्रि 12 बज चुके हैं और अब एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर बैठक की। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूस के बड़े हवाई हमले में 16 लोगों की मौत, कई अन्य घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने और महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और हॉकी में महिला विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आधी रात के 12:03 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक जीरो आर शो में, जिसमें नॉनस्टॉप गानों का आप मजा लेंगे बिना रुके। तो अब स्टार्टिंग करते हैं अजहर मूवी से अरिजीत सिंह की आवाज में इस गाने के साथ, और ऐसे ही नॉनस्टॉप गानों की लड़ी चलती जाएगी। तो गानों की दुनिया में खो जाइए और झूमते रहिए।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

श्रेया घोषाल की आवाज़ में आपने सुना फ्रॉम द मूवी वो लम्हे, और अभी आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक गाने। शो का नाम है जीरो आर शो और इसमें आप नॉनस्टॉप सूदिंग गानों का मजा ले रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट है शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी यहाँ।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

राघव चैतन्य की आवाज में आपने सुना फ्रॉम द मूवी थप्पड़, और आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक शो, और शो का नाम है जीरो आर शो, और रात के 12:51 हुए हैं। आधी रात के 1 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार, लेकिन अभी ऐसे ही नॉन स्टॉप गानों का सिलसिला जारी है, और अब रंगकिरण गुप्ता की आवाज में सुन धागा फिल्म से ये गाना।

आधी रात के एक बज चुके हैं और अब सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर

चर्चा हुई। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर बैठक की। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश ने नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूस के बड़े हवाई हमले में 16 लोगों की मौत, कई अन्य घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने और महिला डबल्स में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। और हॉकी में महिला विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। यह था FM रेनबो मुख्य समाचार।

आधी रात के 1:03 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और नॉनस्टॉप गाने आप सुनते ही हैं इस पूरी रात में। लेकिन अभी जो शो है उसका नाम है सुहानी रात, जिसमें आप सुनेंगे सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स, यानी कुछ 90s के गाने और कुछ नए गाने। तो शुरुआत रिश की आवाज में इस गाने के साथ करते हैं। तो ऐसे ही गानों की लिस्ट जो है, नॉनस्टॉप गाने चलते जाएंगे और एक के बाद एक आप इन गानों का मजा लीजिए और गानों की दुनिया में खो जाइए। कमिंग अप रिश।

दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: Cash Money. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आप सुन रहे थे बादल फिल्म से ये वाला गाना, और शो का नाम है सुहानी रात, जिसमें आप कुछ 90s के गाने और कुछ नए गाने का मजा ले रहे हैं। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल, और अभी टाइम हुआ है रात के 1:48, रात के 2 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले गानों का मजा लेते रहिए।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आधी रात के 2 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत

बनाने पर बैठक की। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच की और उसके लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूस के बड़े हवाई हमले में 16 लोगों की मौत, कई अन्य घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने और महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और हॉकी में महिला विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आधी रात के 2:03 हुए हैं। हम सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब शुरू होता है वो शो जिसमें आप वो गाने जो कभी आप सुनते थे और फिर टाइम के साथ उन गानों को भूल गए और उन्हीं गानों को दोबारा रिमाइंड कराने का ये वाला शो है जिसका नाम है भुलाए ना बने। तो इस शो में आप वो वाले गाने सुनेंगे जो आप भूल चुके हैं लेकिन गाने बहुत अच्छे हैं और आपको सच में सुन के बहुत मजा आएगा। तो अभी आप सुनिए सोहेल सेन और पामिला जैन की आवाज में फ्रॉम द मूवी खेले हम जी जान से और ये गाना है सपने सुलने। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और इसके साथ ही गानों की लड़ी नॉन स्टॉप चालू हो जाएगी। तो बस गानों को ऐसे ही मजा लेते रहिए और गानों के बीट्स पर झूमते रहिए।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

किसी सबसे अच्छे इंसान की याद और ये वाले गाने आपने सुने। ये वाला गाना फ्रॉम द मूवी जब वी मेट, मोहित चौहान की आवाज में। रात के 2:30 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और शो का नाम है भुलाए ना बने, जिसमें आप वो वाले गाने सुन रहे हैं जो किसी टाइम पर आप सुनते थे लेकिन भूल चुके हैं और अभी उन गानों को दोबारा से रिमाइंड कर रहे हैं। तो अभी इन गानों को सुनिए और गानों की दुनिया में खो जाइए। और ये गाना है फ्रॉम द मूवी सोचा ना था।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं शो बुलाई ना बने, जिसमें नॉन स्टॉप गानों का आप मजा ले रहे हैं। रात के 2:49 एफएम रेनबो चैनल आप सुन रहे हैं।

आधी रात के 3 बज चुके हैं। एफएम रेनबो पर अब सुने मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर बैठक की। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के

इलाकों में रूस के बड़े हवाई हमले में 16 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने और महिला डबल्स में ट्रीसा चौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और हॉकी में महिला विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में जगह बनाई। आज भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आधी रात के 3:03 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज, जैसा कि आप रात 12 बजे से सुन ही रहे हैं नॉनस्टॉप गाने एक के बाद एक। तो इस घंटे भी आप पूरे घंटे आप सुनेंगे नॉनस्टॉप गाने और वो भी कुछ गाने सॉफ्ट और कुछ गाने थोड़े से सैड, मतलब कुछ गानों को मतलब सिर्फ आप इंजॉय करिए, दिल पे मत लीजिए। तो अभी के लिए आप सुनिए सलीम मर्चेंट की आवाज में जोड़ी ब्रेकर्स मूवी से ये गाना और इसके बाद एक के बाद एक गाने शुरू हो जाएंगे। तो गानों का मजा लीजिए और गानों की दुनिया में आधी रात में खो जाइए।

0: सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं मिडनाइट मेलोडी शोज, और ये वाला गाना था फ्रॉम द मूवी तनु वेड मनु, और मोहित चौहान की आवाज थी। ऐसे ही नॉनस्टॉप गानों का मजा लेते रहिए। कमिंग अप फ्रॉम द मूवी फैशन, श्रुति पाठक की आवाज में।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुबह के 4 बज चुके हैं। एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दी। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर बैठक की। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूस के बड़े हवाई हमले, 16 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज

रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना चीन के लियांग वेई किंग और वांग जांग से होगा। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चीन की जिया यी फैन और झांगशू शियान से खेलेगी। और हॉकी में महिला विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में जगह बनाई और आज भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

रात 12 बजे से लेकर और अभी तक आप नॉनस्टॉप गानों का मजा ले रहे हैं। सुबह के 4:03 हुए हैं, एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप, आकाशवाणी दिल्ली का चैनल है ये, और अब शुरू होता है सारेगामा जिसमें आप नॉनस्टॉप गानों का मजा लेंगे। तो शुरुआत करते हैं तानिया सिंह की आवाज में इस हॉट एंड हैपनिंग गाने के साथ।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आई होप आपको म्यूजिक अच्छा लग रहा होगा। और ये सोज एल्बम से गाना था, गजल थी जगजीत सिंह जी की आवाज में, और शो का नाम है सारेगामा। सुबह के 4:22 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल। और कमिंग अप नेक्स्ट, यासिर देसाई की आवाज में फ्रॉम द मूवी गोल्ड।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

ये गाना था फ्रॉम द मूवी सात खून माफ। विशाल भारद्वाज की आवाज में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। सुबह के 4:50 हुए हैं और ऐसे ही गानों का सिलसिला चलता रहेगा। और अभी ज्योति कटांगरी और कीर्ति सागर की आवाज में सुनिए ये वाला गाना।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

सुबह के 5 बज चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। पुणे में आज 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक होगी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दी। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर बैठक की। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूस के बड़े हवाई हमले, 16 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना चीन की लियांग वेई केंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चीन की जिया ये फैन और झांग शू शियान के साथ खेलेंगी। और महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड के साथ ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में जगह बनाई। आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

सुबह के 5:04 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब शुरू होता है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, जिसमें आप सुनेंगे नॉनस्टॉप भजन। सावन का महीना चल रहा है तो शुरुआत करते हैं महादेव के इस भजन के साथ सचेत टंडन और परंपरा टंडन की आवाज में। तो ऐसे ही नॉनस्टॉप भजनों का आनंद लीजिए और भक्ति धुन में खो जाइए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग।